فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.

له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

अहले जन्नत ऐसे बिछौनों पर जिनके अस्तर अतलस के हैं तकिया लगाए हुए होंगे और दोनों बागों के मेवे करीब झुक रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। उनमें नीची निगाह वाली औरतें हैं जिनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। गोया वो याकूत और मरजान है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

0: सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, रबीउल सानी की 18 और अक्टूबर की 1 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वजीर आजम ने चीन के साथ तजवीराती शराकतदारी को मजीद वसत देने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुअम्मर शहरियों की फलाह व बहबूद, इज्जत व वक़ार और समाजी तहफ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वजारत इत्तलात ने नूरिस्तान में होने वाली लड़ाई का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करने के तालिबान रजीम के प्रोपेगंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स साल 2026 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में रवा माह की 15 तारीख तक तौसी कर दी है। गजा पर इसराइली फौज के 2 अलग अलग हमलों में मजीद 7 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं।
1: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
2: This is FM 101.
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.
4: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जाहो निसार, मैं ये समझूंगा कि ठिकाने लगा सरमाया तन। ए वतन प्यारे वतन।

ready for the rhythm that moves you.

0: अरे यार ये रेडियो क्यों नहीं लग रहा है?
1: अरे भाई दोबारा ट्राई करो।
0: अरे पता नहीं सिग्नल इतने कम क्यों है।
2: बोला का यार वो जरा 101 लगाओ।
0: अरे वही लगा रहा हूँ। लो, लो, लो, लो, लग गया।
3: बस किसी को पाने की कोशिश कीजिए तो वो मिल जाता है। अब तो जो भी रेडियो पे आता है मुस्कुरा के आता है। आइए मिलके मुस्कुराते हैं FM 101 के साथ।

0: यार आप लोगों ने शोर काम नहीं करना, मेरा रेडियो सुनने का टाइम हो गया, बस कर दो, मैं जा रहा हूँ बाहर, मजाक बना के रखा है, इतना शोर रेडियो कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा, मैं तो आ गया हूँ गाड़ी में।
1: अब चाहे सबके साथ सुने या अकेले में, रेडियो तो सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके फेवरेट शोज यहीं पर तो लगते हैं, आपके फेवरेट आर्टिस्ट यहीं पर तो आते हैं, तो बस सुनते रहिए FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

उस रब नु मनाना औखा नहीं, मेरे रब को मनाना तो बहुत आसान है। उसके हुजूर में दो रकात नफिल पेश कर दो, वो मन जाता है।

तवज्जो का तालिब हूं। देखिए किस तरह बुजुर्गों ने मजाज के रूप में हकीकत को समझाया। फरमाते हैं, मजनून रल आशिक कहिले, मजनू से तमाम आशिकों ने मिलकर कहा, आशिक यानी प्रोफेशनल आशिकों ने,

0: लेकिन ये आपको जब तक आप
1: आपने जैसे कहा
0: फोकस
1: है तो फौरन से हम
2: FM 101 हमेशा आपके

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

This is FM 101.

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वजीर आजम ने चीन के साथ तजवीराती शराकत दारी को मजीद वसअत देने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुअम्मर शहरियों की फलाह बहबूद, इज्जत वक़ार और समाजी तहफ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स साल 2026 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में रवा माह की 15 तारीख तक तौसी कर दी है। जापान में एशियाई खेलों में क्रिकेट मुकाबलों के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान बांग्लादेश को 6 विकेटों से हराकर फाइनल में पहुंच गया है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन 101.1
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर, ट्यून इन टू एफएम 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान, दिस इज एफएम 101.1।
3: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

FM 101.

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।
2: This is FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

अख जिवें ही खुले फोन ते मेरे सब तो मैं पहला तेनू मैसेज करा तेरी क्यूट जी समाइल देखा रे टुनाइट कदे

टूट जाते हैं दिल इश्क के दरबारों में, लौट जाते हैं आशिक बर्फ के अंगारों में। सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, शायद हम भी मिल जाएं तुम्हें एक दिन टूटे हुए सितारों में।

کتنا رویا تھا میں تیری خاطر. اب جو سوچوں تو ہنسی آتی.

listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

को जो चंद साल पहले एक बहुत मुश्किल हालात से दोचार थी, उसको अपने पांव पे खड़ा करने के लिए जो टीम वर्क जो हुआ है वो एक मिसाली है, और उसके लिए मैं खसूसी तौर पर वज़ीरे ख़ज़ाना को और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और तमाम मुतलका वज़रा को, सूबाई वज़राए आला को और दूसरे जो मुतलका इदारे हैं उनके सरबराहान को भी मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनको तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिसका नतीजा ये है कि मैं अभी जो आरिफ हबीब साहब ने यहाँ पर जो इशारे गिनवाए हैं उनको दोहराए बगैर मैं अगर ये कहूँ कि इस वक्त जब मैं अभी अमेरिका के और बरतानिया के दौरे से लौटा हूँ तो न्यूयॉर्क में भी और लंदन में खसूसी तौर पर जिनसे मेरी मुलाकातें हुई, ख़ास तौर पर जो जो बैंकर्स थे इसमें बड़े नामवर नामी गिरामी बैंक शामिल हैं, सिटी बैंक है, जेपी मॉर्गन है, बार्कलिस बैंक है और दूसरे बैंक्स जिनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने यकज़ुबान ये कहा कि वज़ीर आज़म हम आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कि आपने वाकई संजीदगी के साथ आपने लॉन्ग ओवरड्यू जो रिफॉर्म्स हैं उनको आपने अमली जामा पहनाया और जिसके नतीजे में आज हम पाकिस्तान में एक पुरकशिश हम हालात देख रहे हैं। इससे पहले मैं न्यूयॉर्क में आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर को मिला तो उनके ये लफ्ज़ थे जो उनको मैं कोट कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर दिस इज़ अ न्यू पाकिस्तान। मैंने उसके जवाब में कहा कि ये नया पाकिस्तान नहीं है बल्कि एक नई टीम है जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान के माशी हालात को सुधारा है और ये टीम वर्क है जो कि पॉलिटिकल हायरार्की और मिलिट्री हायरार्की मिलकर एज ग्रेट पार्टनर्स इस बहुत ही जिम्मेदारी को काम को आगे लेके चल रहे हैं। तो आपने उसका नतीजा देखा, आपने भी खुद ही बताया कि यूरो बॉन्ड $3 बिलियन का वो पाकिस्तान ने अचीव किया, उसके मुकाबले में 6 बिलियन की ऑफर्स थी, हमारे जो स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं वो 21.4 बिलियन डॉलर्स पे हैं और जो कमर्शियल बैंक के पास तकरीबन लगभग 5.5 बिलियन डॉलर उनके पास है और इसी तरीके से हमारी जो जो फॉरेन रेमिटेंस उनमें इजाफा हुआ, आईटी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ और इस तरह हमारा जो रोशन डिजिटल अकाउंट है वो बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो असल जो बात जो है वो मैं ये करना चाहता हूँ कि हमें अब अपनी इकॉनमी में ग्रोथ दिखानी होगी एंड मेनली थ्रू एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, तब एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, गुड्स की तरसील, सर्विसेज की तरसील, एक्सपोर्ट्स, उससे पाकिस्तान की इकॉनमी को इंशाल्लाह 4 चांद लगेंगे और ये सारा काम प्राइवेट सेक्टर ने करना है। उसके लिए ये जो बजट जो हमने अनाउंस किया उसमें कई 100 अरब रुपए के टैक्स ब्रेक्स रखे गए एक्सपोर्टर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और आपकी ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उस हवाले से जो कि एक बड़ा एक चैलेंजिंग काम था। ये जो आपने नया नाज़िमाबाद जो रीट के स्ट्रक्चर में आपने लॉन्च किया है, मैं उसकी भी आरिफ हबीब साहब आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और जो आपने लाहौर में, कराची में जो आपने ये प्रोजेक्ट्स
تعمیر کیے ہیں۔

0: इसी रीट्स के स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए वो इंतहाई लायक तारीफ हैं। और कैपिटल मार्केट की जो आपने तफसील बताई उसमें जाए बगैर मैं ये कहूँगा कि एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन जो अभी भी उसमें सुकम है, कमज़ोरियाँ हैं, बाकी जो खत्ते के ममालिक उनके जो स्टॉक एक्सचेंज हैं उसको हमें सामने रखकर जो उसमें चेंजेस हमें लानी चाहिए हमें उसमें फौरी तौर पर इकदाम उठाने चाहिए। मैं इंडस्ट्री के नाम लिए बगैर वो इंडस्ट्री जो मुल्क में लगाई गई फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, बड़ा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग विजन था। 60 साल पहले कुछ इंडस्ट्रियां उस ज़माने में आईं और उनको जितनी उनको सपोर्ट दी गई, सब्सिडी दी गई, इम्पोर्ट्स की एक प्रोटेक्शन वॉल खड़ी की गई और उसके नतीजे में कि उन इंडस्ट्रीज़ को एफिशिएंट होना चाहिए था, कंपेटिटिव होना चाहिए था। आज उनका हाल मैं माफ़ी चाहता हूँ, जहाँ पर जो तारीफ़ के लायक जो इदारे हैं, जो अफराद हैं, मैं उनकी खुल की तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज़ जिनको हमने अपने जो महदूद वसाइल हैं, खून पसीने की कमाई से उनको सब्सिडी दी, उनकी इम्पोर्ट जो जो टैरिफ की वॉल खड़ी की ताकि ये तरक्की करें, एम्प्लॉयमेंट लेके आएं, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, आगे ये अपना प्रोडक्शन करें, आज उनका क्या हाल हुआ। मैं किसी को इस वक्त मैं निशाना नहीं बना रहा, लेकिन दिस इज़ अ हार्ड एंड हार्श रियलिटी। अगर हम इसको आज इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसकी तस्हीर नहीं करेंगे तो फिर हम अपने सफ़र को हम दोबारा फिर उन्हीं मुश्किलात में हम डाल देंगे तरक्की के सफ़र को। तो इसलिए जिन इंडस्ट्रीज़ ने ये कमिटमेंट दी थी कि हम ये अचीव करेंगे, 60 की दिहाई चली गई, 70 की दिहाई चली गई, 80 की दिहाई चली गई, 90 की दिहाई चली गई, आज हम 2026 में बैठे हैं और उनका हाल वहीं का वहीं, कीमतें भी महंगी अपनी मसनूआत की और क्वालिटी भी अपना नीचे चली गई। कौमें इस तरह नहीं बनती। काबिलियत, हुनर, नॉलेज, इंटेलिजेंस, उसके साथ शर्त अव्वल है ऑनेस्टी पर्पस एंड सर्व नेशनल इंटरेस्ट, और जो पर्सनल जो नैरो इंटरेस्ट है उनको कौमी जो मफाद उसके ताबे रखा जाता है। तो मैं इस बारे में मज़ीद तफसील में जाए बगैर फिर मैं ये कहूँगा कि डस्ट टू डेस्टिनी बड़ा अच्छा एक पावरफुल ये कोट है, लेकिन डस्ट टू डेस्टिनी तभी होगी कि हम खून पसीना हम बहाएँ, दिन रात मेहनत करें और पाकिस्तान को उस जगह पे लेके आएं जो उसका मकाम है। खदामन मैं एक दफ़ा फिर आरिफ हबीब साहब आपको मुबारकबाद देता हूँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो हमने जो मराद दी हैं इस बजट में उसके आहिस्ता आहिस्ता नतायज सामने आ रहे हैं, और कराची में ख़ास तौर पर ये आपकी ये इंडस्ट्री अब टेक ऑफ कर रही है, पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी इंशाल्लाह इसके असरात मरतब होने शुरू हो गए हैं, लेकिन इसके ऊपर हमें बड़ी भरपूर तवज्जो देनी होगी। ये कहना काफ़ी नहीं कि 40 इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके जो मसनूआत हैं वो इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वो जो फाइल्स को एक्सचेंज करना उसको ख़त्म करें। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ और एक मरतबा फिर वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम को और अपने कैबिनेट के तमाम उन मुतलका वज़रा को, सेक्रेटरीज़ को, चेयरमैन FBR को और सेक्रेटरी फाइनेंस को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने मैक्रो लेवल पर इकॉनमी को ला खड़ा किया, एंड इट्स अ ग्रेट टीम वर्क, और टीम वर्क के बगैर कभी रिजल्ट्स नहीं आते। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी रोशन मिसाल है कि इसको हम आगे जाके इसको रेप्लिकेट करेंगे हर शोबे में तो इंशाल्लाह नताइज बहुत ही अच्छे और खुशगवार होंगे। यहाँ पर चेयरमैन नैब को भी मैं तशरीफ़ फरमा है, इन्होंने अरबों नहीं खरबों रुपए की ज़मीनें इन्होंने न सिर्फ रिकवर की हैं, डिस्कवर की हैं, بلکہ ان کو جو قانون کے مطابق لینڈ بینک بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ جو زمین جو انہوں نے ڈسکور کی ہے, ریکور کی ہے, جو کہ بالکل جا چکی تھی انہوں تھرو کرپشن انکروژن جا چکی تھی, اس کو جو لے کے آنا واپس, یہ چیئرمین نائب ان کی ٹیم کو میں بہت میں دل سے ان کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر اس پوری ایفرٹ میں ایک ایز اے گریٹ پارٹنر, جس طرح انہوں نے کاوشیں کی ہیں, کمٹمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے, پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پاکستان انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے نقشے پہ ایک بہت طاقتور معیشت بن کر ابھرے گا, اور انشاءاللہ دنیا میں پاکستان کی عزت اور وقار میں بہت اضافہ ہوگا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں, میں ابھی ہو کے آیا ہوں, ہر طرف پاکستان کا نام گونجتا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہیوملٹی اختیار کرنی چاہیے اور دن رات محنت کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.
1: وزیر اعظم محمد شہباز شریف نیا ناظم آباد اپارٹمنٹس کی لسٹنگ کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ورچوئل خطاب میں انہوں نے کہا کہ تعمیراتی صنعت کا فروغ ملک کی معیشت اور روزگار کے لیے انتہائی اہم ہے. نیا ناظم آباد کو کیپٹل مارکیٹ کے ڈھانچے میں لانچ کرنا قابل تحسین اقدام ہے. پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کی کارکردگی میں بہتری.
2: Listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: to FM 101, a Bale Bale Oshawa Shawa.
1: तो बिस्मिल्लाह करते हैं।

listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: किया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: Tune in to One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं, तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं।

0: देख के दिल खबे सजे।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

तू मुझसे इतना दूर है, अब कर लिया कबूल है, अंदर से तू भी जानती तेरे तेरे होने को है, पर तू जाने में मजबूर हूँ, मैं तेरा मशकूर हूँ, तू समझे मुझे अब भी, तू जैसे कोई नूर है, कोई नूर है तू, एक फितूर है तू, इतने फासले पर फिर भी कुछ सुकून सा।

0: Socks.
1: And now you're tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

0: operation was launched by the Indian Army, Police and CRPF in General Area Kurag, Yusmug. Our vigilant troops observed suspicious activity and upon being challenged, terrorists opened fire. और एक गन एक्सचेंज हुआ और उसके बाद एक दहशतगर्द जोन से उन्होंने कहा जी हमने न्यूट्रलाइज कर लिया. तो ये उनकी ऑफिशियली इंडियन मिलिट्री ने ये क्लेम दिया. डू वी हैव ए पिक्चर ऑफ युस्मग? देन वी कैन हैव एन आइडिया वेयर दिस युस्मग इज. अच्छा ये है जी एरिया जिसका वो कह रहे हैं, ये युस्मग का एरिया है और ये आपको लाइन ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है. तो ये समवेयर डीप इनसाइड द इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में ये युस्मग का इलाका है जहाँ पे इंडियन मिलिट्री के बकौल देर हैज़ बिन 29 सितंबर को उन्होंने एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में एक दहशतगर्द जो सा है दे टेक इट डाउन. यू हैव वी आर वी आर सो दिस इज़ द सिचुएशन दैट दे आर सीइंग. वापस जाइए. अच्छा थोड़ी आफ्टर 7 आवर्स 7.5 घंटे बाद पीछे जाइएगा. उन्होंने इसका एक अपडेट दिया एक और. अब ये ज़रा अपडेट ज़रा दिखाइएगा अगेन. इंडियन आर्मी अपडेट देती है एंड दिस इज़ इफ़ यू सी ऑन 30 सितंबर विच इज़ यस्टरडे मॉर्निंग. दे सेड दैट फर्दर टू द ऑन गोइंग ऑपरेशन ड्यूरिंग सर्च अर्ली मॉर्निंग इन जनरल एरिया पल मैदान, यही जो एरिया है वहाँ पर हमें मिली है जी पाकिस्तान बेस्ड लश्कर ए तैयबा का एक दहशतगर्द है, उसकी हमें बॉडी मिल गई है. तो अभी वो मजीद जो उन्होंने सर्च ऑपरेशन कर कहा कि हमें अभी बॉडी भी मिल गई है और उन्होंने उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया. उन्होंने कहा इसका नाम है मोहम्मद आसिफ एलियस हाशिम मूसा. तो कहानी अभी मजीद चल रही है. मोहम्मद आसिफ उर्फ मूसा जो सा है उसकी हाशिम मूसा जो है उसकी डेड बॉडी मिल गई है और ये वो लश्कर ए तैयबा का पाकिस्तानी दहशतगर्द है जो इनकी बहादुर चिनार कोर ने वहाँ पर मारा है. ठीक है जी. और ये कल सुबह ये बता रहे जी. उसके बाद जौन सा है थोड़ा सा टाइम और गुजरता है तो ये उनकी बड़ी मोतबर उनकी वो न्यूज़ एजेंसी है, उनका अखबार है, ANI है. ये क्या कहती है? अच्छा जी अब इसको इन्होंने फीड किया. उन्होंने कहा जी ये लिखें जी, ये मोहम्मद आसिफ साहब की मज़ीद तफसीलात आ गई. उन्होंने कहा जी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा जो हैं ये ही वॉज 7 मार्च 1980 को इनकी पैदाइश हुई थी. 7 मार्च 1980 ही जॉइंट पाकिस्तान आर्मी इन 2000 और इनका सर्विस नंबर भी लिख दिया. उनका ये रिटायर्ड हुए थे एज हवलदार. तो अभी वो मोहम्मद आसिफ जो है उर्फ मूसा जो सा है वो अभी पाकिस्तान फौज का एक पुराना SSG का हवलदार के तौर पे आइडेंटिफाई किया. उनका कि उन्होंने स्पेशल सर्विसज ग्रुप में नौकरी की है, VVIP सिक्योरिटी भी अंजाम देते हैं और साथ उनकी उन्होंने तस्वीर भी दे दी. तो अब अभी वो आपकी याददाश्त में यू माइट बी रिकॉलिंग अबाउट उड़ी फॉल्स फ्लैग एंड पहलगाम एंड पुलवामा. सो ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इज़ नाउ गेटिंग कुक्ड. सो देयर इज़ नाउ ए फेस आल्सो. और वो जो बहादुर फौज है उनकी उसने इसको शहीद कर दिया है वहाँ पे मोहम्मद आसिफ को. एलियस मूसा हैज़ बिन टेकन डाउन और उसका आई डी कार्ड की भी उन्होंने फोटो कापी डाल दी. तो स्टोरी इज नाउ वेरी कंप्लीट एंड देर इज लॉट ऑफ एविडेंस देयर. अच्छा जी चलें जी वापस हैं. अब यहीं पे नहीं रहते. उसके बाद उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि अब हमारा टाइम आ गया है, नाउ इट्स आवर टाइम टू जंप इन एंड ऐड मोर क्रेडिबिलिटी एंड क्रेडेंस टू दिस. तो हेयर कम्स द इंडियन होम अफेयर्स एंड प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. और 2 घंटे बाद उन्होंने कहा जी हम नाउ वी विल कम एंड टेल के क्या हुआ है. आए खोलें जी. उन्होंने कहा जी कि मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं हम आपको कि आर्मी की जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने न्यूट्रलाइज किया है लश्कर ए तैयबा का एक कमांडर. अब वो एक कमांडर बन गया लिटी का और उसका नाम है मूसा AKA आसिफ फौजी. तो थोड़ा चेंज किया, वो फौजी आसिफ पीछे ले गए और आसिफ फौजी चूंकि आइडेंटिफाई हो चुका है पाकिस्तान फौज का है तो मूसा उर्फ आसिफ फौजी आ गया जी सामने. उन्होंने कहा कि बड़ा एक बेहतरीन इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन हुआ था और उसके अंदर जो सा है और उन्हें साथ ये भी कहा कि ये बड़ी सीरियस ब्लो मिली है लश्कर ए तैयबा के इकोसिस्टम को और ये जो कमांडर था ये ऑपरेट कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में 2022 से 4 साल से और सेंसेशनल अटैक्स में इन्वॉल्व है, ये उनकी हुकूमत कह रही है. और ये जो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ मूसा थी इट वाज नॉट ए वन ऑफ इंसिडेंट. दे आर सेइंग कि हमने ऑपरेशन शेरू वाली किया था, एक सस्टेन्ड ऑपरेशन हम कर रहे हैं, उसके ये एक बड़ी कामयाबी है एंड ये मूसा उर्फ आसिफ फौजी जो है ही हैज़ बिन न्यूटिलाइज एज ए रिजल्ट ऑफ दिस सस्टेन्ड ऑपरेशन शेरू वाली, और दिस ऑपरेशन वॉज लॉन्च इन मे 2026. तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 6 महीने की मेहनत के बाद मूसा उर्फ आसिफ फौजी हैज़ बिन न्यूटिलाइज. कंग्रेचुलेशंस, तालियां. ठीक है जी. साथ उन्होंने मजीद कहा कि हम मजीद इंफॉर्मेशन भी देना चाहते हैं कौम को, दुनिया को, ताकि दोनों शक ना रहे कि मूसा उर्फ आसिफ फौजी क्या क्या काम करता रहा है. और इसमें उन्होंने कुछ, ये चूंकि छोटे फॉन्ट में है तो आई विल टेक दी हेल्प ऑफ एंड से के, क्योंकि इसके कारनामे जो हैं आसिफ फौजी के बड़े अहम हैं. ही हैज़ बिन पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशनल अटैक्स लाइक हलान अटैक अगस्त 2023, DKG अटैक दिसंबर 2023, कांडी अटैक मई 2023, शाह सितार अटैक मई 2024. ये जो सुपरमैन है मूसा उर्फ आसिफ फौजी, ये उसी के कारनामे चल रहे हैं. शिव खोरी अटैक जून 2024, गगनगीर अटैक अक्टूबर 2024, बूटा पहाड़ी अटैक अक्टूबर 2024, और बसीरा अटैक अप्रैल 2025. उन्होंने कहा कि ये न्यूट्रलाइज हो गया है, और साथ उन्होंने कहा कि अदर 3 मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वो भी न्यूट्रलाइज कर दिए हैं इन सेपरेट इनकाउंटर्स. उसमें एक जुनेद भाट को मारा है जो कि ये महादेव में ऑपरेशन में और पता नहीं किस किस काम में इन्वॉल्व था, और यासिर को मारा है, वो भी लदा मारे गए हैं. अच्छा जी, ये नीचे उनकी गवर्नमेंट कह रही है, ये ऐसे प्लीज़ डोंट से दैट द ISPR इज़ मेकिंग इट अप, दिस इज़ देयर ऑफिशियली देयर. अभी तक इन्होंने डिलीट नहीं किया, इसके बाद करेंगे. ठीक है, तो आफ्टर दिस इफ द शेमफुल करेक्टर्स आई थिंक विल हैव एटलीस्ट शेम टू डिलीट दिस. ठीक है, तो ये है जी मूसा उर्फ आसिफ फौजी, द सुपरमैन हु हैज़ बिन एबल टू डू ऑल दिस, एंड द इंडियंस वर एबल यू नो न्यूट्रलाइज कर दिए. आगे चलिएगा, उन्होंने उसके बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो इंडिया का है, दे सेड दैट व्हाई शुड वी होल्ड बैक एंड वी शुड ऑल्सो कम विद आवर इंफॉर्मेशन बिकॉज वी हैव डन ए ग्रेट डीड. एंड दे सेड दैट द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज हैव न्यूट्रलाइज लश्कर ए तैयबा कमांडर मूसा AK आसिफ फौजी, और न्यूट्रलाइजेशन बाय मूसा बाय इंडियन आर्मी इज़ ए सीरियस ब्लो. और उन्होंने वो, और ही इज़ मूसा किलिंग इंटायर ग्रुप ऑफ 4 सीनियर LET कमांडर्स ऑपरेटिंग इन JK सिंस 2022. सो मूसा वाज ऑपरेटिंग सिंस लास्ट 4 ईयर्स इन इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर इन पार्ट ऑफ द LET, एंड ही इज़ दैट एक्स हवलदार ऑफ द SSG. तो उनका कि ये हमने काम कर दिया, और ये इन्होंने कल 4:51 PM को इन्होंने भी ये दुनिया को बता दिया. एंड वंस दे हैव डन दैट, नाउ देयर कम्स द यूजुअल सस्पेक्ट्स द इंडियन, द सो कॉल्ड क्रेडिबल इंडियन मीडिया, एंड नाउ दे सेड के जी लेट्स जंप इन. आगे चले जी, सो देयर कम्स द न्यूज 18, देयर कम्स स्टेट्समैन, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, APB लाइव, इंडियन एक्सप्रेस, एंड नाउ आई एम नॉट पुटिंग ऑल दैट कम्स विद देयर सोशल मीडिया. वो तो एक देर से अनानंडिंग ट्वीट्स एंड लिंकिंग दैट मूसा पिक्चर विद समवन हु वाज किल्ड आल्सो इन, हु वाज इन्वॉल्व्ड इन पहलगाम आल्सो, मूसा वाज डन दिस एंड मूसा डन दैट. हाउ इंटरेस्टिंग, व्हाट ए ग्रेट सक्सेस दे हैव बीन. अब चूंकि दे क्लेम्ड कि ये मूसा इज ए एक्स हवलदार ऑफ SSG, तो नेचुरली वी थॉट दैट वी शुड फाइंड आउट कि ये मूसा साहब किधर हैं. तो वेयर इज मूसा आसिफ फौजी? हाँ आ जाए प्लीज. सो हेयर इज दैट सुपरमैन जेंटलमैन, यू कैन सी दिस सुपरमैन. प्लीज आएं जी मेरा भाई, कारनामे बताएं आपके, क्या क्या करते रहे आप. ठीक है, आ जाए जी. तो दी मूसा ये हैं जी, हवलदार आसिफ, मोहम्मद आसिफ ऑफ SSG, हु हैज बिन, वो चिनार वाली कोर पे ज़रा जाइएगा जो सेकंड वाली है, सेकंड नो, दिस इज़ द मीनर मोहम्मद आसिफ एलियस हाशिम मूसा. चिनार कोर ने इनको जी, इसकी डेड बॉडी, हिज डेड बॉडी वाज रिकवर्ड बाय चिनार कोर एज पर देम ऑन 30th September. जी तो आई वुड रिक्वेस्ट माय डियर फ्रेंड हवलदार आसिफ टू टेल समथिंग अबाउट हिमसेल्फ दैट हु इज़ ही.
1: السلام علیکم، میرا نام محمد آصف ہے، میں بیسیکلی ڈسٹرکٹ اٹک تحصیل پنڈی گیب کا رہنے والا ہوں۔ کل پچھلے ٹائم کچھ دوستوں نے مجھے کال کیے کہ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ آپ کو انڈین آرمی نے کشمیر میں شہید کر دیا، آپ کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں بول رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں، میں زندہ ہوں الحمدللہ۔ اس کے بعد مجھے انڈین نمبروں سے کالیں آنی شروع ہوئیں اور انہوں نے میرے سے ذاتی ڈاٹا پوچھنا شروع کیا کہ آپ کدھر ہیں، کون ہیں، اس کے کیا لگتے ہیں۔ میں وہ نمبر بلا کرتا گیا ہوں، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ مجھے آئی این اے سے پتہ چلا کہ انڈین جو میڈیا ہے انہوں نے آپ کا جو ڈاٹا ہے اس کو استعمال کر کے آپ کو جھوٹی کاروائی میں کشمیر میں شہید کر دیا ہے۔ مجھے تو خود بہت حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، میں ابھی گھر میں بیٹھا ہوں تو کدھر انہوں نے مجھے شہید کر دیا۔ پھر میں نے وہ بات اپنے یونٹ میں سب کا بتائی ہے کہ سر یہ باتیں چل رہی ہیں میرے خلاف، تو اس کا ایک جواز بنتا ہے کہ میں کسی کو بتاؤں، کل کوئی میرے اوپر الزام لگائے کہ واقعی آپ ادھر گیا ہو یا نہیں ہو۔ انہوں نے کہا آپ نمبر بلا کر دیں، آئی ایس پی آر والے آپ سے رابطہ کریں گے، پھر جو وہ کہیں گے پھر آپ نے پھر جانا ہے ادھر، یہ سچائی آپ نے بیان کرنی ہے ادھر۔ تو پھر آئی ایس پی آر والوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یہ جو کہانی چل رہی ہے اس کے میں آپ کا کیا خیال ہے، شہید ہو گیا نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا میں زندہ ہوا بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ آ جاؤ، یہ تفصیل جو ہے جب ہوگی تو اس میں بتانی ہے آپ نے کہ میں زندہ ہوں۔ تو پھر میں آ گیا ہوں۔ تھوڑی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی، کہ میں 2000 میں آرمی میں بھرتے ہوا اٹلری میں، 2005 میں نے ایس ایچ جی جوائن کر لی، اور 18 سال بڑی بازی کے ساتھ میں نے نوکری کی، اور 2023 میں ریٹائرڈ ہوا ایس ایچ جی سے۔ اس کے بعد میں 3 سال ایک پرائیویٹ سیکورٹی کمپنی میں نے ڈیوٹی کی ہے۔ اس کے بعد ابھی میں کوئی 3-4 ماہ ہو گئے ہیں کہ میں اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے ذاتی گھر میں پنڈی میں رہ رہا ہوں۔ اور یہ جو انڈیا نے مجھ پہ کیا، میرے ملک پہ الزام لگایا کہ انہوں نے دہشت گردی کی ہے، یہ کیا، یہ بہت ہی گھنونا اور جھوٹا اور گھٹیا الزام ہے جو انڈیا میڈیا نے مجھ پر لگایا۔ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور الحمدللہ میں زندہ ہوں اور آپ کے سامنے ہوں، اس میں اور کوئی شکوک شبہات والی بات بھی نہیں ہے۔ میرے پاس آئی ڈی کارڈ بھی ہے، اور کہیں تو وہ بھی میں دکھا سکتا ہوں کہ میں واقعہ حوالدار محمد آصف ہوں۔ ٹھیک ہے سر، تو باقی جتنے بھی میں نے انشاءاللہ سروس کی ہے بڑی بہادری کے ساتھ کی ہے، اور میں ایس ایچ جی اسپیشل سروس گروپ کا ایک جوان ہوں، اور ہمیشہ ہم سامنے سے لڑنے والے ہیں، پیچھے سے وار کرنے والے نہیں ہیں ہم، اور میں ہمیشہ اپنے ملک اور وطن کی خاطر ہمیشہ بڑی بہادری سے لڑا ہوں، اور ابھی بھی تیار ہوں لڑنے کے لیے، اور میری جان بھی حاضر ہے اس وطن کے لیے۔ شکریہ۔
0: تو دس از دیٹ اندر پیتھیٹک اٹمپٹ دیٹ وی وانٹیڈ ٹو برنگ ٹو یور نوٹس، بٹ بفور وی ٹیک آئی ول ٹرائی ٹو آنسر ون کوشچن دیٹ وی ہیو آلسو بین آسکنگ آر سیلف، دیٹ وائی واز دا نیڈ آف دس ڈراما دیٹ سڈنلی دیٹ یو اسٹارٹ کمنگ آؤٹ؟ سو there are 6 reasons because that is important to understand in Pakistan also, and I think more important in India and specifically the other part of the world, the rest of the world, that why Indians keep on doing such dramas, because it's a very shameful, it's a very embarrassing thing, and no self-respecting nation does this thing. So there has to be some good reason. The first thing is the cover on track of terrorism. Ladies and gentlemen, we understand that India is the biggest sponsor, the biggest terrorist state in this world. And its implication, involvement, direct and indirect terrorism in the region goes decades back. Whether it's Mukti Bani, whether it's LTTE, whether it's now the TTP, BLA, its sponsorship, funding, planning, all. So it has become a victim of its own trade. And they think that every problem can be rectified, can be addressed through terrorism. And this terrorism has also now starting an internal dimension. It's not only that they are terrorizing the region and the countries around India, دے آر ٹیررائزنگ دی مسلمس ان سائڈ انڈیا، کشمیریز، سکھس، دالت، مانی پور، ٹرائبلس، کرسچنس. سو سم کنٹری وچ لیوز بریدز ان ٹیررزم از ایٹ دی سیم ٹائم دے آر ویری افریڈ دیٹ دیئر ڈارک فیس ول بی ایکسپوزڈ، سو دے ہیو ٹو کور دیئر ٹریکس. سو واٹ بیٹر وے ٹو کور دیئر ٹریکس دین ٹو اسٹارٹ کالنگ ایوری ون ایلس اے ٹیررسٹ. دیٹ از دی فسٹ ریزن دیٹ آفٹر سم ٹائم، آفٹر ایوری لٹل ٹائم، یو اسٹارٹ فائنڈنگ سچ کنکوکٹڈ embarrassing stories coming out of India. And this is not the first time. If you see the list of events, it goes back decades back that they have been doing it. I have just put together a small clip just to refresh your memories of this false flag operation, of this decades of lies that they have been feeding to the own people as well as to the world at large.
2: Those surrendered militants, they hatched a plot, and army jawans, some friends of theirs, helped them.
3: So basically BJP planted this
2: to impress Clinton to help India against Pakistan. That was a high level politics.

0: 17 soldiers lost their lives in a terrorist attack at the army-administered base in Jammu and Kashmir's Uri.
1: February 14, 2019, a suicide bombing in Pulwama killed 40 Indian paramilitary troops. Taking a page from the same old blueprint, India blamed Pakistan within hours, without any investigation or evidence.
2: कि अब ये सारा ऑनस पाकिस्तान की तरफ जाना है तो चुप रहिए
3: ब्लेम पाकिस्तान
2: एग्जैक्टली
3: एंड वी विल गेट क्रेडिट एंड इट विल हेल्प आवर इलेक्शन
2: एग्जैक्टली
4: 26 tourists were killed 4 terrorists carried out the attack then they vanished into the forest
5: ये जरा काइंडली
6: ओह सॉरी इधर जाइएगा ये क्योंकि तस्वीर में आई जस्ट वांटेड टू शो यू जहां पे ये 4 टेररिस्ट खड़े थे सो कॉल्ड जो ये इनके सोशल मीडिया में ये जो तस्वीर है ना ये बिन साहब की बयान की जा रही है अभी अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया इज क्रेडिटिंग हिम कि ये जो चौथा बंदा राइट पे खड़ा है ये ही इज द मैन तो आसिफ साहब जी आगे चलिए चलाइए जी
4: Six tourists were killed. Four terrorists carried out the attack. Then they vanished into the forest.
7: यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख की सिक्योरिटी फोर्सेस है वो क्या कर रहे थे पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट पे रोका जाता है ये बंदे आए कहाँ से डोंट आस्क कश्मीरीज ऑन दिस आस्क द सिक्योरिटी एजेंसीज वो क्या जग मार रहे थे
8: अरे यहाँ पर पोस्ट कोई शेयर करेगा ना उसको रात नहीं उठा ले
9: बिहार का चुनाव आ रहा है
10: अच्छा
9: पुलवामा हुआ
10: चुनाव
9: आ रहा था पूरी में अटैक हुआ तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ तो मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख किया जा रहा है
11: जब पहलगाम में 26 लोग की मृत्यु हुई तो ऑब्वियसली टेररिस्ट 400 किलोमीटर अंदर आए थे और उनके पास AK-47 थे और बाकी भी औजार उनके पास मॉडर्न थे तो किसी को पता नहीं चला
12: ये दो हमारे बुजुर्ग भाई माजीन एक की उम्र 60 साल है और एक 55 साल ये सदियों से यहाँ रह रहे हैं इनका बाप दादा यहाँ का रहने वाला है LOC के करीब उनको ढूंढने के लिए गए इंडिया आर्मी ने शहीद कर दिए तो वो मार कर कहते हैं कि ये दहशतगर्द है और दहशतगर्द ये नहीं है
6: This is a list of the prisoners in Indian jails of the Kashmiris that they keep on Muslims that they keep on taking them out killing them and putting them as false flag operations attributing to some terrorist outfits and to Pakistan but this time they went ahead they said this is not very spicy let's take a army soldier of Pakistan and portray him as one that we have killed ji acha ji these are the dates since when they are in their prisons and they are available to them as human fodder They take them out, kill them, and stage that as false flag operation as a terrorist act. Ji, wapas chaliye. We need to understand that this habit of false flag operations has further encouraged India even to go for transnational killings. So this terrorism of India is not known only limited there. You must have seen and heard about it. They're doing targeted killings much beyond their borders. And the world is seeing that. Just to give you a recall of that. So if you do that sort of also terrorist killing, you also then to need to cover your tracks. So therefore, they see their own face in the mirror. And then everyone whom they don't like, they start calling terrorists. Because they see their image. Ji.
13: So
6: ये decades old मुक्ति बानी अब ये खुद
13: बता रही है दिनों को याद करें कि हम ही तो वो लोग थे एक एक मुक्ति जोता आज यहाँ मुक्ति जोता यहाँ बैठे हैं मैं उनको नमन करता हूँ उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने अपना रक्त बहाया था हमने बांग्लादेश के स्वाभिमान के लिए मुक्ति योद्धाओं के लिए लड़ाई लड़ी।
5: मुक्ति योद्धाओं का बलिदान राष्ट्र प्रेम से प्रेरित। मुझे खुशी है कि मुक्ति योद्धाओं के लिए भारत की तरफ
6: एंड दे आर प्राउड ऑफ देयर टेररिज्म दैट वी सपोर्टेड दीज मुक्ति बानीज दीज टेररिस्ट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ करेक्टर दिस वर्ल्ड इज डीलिंग विद। जी चलाइए।
5: किए जाते रहे।
14: आई फील लाइक इज माई ओन पीपल, सो आई डोंट फील लाइक आई एम इन अ अजनबी प्लेस। सो इट इज आवर कंट्री एंड आई फील जस्ट लाइक यू सेड आवर डीएनए इज वन।
15: खबर तालिबान हिंदुस्तान से रेडी।
6: नो व्हाई वी आई एम शोइंग यू दिस फैसेट ऑफ द इंडियन टेररिज्म वेयर ही इज सेइंग दैट आवर डीएनए इज वन, बिकॉज दैट इज द इलिजिटिमेट चाइल्ड ऑफ दिस टेररिज्म विच इज ऑन आवर वेस्टर्न बॉर्डर। Because what better opportunity than to give this dirty work to someone who is ready to do it for certain coins and dollars and money, and ready to call itself, sell its soul, even call itself your DNA brother. Please.
15: دې روابط لري، پیسې جیندې اخلي او دغه پیسې بیا دی ټی ټی پی ته ورکوي او بلوچستان ته ورکوي چې په پاکستان کې عملیاتونه وکړي.
14: I blankly say this, I mean that India is supporting Taliban so that through them they will be able to influence TTP and fight against the Pakistanis.

0: हमारा गोश्त काट कर या मिर्ची और नमक डालकर ये हमारे मुंह में डालते थे।
1: टॉर्चर इज नॉट ए हिस्टोरिकल इशू, इट इज हैपनिंग राइट नाउ इन कश्मीर।
2: बयान दिया कि कश्मीर में सेना के जवान महिलाओं का रेप करते हैं।
3: कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है।

0: are the biggest guarantor of peace in this region.
1: जी सर, सैयद जफर हाशमी दुनिया न्यूज़ से हूँ मैं। सर मेरा सवाल ये है कि इंडिया ने तो एक झूठे दहशतगर्द की कहानी घड़ी और उसको सबके सामने पेश कर दिया। हमने भी एक अरसे से इंडिया का एक दहशतगर्द पकड़ रखा है, कुलभूषण यादव। उसके बारे में आप कुछ बताएंगे कि वो केस किस मरहले पर है और अब तक उस पर कोई एक्शन क्यों सज़ा के हवाले से नहीं लिया जा सका। मेरा दूसरा सवाल पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से है। तहरीक इंसाफ फिर एक लॉन्ग मार्च करने जा रही है। कुछ दिन पहले खबरें आईं कि बानी पीटीआई इमरान खान से कुछ हाई मिलिट्री ऑफिशल्स की अडयाला जेल में मुलाकातें हुई हैं, तो इस हवाले से कुछ बताएं कि क्या सूरत है।
0: आर्मी हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स एंड वी विल नॉट आंसर एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स। आई हैव मेड इट रिपीटेडली क्लियर, पॉलिटिक्स इज फॉर द पोलिटिकल पार्टीज, द गवर्नमेंट्स आर मेड बाई द पॉलिटिशियंस फॉर द गवर्नमेंट एंड द पोलिटिकल पार्टीज। तो आई विल अगेन रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन, प्लीज डोंट डू दैट। As far as your first question is concerned, इसका legal या पूरा status कौन सा है वो government और जो Ministry of Law and Justice are the best one to tell you about that। हम आपको ये बता सकते हैं कि ये बड़ी बहुत बड़ा कलंक का टीका है, वो जिंदा हो या मुर्दा वो हिंदुस्तान के मुँह पर लगा हुआ है और लगा रहेगा। क्या कर रहा था तुम्हारा सर्विंग नेवल कमांडर, नोटों की बोरियाँ लेके फिर रहा था इधर और खुद बताता है कि मैं पैसे बांट रहा था दहशतगर्दों को। इससे बड़ी क्या इज्जत का टोकरा है जो कि हिंदुस्तान की नेवी और उसकी आर्म फोर्सेज और उनकी गवर्नमेंट लेके फिर रही, ठीक है ना।
2: अस्सलाम वालेकुम सर, गजाला नौरीन सुनो न्यूज़ से। सर इससे कबल हमने देखा कि जब भी भारत की जानिब से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाता है तो उनकी कोई ना कोई पीछे ऐसी बुजदिलाना सोच ज़रूर होती है जिसको बहाना बनाकर वो पाकिस्तान पर कोई ना कोई इस तरह की अटैक करने की कोशिश करते हैं। इससे कबल हमने देखा वो आए, उन्होंने हमारे कुछ कौवे और दरख्त मारे। गुज़िश्ता साल मार के हक में उन्हें शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि जो उनकी प्रॉक्सीज़ हैं फितनुल ख़वारिज और फितनुल हिंदुस्तान, उन्हें बिलखसूस मज़ीद एक्टिव कर दिया गया है गुज़िश्ता एक साल के दौरान। अफ़गानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि अब जब उनका ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी आज मुकम्मल तौर पर नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है तो क्या वो मज़ीद फितनुल ख़वारिज और फितनुल हिंदुस्तान को एक्टिव कर सकते हैं और उसके लिए फिर हमारी तैयारी क्या? और इसके साथ ही सर, ऑल्दो आपने कहा कि पॉलिटिकल जाहिर लेना देना नहीं है, बट सर हमने ये देखा कि फितनुल ख़वारिज हो, टीटीपी हो, इस हवाले से बहरहाल हमारे केपी में मौजूद ऐसे कुछ सियासी रहनुमा हैं जो कि अभी भी अफगान तालिबान रजीम के साथ मुज़ाकरात की बात करते हुए नज़र आते हैं या फिर उस तरह से अफगानिस्तान की मजम्मत नहीं करते हुए दिखाई देते जिस तरह से कौम उनसे एक्सपेक्ट कर रही होती है कि उन्हें मजम्मत करनी चाहिए। तो सर अगर आप इस हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दें। थैंक यू सर।
0: जब आप पूछ रही थी ना कि वो क्या इस, चूँकि ये बुरी तरह एक्सपोज हो गया है, तो आपने कहा कि क्या इसके बाद वो दहशतगर्दी को मज़ीद बढ़ाएंगे, तो मैंने सोचा आप मुझे पूछेंगी शायद इसके बाद उनको कोई शर्म आएगी, तो वो तो उनको नहीं आएगी, ठीक है ना। दैट्स बियॉन्ड देयर कॉम्प्रिहेंशन। यकीनन enable ourselves to have that technical, political, military, social, all competencies that are required to fight against. And in this fight is an enduring fight, and this has to be won, and we will win it. There is no other choice. There is no other way. The second part is related to this also, जो आपने कहा कि उसके अंदर आपको ये नजर आता है, आपकी observation आप ये कह रही हैं कि there are certain political elements who are somehow have a different idea and different approach towards resolving this. अच्छा, किसी चीज़ को, एक चीज़ को आपने अगर दहशतगर्दी है उसके ऊपर

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर और पाकिस्तान के तमाम लीडिंग सिनेमा घरों में।
1: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक वन अबव FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: This is FM 101.
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: मुट्ठी खोल, आंखें मीच,

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: रात के 10 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। फातिमा तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरतेहाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत बढ़ती हुई ईंधन की कीमतों के पेश नज़र कम आमदनी वाले तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। फौज के शोबे तालुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने आज रावलपिंडी में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान रिटायर्ड एसएसजी हवालदार मोहम्मद आसिफ को सहाफियों के सामने पेश करके उनकी हलाकत से मुतल्लिक झूठे भारतीय दावे को बेनकाब कर दिया। आज जापान में एशियाई खेलों के क्रिकेट मुकाबलों के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान बांग्लादेश को 6 विकेटों से हराकर फाइनल में पहुंच गया है।
2: Welcome to a special celebration. Happy anniversary to FM 101. Your sound, your station, your community. Here's to many more years together.
3: All the way live from the federal capital city of...
4: There's music. And then there's magic. One above FM 101.
5: Coming up next, RJ Talk. On your radio dial, keep it locked. Coming up next, RJ Talk. On your radio dial, keep it locked.

0: السلام علیکم. حواس کس دنیا میں جن سماعتوں سے میرے الفاظ ٹکراتے ہیں سکین کے ساتھ، کہ آج کا دن آپ نے بہت ہی آسان طریقے سے مکمل کیا ہوگا. آواز کس دنیا میں جن سماعتوں سے میرے الفاظ ٹکراتے ہیں. بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے، جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، اور اچھی بات ہے آپ ہنستے مسکراتے اچھے لگتے ہیں. صرف مجھے نہیں لگتے، ہر وہ شخص جسے آپ سے محبت ہے، عقیدت ہے، جو آپ کی خوشی دیکھنا چاہتا ہے، ہر وہ شخص یقیناً آپ سے خوش ہوتا ہوگا، آپ کو خوش دیکھ کر آپ کی خوشی سے خوش ہوتا ہوگا. آج تھوڑی سی باعث قسم کی اگر شروع میں ہی بات کروں تو ایک تحریر میری نگاہ سے گزری، اور وہ تحریر کچھ اس طرح سے تھی، مردوں کے بارے میں تھی. اگر پریشان ہو، مرد حضرات کے بارے میں اگر پریشان ہو تو ماں کو نہیں بتاتے، رونے کا دل کرے تو ماں کے سامنے نہیں روتے. الجھن اور پریشانی یا کوئی مسئلہ بن جائے تو باپ سے بھی چھپاتے ہیں، اور جب دل ٹوٹا ہو، بہت ہی شدید تکلیف میں ہو، تو دوستوں کے پاس جا کر ہنسی مذاق کرنے لگتے ہیں. مالی تنگی آئے یا کسی اور طرح کا کوئی ڈپریشن یا بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے تو اکیلے میں بیٹھ جاتے ہیں، اکیلے میں بیٹھ کر خود سے ہی خود کلامی کر لیتے ہیں. مگر رات کو کئی خیالوں سے، کئی سوچوں سے، کئی تصورات سے الجھنے کے بعد سو جاتے ہیں. صبح اٹھ کے اگر کوئی پوچھے تو کہتے ہیں، نہیں میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا. صرف خواتین ہی نہیں ہیں جو خیالوں میں الجھی رہتی ہیں، جو اوور تھنک کرتی ہیں یا ایموشنلی اپسٹ ہوتی ہیں، مرد حضرات بھی اوور تھنک کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، الجھتے ہیں، خاموشی میں اکیلے بیٹھ کے رو بھی لیتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ ذرا فوری کسی کے سامنے کھلتے نہیں، اور کھل کے اظہار نہیں کرتے، حالت دل کو بیان نہیں کرتے، اپنے اندر کے رازوں کو عیاں نہیں کرتے. روتے وہ بھی ہیں، پریشان وہ بھی ہوتے ہیں، تو اپنے ارد گرد نگاہ ضرور ڈالا کریں. اگر آپ عورت ہیں تو دیکھا کریں آپ کا بھائی کس حال میں ہے، آپ کا خاوند، آپ کا پارٹنر، آپ کا بچہ، آپ کا باپ. اگر آپ مرد ہیں تو دیکھا کریں آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی پارٹنر، آپ کی ماں، آپ کی دادی کس حال میں ہے. چہرے پہ مسکراہٹ ہے، ایسی مسکراہٹ تو نہیں کہ جو درد کو چھپائے بیٹھی ہے. زندگی کا، آپ کے اور میرے زندہ ہونے کا مقصد محض صرف ایک ہی ہے، اگر مکمل طور پر حق ادا ہو، کہ انسانیت کو نفع پہنچے. اور انسانیت کو نفع پہنچانے کا عمل آپ کا اور میرا اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. اگر میری ذات سے میرے گھر کو نفع نہیں پہنچتا، میرے گھر میں موجود خواتین یا مرد حضرات کو میری ذات سے نفع نہیں پہنچتا، اور باہر میں جتنی بھی کوشش کر لوں سب بے معنی ہے، کیونکہ پہلا حق ان کا ہے. تو حق دار کو اس کے حق سے محروم کرنے کے بعد پھر یہ گلا کرنا کہ مجھے کوئی سنتا نہیں اور میری سنی نہیں جاتی، یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے اندھا اندھے کی آنکھیں نوچے، یہ سوچ کر کے میں اس کی آنکھیں نوچ لوں جس کی آنکھیں ہے ہی نہیں. سو کچھ کریں نہ کریں، تھوڑا سا وقت، اب تو ٹیکنالوجی اتنی آ گئی ہے، ہم ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں، ساتھ بیٹھے हुए अपने बहन भाई माँ बाप पार्टनर से नहीं मोबाइल से गप्पे लगा रहे होते हैं। हम शॉर्ट्स देखते हैं, हम रील्स देखते हैं, हम वीडियोस देख लेते हैं, मोबाइल बंद करके थोड़ी देर के लिए जब साइड पर रखें तो ऐसे लगता है बिल्कुल दुनिया मुख्तलिफ अंदाज में मौजूद है यहाँ पे, हमें किसी और की एग्जिस्टेंस का एहसास होता है, हमें पता चलता है किसी और को भी शायद हमसे बात करने की ज़रूरत है, हम कनेक्टेड तो हैं उन लोगों से जो बहुत दूर है और उनसे कनेक्टेड नहीं है जो हमारे साथ बैठे, जो हमारे सामने बैठे। तो अपना कनेक्शन अपने साथ वालों से, अपने सामने वालों से, अपने करीब वालों से मजबूत करें, दूर वालों से खुद ही हो जाएगा। दूर वाले भी ऐसे ही हैं आजकल, आप या मैं या कोई और, हम सब जिससे भी दूर हैं। जब तक हम मैसेजेस पे हैं, जब तक हम टेक्स्टिंग करते हैं, तब तक हम बहुत खुशी खुशी बात करते हैं, जब सामने हो तो फिर हमारे पास कहने को लफ्ज नहीं होते, लिखने को बहुत सारे किस्से कहानियां होते हैं, बोलने के लिए कुछ होता नहीं। क्या अजीब जमाना नहीं आ गया। बोलना सीखें, इजहार करना सीखें अपने इर्द गिर्द वालों से। वो जो जबान खामोशी का शिकार है, जो ये तो चाहती है कि उसके बारे में गुफ्तगू की जाए, लेकिन वो किसी के बारे में गुफ्तगू ना करे, उससे भी थोड़ी सी आदत डाल अच्छा होता, यकीन करें बड़ा फायदा होता। मैं अपनी दादी को देख के सोच रहा था, शीस माशाल्लाह 90 अबव, कानून फितरत है, आज नहीं तो कल जाना तो है। तो मैं देख रहा था कि कल को मेरी मसरूफियत के सारे अमल में वो चली जाती हैं, तो मेरे पास जो है ना पछतावा रहेगा, यार मैं उनके पास बैठा नहीं, मैंने उनसे बातें नहीं की, मैंने उनका हाल नहीं पूछा। क्या ही करना होता, सुबह जाने से पहले मिल लिया, खाना खाया, इतने में खुश हो जाती हैं, हाथ पकड़ के चूम लेती हैं, मेरा माथा चूम लेंगी, वापस जाके उन्हें शक्ल दिखा दी मैं आ गया हूँ, खुश हो जाती हैं, गले लगा लेती हैं, पूछ लेता हूँ खाना खाया बस ठीक है, कभी मौका मिले बैठ जाता हूँ सुन लेता हूँ उनकी बातें। आप भी सुना करें और ये दुआ किया करें कि अल्लाह मेनू हिदायत दवे मैं रेगुलर बैठ जाया करूँ। और इस वक्त वक्त हो चुका है 10:35। आज है जी 1 अक्टूबर 2026 का सन। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, और मेरा बहुत ही प्यारा भाई है मेरे साथ, और एक बड़ा प्यारा सा इंटर्न भी बैठा हुआ है, अहमद बिलाल है और मोहसिन है। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, माइक के पास आए, इधर वाले माइक पे, आप उधर किधर चले गए?
1: अस्सलाम वालेकुम सर,
0: माइक एडजस्ट करें। हाँ जी,
1: अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे से थोड़ी ऑडियंस से बात कर रहे हैं,
1: लेकिन आपसे भी मुलाकात अभी हुई है ना?
0: सही है, सही है। और मेरा सलाम अकीदत है जी तमाम तरफौजी भाइयों के लिए जो जहां पर भी इस वक्त अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं पाकिस्तान में। लाहौर से मेरी आवाज़ सफ़र करती हुई जाती है मुल्तान, और मुल्तान से कराची, हैदराबाद, और फिर लाहौर से इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद इस दरमियान में कितने ही हमारे खूबसूरत से शहर हैं, हर शहर ही हमारा खूबसूरत है। और यहाँ से फिर KPK जाती है, गिलगित बल्तिस्तान जाती है, कश्मीर जाती है, खूबसूरत वादियों में सफ़र करती है। हर जगह इंसान बसते हैं और उनकी हिफाजत पर मामूर है हमारे फौजी भाई, हर जगह ये पाकिस्तानी हैं हमारे, और मुझे फ़ख्र है आपकी वजह से हमारे सर फ़ख्र से बुलंद हैं जी। खुदा आपको इसी तरह से सलामत रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, एंड या टाइम दें अपने सामने वालों को, टाइम दें अपने इर्द गिर्द मौजूद जो लोग हैं उनको टाइम दें जी। मौसम क्या हाल है आपके? आप
2: सलाम अलैकुम सर, उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी सुनने वाले हैरो आफिये से होंगे।
0: माइक के पास तो आके बोलना सीख लो यार, तुसी कदों बड़े होगे।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: हाँ
2: अब आई आवाज़।
0: हाँ अब आई है।
2: सर आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए, जितना हो सके आपकी ज़ात से दूसरों को नफ़ा पहुँचना चाहिए। तो वो एक है ना कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसकी ज़ात से दूसरों को नफ़ा पहुँचे।
0: बिल्कुल ऐसे ही,
2: ऐसे ही है सर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हम साबित हों। और इसके अलावा आज FM 101 की सर सालगिरह भी है।
0: ओ यस जी, एनिवर्सरी है जी। और FM 101 सुनने वालों को और FM 101 की तमाम तर टीम को और मैनेजमेंट को सबको आज का दिन बहुत बहुत
2: मुबारक हो सकते।
0: अब वक्त हो चुका है 10:38 आज है जी 1 अक्टूबर 2026 का सन है। FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आज का दिन। सवाल जो है मेरा, सवाल ये है, क्या राज किसी के साथ शेयर कर देने से इंसान कमजोर हो जाता है या नहीं? आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट इट। एक बहुत बड़ा सवाल है और मेरा कहीं ना कहीं अपना भी मानना ये है कि अपने राज किसी को नहीं देने चाहिए क्योंकि आप कमजोर हो जाते हैं। लेकिन सेकंड थॉट भी आ रहा होता कि नहीं,
2: दिल हल्का हो जाता है।
0: क्या ही कोई कर लेगा,
2: ऐसा ही है।
0: क्या ही कर लेगा।
1: मुझे लगता है कि जो भी आपके राज होते हैं वो आपको किसी एक पर्टिकुलर शख्स के साथ शेयर कर लेने चाहिए।
0: सही कह रहे
1: हैं, जिस पे आपको भरोसा हो,
3: कलंदर
1: जो आपके राज को आपके खिलाफ इस्तेमाल ना करे।
3: अली दी गली दा।
0: ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट।
3: कसीदा हक दे वली दा।
0: देखते हैं इस पे सवाल है ये मेरा, आप अपने इनपुट जरूर दीजिएगा 0421100101 0422111001। हम बिल्कुल जी, सारी जगह से आज सेलिब्रेशन हुई और बहुत अच्छी बात है। हम जरा लाहौर स्टेशन में इसको उस तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाए जिस तरह से हमने लास्ट ईयर की थी, क्योंकि हमारा बड़ा प्यारा भाई है जयान, जो बड़ा अच्छा आर्जे और बाहैसियत इंसान, सच अ लवली पर्सन, ही इज़ नॉट वेल। सो हमने फिर इस सेलिब्रेशन को मौखर किया कि खालिक कायनात उसको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। वंस ही इज़ बैक वी विल डेफिनेटली सेलिब्रेट इट
1: इंशाल्लाह।
0: तो जी सवाल मैंने आपके सामने रख दिया है और हाँ, कल मैंने जिक्र किया था मुझे सुनने वाले जो है जिनमें अनीला जी थी, उनमें एक और नाम था बहुत मेरे साथ शुरू से चली, मरीना बिलाल। मरीना बिलाल आप भी शुरू से हमारे साथ हैं, मेरे साथ हैं, मुझे आपने सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। कलाम सुनते हैं जी, वापस आते हैं, 10:40 हो गए। आई विल बी टेकिंग योर कॉल आफ्टर दिस कलाम और इस मौजू पर भी बात करेंगे। और जिनके पास इंटरनेट की रसाई मौजूद नहीं, आप SMS कर सकते हैं। आपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, आपने 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम, अपना पैगाम लिखना है और इसको भेज देना है 4471 पर। और मेरी लाइव है जी, RJ Space DOX डॉक्स लिखेंगे आ जाएगी, वहां पे भी आप कमेंट कर सकते हैं।

0: ऑल राइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है जी 10:48 और एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद द डॉक्टर। आज जो मैंने सवाल आपके सामने रखा, वो सवाल ये है कि क्या किसी को राज बताने से इंसान कमज़ोर हो जाता है। आई वॉन्ट यू टू गाइड मी। और मेरी लाइफ पे इस वक्त मेरे सामने मैसेज सबसे पहले आया जोहान मुगल का, सलाम किया, वालेकुम सलाम, क्या हाल है, मैं ठीक हूँ। वकास अहमद ने कहा नाइस शो, बहुत शुक्रिया। कवल नाज ने सलाम किया, कैसे हैं आप, बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। वकास भाई आप ठीक हैं, कवल आप ठीक हैं, थैंक यू वेरी मच। और शमसी रेडियो लिसनर क्लब लाहौर की तरफ से जी, हमें इतने सारे लोग सुनते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। और जिसे पढ़ते तो याद आता था तेरा फूल सा चेहरा, हमारी सब किताबों में एक ऐसा बाब रहता था। आय हाय, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। तूबा नवाज, टॉपिक बता दिया मैंने। बरीना बिलाल, बहुत शुक्रिया, आपने सलाम किया। और वकास अहमद कहते हैं आज माशाल्लाह बड़े अच्छे प्रोग्राम चले इस्लामाबाद से, यकीन चले होंगे, यहाँ पे हम नहीं कर पाए, वो आपको बता दिया मैंने। एंड डॉक्स आपके साथ बैठे हुए आदमियों को वेलकम।
1: आदमी भी बच्चे।
2: बहुत शुक्रिया जी।
0: वो तो
1: भी
0: नहीं, बिलो 30 है, उन्हें आपने आदमी कह दिया।
2: अरे भी तो मैं बस 24 साल का हूँ।
0: हाँ देख ले, सुन ले आप। गुलाब है, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। सना राजपूत हैं, जब ये सलाम आते हैं ना बोला करे वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा थोड़ा बोलने की आदत डाल लें आप। आप भी
2: वालेकुम सलाम।
0: हाँ जी, सना राजपूत ने भी सलाम किया, पूछती हैं क्या हाल है।
1: हम ठीक है, ठीक, वालेकुम सलाम।
0: थोड़ी आवाज निकालो, जवान आदमी हो तो।
2: फिर वो थोड़ा सा ना गला खराब है आज।
0: कोई बात नहीं, ज्यादा खराब होने दो। मरीना बिलाल कहती हैं हैप्पी बर्थडे एफएम 101, थैंक यू वेरी मच, लुकिंग नाइस, बहुत शुक्रिया जी मरीना बिलाल। अल्लाह पाक आपकी दादी अम्मी को सलामती वाली जिंदगी दे, आमीन, थैंक यू वेरी मच। और अल्लाह ताला ज़िया अंजुम को भी बहुत जल्द सेहत याब करे, आमीन। आज ज़िया को अल्लाह पाक सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे। बहुत शुक्रिया मरीना। गुलाब आपने दुआ दी जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़िया अली ज़िया साहब आए हैं, सैयद मोहम्मद अली ज़िया साहब, हैप्पी एनिवर्सरी एफ एम 101 एंड एफ एम 101 गेव न्यू ट्रेंड टू रेडियो लिसनर, थैंक यू वेरी मच, इफ़ वी रियली डिड इट, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब के प्रोग्राम के जितने लिसनर हैं उनसे कहे कि वो हार्ट को टैप करें और ताकि आपकी ऑडियंस बढ़े। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि मेरी लाइव स्ट्रीम के ऊपर आकर ना जरा हार्ट को टैप करेंगे ना, फिर वो थोड़ा मेरी स्ट्रीम को ग्रो करवाएंगे। सागर खत्री साहब आए हैं जी, हेलो वेलकम पाजी, इस्लाम इस्लाम जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप सागर भाई, मामला ठीक, ऑल वेल, सब खैर खैरियत। मुझे बताएं कभी किसी से आपने राज शेयर किया, और क्या राज शेयर करने से वाकई इंसान कमजोर हो जाता है किसी के सामने या नहीं होता, ये एक सवाल है मेरा। और ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि किसी को जब आप राज देते हैं अपना तो आप कमजोर हो जाते हैं, यानी उसके सामने आप वीक हो जाते हैं, उसके पास आपकी कमजोरी चली जाती है। आम तौर पर यही जाना जाता है और यही माना जाता है। आज मैं भी थोड़ा सा अपना इस पे कथार्सिस करूंगा और ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा, यानी आपकी बातें सुन के मैं चाहूंगा कुछ नया हो, कुछ आप भी थोड़े से डिफरेंट एंगल से देखें। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं ना,
2: बिल्कुल,
0: और हम फिर क्या कहते हैं, लोग कहते हैं, तो अगर हमने भी लोगों की भीड़ का हिस्सा बनना है
2: exactly.
0: तो फिर हम में और बाकियों में क्या फर्क
1: है?
2: बिल्कुल।
0: ओहो, मुझे इसी से वो जुनैद जमशेद गाना याद आ गया।
3: कौन सा वाला?
1: सर बड़ा दिमाग चलता है आपका इस मामले में।
2: कौन सा वाला सर?
1: ऐसे ही है सर, एक दिन मैं पहले भी कोई बात कर रहा था सर, ने फौरन गाना याद आ गया, वो पुराना सा था मैडम जी का।
0: हाय, आज ये गाना मैं लगाऊंगा जी, मतलब वी शुड चेंज द डायरेक्शन फॉर आवरसेल्फ। हमें अपनी राह
1: पे मक्खी नहीं मारनी चाहिए।
0: हमें अब हम क्या चाहते हैं, या आप और मैं ये चाहते हैं कि हमारे साथ सलूक मुख्तलिफ होना
1: मुख्तलिफ हो।
0: जब मैं और आप ही अपने साथ मुख्तलिफ सलूक नहीं करते, अपने लिए खुद के लिए कुछ नया नहीं चुनते, तो कोई क्या ही करेगा हमारे लिए।
1: Exactly.
0: मैं नहीं कहता कि भई आप प्यार मोहब्बत इस तरह के मामलात ना करें, भई करें, जो दिल करता
2: पैसे हैं तो करें,
0: जितना दिल करता है करे, इस पे बात एक छोड़ के दस दस करे, इकट्ठे चार चार करे,
2: कैसे करे?
0: नो इशू। आपने कारोबार करने हैं दस करें,
2: बिल्कुल।
0: आपने नौकरियां करनी है तीन तीन चार चार करें,
1: बिल्कुल ठीक।
0: आप कोई भी काम करना चाहते हैं जो दिल करता करें, लेकिन आपकी डायरेक्शन अगर उस तरह की है जिस तरह की सबकी है, तो फिर भेड़ चाल में तो चलेंगे, मेरी तरह से फिर शायद रह जाएंगे आप भी सोचते कि यार मैंने मर्सिडीज लेनी थी, अभी तक लेती नहीं, मैंने ये करना था अभी तक किया नहीं, मैंने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जाना था विजिट करने अभी तक किया नहीं,
1: कर लेंगे।
0: सोचते सोचते ये हसरतें लेकर फिर चार बंदे ने चुक के मैंने कब्र चलाना है, चलो तुम वहां तो नहीं गए, यहां जरूर पहुंच गए इन्हीं ख्यालों के साथ। तो अगर ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं सर, आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको और मुझे बदलने में मदद करती हैं। हम सीखते बहुत कुछ हैं, आपने सीखा, मैंने सीखा, मैंने अपने घर से सीखा, मैंने इर्द गिर्द आने वाली आवाजों से सीखा, लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, कुछ मैंने ऑब्जर्व किया, कुछ हवास खमसा से सीखा, कुछ किताबों से सीखा, कुछ अपने असातजा से सीखा, लेकिन वो जितना था आपने और मैंने सीखा वो मेरे अंदर जमा हुआ, आपके अंदर जमा हुआ, फिर उसके अंदर से हमने एक नतीजा अखस किया, और वो नतीजा अखस करने के बाद उसको हम अपनी जात पे अप्लाई करते हैं। जब अपनी जात पे हम उसको अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए एक अमली नमूना होता है हमारी अपनी जिंदगी का, द वे वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्पेंड आवर लाइफ। अब क्या होता है, हम भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं कि यार अगर मैंने ऐसे किया तो लोग मेरे बारे में ये गुमा करेंगे, मुझे इस तरह से जांचेंगे, नापेंगे, तोलेंगे। लेकिन मजेदार बात यह है, आप जो भी कर ले लोग फिर भी आपको जांचते हैं, तोलते हैं हर तरह से, आप अच्छा कर लें, बुरा कर लें। तो जिंदगी उसी इंसान को, मैंने तो देखा है वही इंसान एक्सेल करता है जो अपने बारे में सोच के अपने अंदाज से आगे बढ़ने की कोशिश करता है।
1: बिल्कुल सही बात।
0: आप हैं, मैं हूं, हम सारे हैं। तो जब भी मैं कोई मौजू लेके आता हूँ ना, मौजू नहीं होता, मैं सवाल लेके आता हूँ, और सवाल वो होता है जो मेरे अंदर चलता है। मेरे अंदर अभी ये सवाल है कि यार क्या वाकई इंसान किसी को राज बताने से कमजोर होता है कि नहीं होता? अगर राज बता देने से इंसान कमजोर हो जाता है तो क्यों होता है? Think about it. And I'll be taking a call 042-111-0101. हाँ ये सर, अनवर नकवी साहब, सर कैसे? क्रिटिकल एनालिसिस होएगा बाद में, फिर बिल्कुल इन्हें लताड़ा प्रोग्राम मेरा करना है। अनवर नकवी साहब मौजूद हैं, सर आप ठीक है खैरियत से? और मेरे लिए तो खैर मेंटोर की तरह। एंड हियर वी गो, ये दो है हमारे पास ट्रैक, हम क्यों चले उस राह पर जो मैंने बातें की उसी के कॉन्टेक्स्ट में। आतिफ असलम का भी है, लेकिन आई वांट टू प्ले द ओरिजिनल नंबर। इट्स 10:56 PM ऑन द डायल 1st of October 2026, एंड आई एम गोना एंजॉय माय कप ऑफ कॉफी व्हाइल लिसनिंग टू दिस ट्रैक, एंड आई गोना एंजॉय योर मैसेजेस एज वेल। यू कैन हिट मी विद योर कमेंट्स इफ यू डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू इंटरनेट, जस्ट सेंड मी अ मैसेज फ्रॉम एनीवेयर। Just write 101 space your message and send it to 4471. And you can find my static post if you search FM 101 Lahore and FM 101 Channel Pakistan on Facebook. And you can join me on my live stream. Search RJ space DOX Docs.

0: कभी कभी खुद से मिलने को दिल करता है, क्या माजरा क्या उलझन है पूछने को दिल करता है। वो जो शख्स मेरे अंदर कहीं अभी जिंदा है, उसके सामने एक बार बैठने को दिल करता है। तमाम उम्र जिसे दूसरों में ढूंढते रहे, वो अक्से खुदी खुद में देखने को दिल करता है। थॉटफुल बात है, हम यही करते हैं। तमाम उम्र जिसे दूसरों में ढूंढते रहे, वो अक्से खुदी खुद में देखने को दिल करता है। ये दिल भी कितनी अजीब शय है दोस्त, टूट जाए तो फिर और टूटने को दिल करता है। ना जाने कौन सी वहशत है मेरे अंदर की, कि हंसते हंसते अचानक रोने को दिल करता है। जो बात कह ना सके हम तमाम उम्र उसे, किसी खामोश नजर से कहने को दिल करता है। बहुत करीब है मंजिल मगर ये क्या कम है, कि अब कहीं रुक के सोचने को दिल करता है। ये जिंदगी भी अजब कर्ज है, कि हर लम्हा किसी गुजरे हुए लम्हे का होने को दिल करता है। हम अपने आप से आखिर कहां तलक भागे, अब अपने गिरेबान में झांकने को दिल करता है। कभी कभी खुद से मिलने को दिल करता है ना।
1: बड़ी प्यारी बात।
0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:05 और आज है जी अच्छा आज है जी 1 अक्टूबर 2026 का सेन FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, और मेरे साथ हैं आरजे मोहसिन और अहमद बिलाल। और आज का मेरा सवाल है कि क्या इंसान अपने राज बता देने से कमजोर हो जाता है या नहीं। हमसे जब भी कोई सवाल किया जाता है ना
2: जी, जी
0: हम आए बाएं शाएं करते हैं, हम इंटरव्यू के लिए जाएं, काम कारोबार करने लगे, या जहन में हमारे ही कोई ख्याल चलने लगे, तो हम अपने ही ख्यालों में इस कदर उलझ जाते हैं कि हमें अपनी ही बातों का जवाब नहीं आता, और उसके बाद उलझन में हम फिर खुद से भागने लगते हैं और ओवरथिंक करते हैं, कभी एंजाइटी कभी डिप्रेशन, क्योंकि वी आर जस्ट अनएबल टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स। वो परेशान करने वाले अल्फाज, वो उलझा देने वाली बातें कौन सी।
2: बिल्कुल ऐसे ही है।
0: वो किसी भी जगह जाएं, कोई पेपर करते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखें, इंटरव्यू में जाएं, वो कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स को पहले पकड़ के डिफाइन किया जाता है। मौजू है राज बता देने से क्या इंसान कमजोर होता है, ये सवाल है। क्या मोहब्बत करने से इंसान टूट जाता है, ये सवाल होता है। क्या किसी पे एतमाद करने से इंसान धोखा खाता है, ये सवाल होता है। क्या धोखा इंसान को सिखाता है, ये सवाल होता है। क्या दौलत से इंसान हर चीज खरीद सकता है, इस तरह के देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो द क्वेश्चन इज कि क्या किसी को राज बताने से, अब बताना क्या है, राज कीवर्ड इज राज, और किसी को बताना है मुझे, आप हैं कोई और है दरमियान में है राज। सबबे कमजोरी, ज़ोफ, परेशानी, उलझन, इसकी वजह है राज। सो राज क्या है, राज क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इट फर्स्ट।
1: राज मुझे ऐसा लगता है कि राज आपकी वो एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर होती है, और आपको लगता है कि अगर आप अपनी वो चीज, वो पर्सनल भी हो सकती है, वो आपकी किसी से मोहब्बत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो अगर आप किसी को बता दें और वो आपको ऐसा फील होता है कि वो उसके पास महफूज है या नहीं है, तो राज मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही एक पर्सनल सी चीज़ है, जिसे आप जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा संभाल
2: नेगेटिव वे में,
1: इन अ नेगेटिव वे में, एग्जैक्टली।
0: मतलब राज आप कहते हैं, आपका बड़ा जाती सा पोजीशन होता है, आपका क्या ख्याल है मौसम?
2: सर मेरा भी यही है कि हर वो चीज जो आपकी जात से मुंसलिक हो।
0: ओके।
2: मेरा तो ये मानना है कि जो आपकी जात के अंदर मौजूद हो, जिसका आपको डर हो कि वो बात बाहर निकलनी नहीं चाहिए, मेरी जात तक महदूद रहनी चाहिए,
1: बिल्कुल
2: आई गेस वो राज है।
0: ओके। फलसफा पता क्या कहता
2: है? जी जी।
0: इंसान के दो चेहरे, एक वो जो दुनिया को दिखाया जाता है और एक वो जो उसके अंदर उसकी मेमोरीज, उसके फियर, उसके रिग्रेट्स, उसके अगर मगर की शक्ल में और उसके ऑब्जेक्टिविटी की शक्ल में, यानी उसके गोल क्या है उसकी शक्ल में मौजूद होता है। अब फलसफे का लफ्ज आते ही लोग सोचने लगते हैं पता नहीं कड़ी मुश्किल की गल है, ऐसी कोई चीज नहीं है। मेमोरीज आपके माजी से जुड़े हुए किस्से बहुत सारे,
1: बिल्कुल,
0: जो आपको पता है या मुझे पता है, मेरी जात से जुड़े और किसी को नहीं पता, उनमें मैं क्या था, अब मैं क्या नजर आता हूं, या मेरे खौफ जहां पे मैंने खुद प्रिटेंड किया नहीं नहीं वो मैंने इस वजह से छोड़ दिया था, ऐसा कोई मसला नहीं है, वो मैं को डरना किसे को लो अंदर से बंदा डरेगा होगा यार, ओहो नहीं नहीं, तो देर आर सो मैनी थिंग्स आपके अंदर चल रही होती हैं, आप उन्हें लेके चल रहे होते हैं खामोशी से।
2: एग्जैक्टली बिल्कुल।
0: रिग्रेट्स कुछ कर दिया और फिर आपके कुछ गोल्स होते हैं, तखरीबकारी होती है यहाँ तो दिमाग में, अच्छा ठीक है आज तो बड़ा मिठा मिठा हूं तुम्हारे साथ, टाइम आने तो फिर बताऊंगा तुम्हें, ये गोल्स होते हैं,
2: बिल्कुल ठीक है,
0: वो आपके अंदर एक और शख्स को बनाते हैं, तो ये राज है, वो जो और शख्स है ना आपके अंदर, वो शख्स राज होता है
2: जो आपके खुद के अंदर है,
0: जो आपके अंदर है राज, इट्स नॉट अ थिंग, इट्स नॉट अ सिचुएशन, एक कहानी, एक किस्सा, एक मेमोरी, एक बात, एक प्यार मोहब्बत की वारदात
2: अंदर मौजूद है,
0: या कुछ आपने कुछ भी कार्रवाई की है,
2: वो नहीं है।
0: आपकी जात, यू लव्स, आपके अल्फाज, आप जब बोलते हैं आपके लव्स आपकी जात को लेके सफर करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैरी करते हैं, व्हेन यू टेल समवन,
2: बिल्कुल,
0: यू एक्चुअली यू टेल समवन का मतलब ये होता है कि आप अपने अंदर से निकाल के एक उस शख्स को सामने रखते हैं जिसको आपने महज अपने अंदर छुपा के रखा होता है। आप अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपने कहानी और अपनी असल को सामने किसी के रख देते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और वो फिर उस अंदाज में जानता है जिस अंदाज में कोई नहीं जानता। अक्सर फिर होता ही है बंदे आगे से नहीं कहते, नहीं यार वाकई, अच्छा तूने ये किया,
1: बिल्कुल,
0: इसलिए कहते हैं उम्मीद नहीं होती किसी को,
1: वो अनएक्सपेक्टेड सी चीज हो जाए ना जब, तो वो फिर लोगों का रिएक्शन ये होता है जो भी आपने दिया।
0: सो दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ राज, आपकी क्या है आप बताएं, कॉल लेता हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
0: वालेकुम अस्सलाम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
0: अल्लाह का शुक्र है जी।
3: हाजी मुराद कोसा बात कर रहा हूं, हाजी मुराद कोसा लियारी से बात कर रहा हूं।
0: कैसे हैं सर? लियारी से बात कर रहे हैं, आपकी आवाज सुन के मुझे डर लगता है।
3: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? मेरे तरफ से आपके दोस्तों को सलाम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
3: जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ फिरान भाई
0: जी जी,
3: कि मुसलमान का दिल फौलादी होता है और जिस्म भी फौलादी,
0: बिल्कुल,
3: वो किसी से नहीं डरता है, सिर्फ अल्लाह से डरता है,
0: बिल्कुल ठीक बात है जी,
3: जिसने पैदा किया पैदा करने वाले से डरता है, बाकी किसी से नहीं डरता है, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है कि एक मुसलमान बंदा जो होता है नहीं, वो 40 काफिरों का साथ मुकाबला कर सकते है,
2: बिल्कुल ठीक है,
3: तो मुसलमान किसी से नहीं डरता है, सिर्फ अल्लाह से डरता है,
0: बिल्कुल ठीक,
3: मरना तो एक दिन है, हम लोग मौत को यानी तोहफा समझते हैं, अल्लाह से मुलाकात करने का जरिया है,
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल ठीक,
3: आदमी मर जाता है अल्लाह से मुलाकात करते है, हम मुसलमान है, हमारे लिए अल्लाह ने जन्नत बनाया,
0: बिल्कुल ठीक है,
3: काफिरों के लिए जहन्नम बनाया, काफिरों को अल्लाह ताला जहन्नम में भेजेगा,
0: बिल्कुल
3: सही, हमारे लिए बहिश्त है, बागात है, बागात,
0: बिल्कुल ठीक है,
3: तैयार है, कभी हमारे जो सरबराह में हुक्म दे दे इंशाल्लाह, हम काफिरों को साथ मुकाबला करेंगे, याद करेंगे इंशाल्लाह।
0: انشاءاللہ سر، انشاءاللہ انشاءاللہ
1: ضرور
3: آپ کو خوش رکھے
0: سر، بہت شکریہ،
3: پاکستان زندہ باد،
2: پاکستان پائندہ باد،
1: زندہ باد۔
0: اچھا جی، میری سٹریم
3: جو سربراہ میں حکم دے دے، انشاءاللہ ہم کافروں کو ساتھ مقابلہ کریں گے، یاد کریں گے انشاءاللہ۔
0: انشاءاللہ سر، انشاءاللہ انشاءاللہ
1: ضرور
3: آپ کو خوش رکھے
0: سر، بہت شکریہ۔

0: अच्छा कोई कूल कूल सा सॉन्ग लगा दें। ठीक हो गया जी, ओके हो गया। और ताहिरा मसूद साहिबा ने सलाम किया था, वालेकुम अस्सलाम, राजपूत है हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। और थैंक यू वेरी मच जी। एंड नहीं करना चाहिए शेयर। इसके अलावा और कौन है हमारे साथ, मैं नाम तो चले जो आ रहे हैं सामने वो तो देख ही लूँ। आयशा सुल्तान का भी मैसेज आया था, पाजी दूध पी रहे हो जब मैंने दिया है आपको। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच, आपकी मेहरबानी। एंड ओके, सुहेल बास ने भी ज्वाइन किया। लेट मी रीस्टार्ट माय स्ट्रीम, और कोई बात नहीं, खैर कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम आदर डॉक्टर भाई, क्या हाल है? और
0: अल्लाह का शुक्र जी, आप बताएं।
1: आपके साथ जो बैठे हुए इन साहब का क्या हाल है? क्योंकि मैंने प्रोग्राम
2: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक,
1: लेकिन आज सिर्फ आपको कॉल करने में लगा मैं।
0: अच्छा चले कोई बात नहीं सर,
1: और सुनाए कैसी, क्या टॉपिक रखा हुआ है आज?
0: टॉपिक ये रखा है, राज किसी को बताने चाहिए कि नहीं?
1: राज बताने चाहिए, क्यों नहीं?
0: राज बता के इंसान कमजोर हो जाता है?
1: नहीं, ये तो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है।
0: अच्छा,
1: सामने वाले के ऊपर डिपेंड करोगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप डिपेंड नहीं करोगे तो राज फिर राज है।
2: वो अगर बता दिया तो वो राज कैसा रहा?
1: यार वो अगर बता जाए तो फिर वो तो उसका मैटर है ना, लेकिन ये है कि अगर आप जिसके ऊपर आप रिलाई करते हो, आप जिसके ऊपर डिपेंड करते हो, तो आपको उसको अपना राज इसलिए बताना चाहिए क्योंकि क्या पता वो आपके लिए कोई बेहतरी का रास्ता निकाल दे।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इंसान कमजोर नहीं होता,
1: इंसान कमजोर नहीं होता, इंसान बल्कि उससे स्ट्रोंग हो जाता है। अगर आप अपने राज को राज रखोगे ना, तो रोज तनाई में आपको वो मारेगा, रोज आपके जो है ना क्या नाम है, तकरीबन तकरीबन एक एक कीटांग खून आपका कम होगा। तो इससे बेहतर ये है कि उसको ओपन कर दो,
0: बिल्कुल
1: सामने वाले के ऊपर है कि वो आपके साथ कितना सेंसियर है।
0: बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक, मुझे पसंद आई आपकी बात, आपने अच्छी
1: तो बात। तो मैंने कल जो है ना, कल वो कभी तारों से पूछो, चांद की किरणों से इतलाओ, मिलेगी जेरे की शहर
0: आहिस्ता आहिस्ता।
1: कल सर मैंने 2 घंटे आपको कॉल की, पता है ये रेडियो की तारीख में कल मेरा जो है ना ये बिल्कुल क्या कहते हैं, जैसे आज 101 का एनिवर्सरी डे का ना,
3: जी जी,
1: तो कल जो है वो, सॉरी यार, मुबारक हो यार,
2: खैर मुबारक भाई,
1: मुबारक हो यार, क्या बात है। देखो ना, आपने रात को शायद मैंने तो नहीं सुना, लेकिन आपने राज रखा, लेकिन मेरे पास पहुंच गया।
3: अच्छा, नहीं, हमने राज नहीं रखा, हमने आते सबसे पहले ये बात की है
0: सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
1: मैंने असल में प्रोग्राम आज कल सुन रहा था, मौजू पे था, जबरदस्त प्रोग्राम था। कल मेरे पास एक एक्स्ट्रा मोबाइल था, उसमें वो प्रोग्राम आपका चल रहा था, तो दूसरे पे जो है मैं अपनी उंगलियां चला रहा था, मगर कल नसीब ने साथ नहीं दिया।
0: अच्छा चले, मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके।
1: ये मेरे साथ 2-3 दोस्त बैठे हुए, वो पता नहीं क्यों कहते हैं कि अलमास भाई है, बोल रहा है मेरा सलाम कह दे, मुशरफ है कहते हैं हमारा सलाम कह दे।
0: वालेकुम अस्सलाम मुशरफ भाई,
2: सबको वालेकुम सलाम,
1: बस सब सुनने वाले को मेरा सलाम प्यार।
3: वालेकुम अस्सलाम,
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच,
1: वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, थैंक यू।
0: सना राजपूत हमारे साथ हैं, इनकी सेहत के लिए जरूर दुआ कीजिएगा जी, शी इज नॉट वेल। और फिजा बिल्कुल आपका मैंने मैसेज पढ़ लिया, आपने कहा कि पोलैंड हो गया, आप जीत गए, अच्छा ठीक है। अनमोल हैं, कमजोर हो जाता है इंसान, कमजोरफ इंसान किसी के राज को राज नहीं रखेगा, बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे मैसेजेस को शामिल करता हूं।

0: 44771 के फिर कॉल भी साथ साथ लेते हैं। अच्छा जी, बाबर जमान कलंदरी हैं फैसलाबाद से, कहते हैं मौला अली की शान में कसीदा चलाएं, मैंने बिल्कुल चला दिया शुरू में। नवाल है, कोई ताबीर नहीं थी जिसकी, हमने वो ख्वाब मुसलसल देखा। क्या हाय अब्दुल नूर हाशमी साहब रिवाज गार्डन से सुनते हैं डियर डॉक्स, आदाब आर्ज मोहसिन, आदाब,
1: थैंक यू।
0: सईदा निमरा है, मेरा कमेंट पढ़ते ही लाइव स्ट्रीम ऑफ हो गई। सोहेल अब्बास, नहीं पढ़ तो दिया ना, तुम तक पहुंच गया। निमरा लाहौर से हैं, सबको सलाम, वालेकुम सलाम। सर ये जो हर वक्त हंसते रहते हैं, कभी गले लगाकर देखना रो पड़ेंगे।
2: वाह,
0: आपने सही कहा है, इंसान की जिंदगी बेमानी है अगर किसी को उससे नफा ना मिले। बिल्कुल सही,
1: बिल्कुल ऐसे ही है।
0: छतूबा नवाज कहती हैं कितना अजीब इंसान। नायला तनवीर कहती हैं हेलो सर जी, क्या हाल है आपका, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। रेहाना खान बखर से हमें सुन रही हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। नाजिया आपको भी मुबारक हो 101 की सेलिब्रेशन। मौला बीमार करबला के सदके ज़िया भाई को सेहत और तंदरुस्ती वाली जिंदगी दे,
1: आमीन।
0: जल्दी सेहत याब हों, और लिखा है मिस यू ज़िया भाई, मिस हिम टू। अहमद खान लाहौर से, नाइस शो, थैंक यू वेरी मच। शहरियार पाकिस्तान आर्मी से सुनते हैं, कहते हैं आज के बाद नहीं सुनूंगा क्योंकि कॉल पे बात नहीं होती। यार शहरियार भाई,
1: करें कॉल, करें
0: यार, आज कॉल करें यार, ज्यादा से ज्यादा कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो,
3: अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम
2: अस्सलाम,
3: आप सुनते हैं हाल दिल मेरा, इनायत है, मेहरबानी है।
0: मैंने सुना ही नहीं कभी, आपने किसी और को सुनाया होगा।
3: वरना मैं क्या, मेरी हकीकत क्या, इस कदर पस मेरी कहानी
0: आए।
3: फ्रॉम हैदराबाद।
0: कैसे हैं शाहिद अंसारी साहब, फ्रॉम हैदराबाद।
3: डॉक्टर साहब और माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चों, आप दोनों को भी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, इन्हें कैसे पता हम प्यारे हैं।
0: अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र। लाइट ऑन करो यार, तुम्हें भी स्ट्रीम में होना चाहिए।
3: अच्छा वो जो आप कह रहे हैं रात का, यानी रात का तो ऐसा है कि वो कहते हैं कि जो बात अपने दुश्मन से छुपानी है वो अजीज तरीन दोस्त से भी छुपाए।
0: हाँ जी, अच्छा जी जी सर, सॉरी, वो उसने पंखा चला दिया, मेरे से रहा नहीं जाता, मुझे ठंड लगने लगती है। मैंने उसे कहा मैं तबीयतन मरासी हूँ, बंद कर दो।
3: अब तो लाजमी, अब क्या करे भाई, इस उम्र में बीवी पूछे क्या करते हो प्यार।
0: जी अच्छा, क्या कह रहे थे आप।
3: तो वो मैं कह रहा था कि जो बात अपने अजीज तरीन दोस्त, जो बात अपने दुश्मन से छुपानी है ना आपको
0: जी,
3: वो अजीज तरीन दोस्त से भी छुपाए।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है।
3: और जाने मेरे,
0: बस थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।
3: अच्छा ये जो इससे पहले कॉल आए थे उन्होंने पूरी गुफ्तगू कर ली है, हमारे भाई ने, ये हमारे यहाँ जाम शोरा से कॉल करते हैं, हफीज भाई नाम था उनका।
0: अच्छा सर, जबरदस्त, सर थैंक यू वेरी मच, सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी। मेहर फातिमा का मैसेज है, सलाम किया, वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर जी, मैं ठीक हूँ। आपने तो इस ट्यूसडे को रात 12 से 2 वाला शो करना था, मैंने आपका इंतजार किया, क्या करती हैं आप, अगर 12 बजे भी आई होती मैं 12 बजे था, मैं तो गया ही को 12:30 हूँ कल। सानिया, हाँ मैंने अपना राज किसी से शेयर किया था तो वो ठीक बात नहीं कि मैं उसके सामने कमजोर पड़ गई। अच्छा चले, आप कहती हैं तो मान लेता हूँ मैं, लेकिन आपका फीडबैक चाहिए मुझे, क्या राज शेयर करने से वाकई इंसान कमजोर होता है, वाकई कमजोर हो जाता है,
2: हो
0: तो क्यों होता है, आपने मुझे बताना है। अगर कॉल करें 0421100101, और इसके अलावा अपने मोबाइल से SMS कर सकते हैं। अगर महाजबीन लाइट बड़ी दिनों के बाद आई है, कहती हैं लाइट ऑन होने के बाद हर तरफ नूर आ गया, नूर आ गई होता है नूर आ गया नहीं होता
2: वो चेहरे की नूर की बात कर रही है
0: नूर आ गई है। एनीवेज एसएमएस करें अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 101 लिखें, स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और इसको भेज दें 4471 पे। सिद्रा हनीफ है लाहौर से, क्या फरमाती हैं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपको अपना राज किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, कमज़ोर हो जाता है राज बताने से, मैं नहीं मानता। लाहौर से सूफिया, सोफिया सलाम किया, वालेकुम सलाम,
2: सलाम।
0: आप सब कैसे हैं? और जी जब इंसान अपना किसी को राज बताता है वो कमज़ोर इसलिए हो जाता है कि राज किसी को बताना दे, क्योंकि जब भी कभी उस इंसान के साथ किसी बात पर झगड़ा होता है तो सबसे पहले वो राज ही मुंह पर मारता है।
2: बिल्कुल
0: सबके सामने, तो इसलिए अपना राज किसी को मत बताएं। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, है ना। मैर फातिमा कहती है सर एक रिक्वेस्ट है, जेड वाई के नाइट का सॉन्ग प्ले करते हैं। ओके ठीक है। नूर है लाहौर से, हम जिसे पसंद करते हैं या मोहब्बत करते हैं तो क्या सेकंड पर्सन को भी वो फील करता है या नहीं? वो फील होता है, वो फील हो जाता है। आपके जेस्चर, आपकी बातें बहरहाल कहीं ना कहीं फील करवा देती हैं जैसे आप मोहब्बत करते हो, और अगर आप कंटिन्यूसली उसके साथ किसी तरह से कनेक्ट करते हैं। और कनेक्शन, और कहीं पे भी आप जाएं, साइकोलॉजिकल एक आपको फैक्ट मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जो बंदा भी आपको दूसरों में मजमे में खड़े थोड़ा सा मुनफरद अंदाज में देखे, आपको किसी भी तरह से पसंद करे बंदा या बंदी, there are two, three stages like वो आप देखेंगे आपके पास आके खड़ा होगा, कोशिश करेगा, और आपसे अगर गुफ्तगू करेगा तो आपकी आंखों में आंखें डाल के करेगा, और जब भी गुफ्तगू करेगा आपको मुखातिब करेगा आपके नाम से या टाइटल, लाजमी मुखातिब करता, और फिर जहां पे मौका मिले तो वो बाने से हमें हाथ से हाथ मार देगा, कभी कंधे पे हाथ मार देगा, कभी किसी तरह।
2: बिल्कुल ठीक,
0: दीज आर द साइकोलॉजिकल पॉइंट्स।
2: सर वो बड़ा पोलाइटली भी आपसे बात करता है, उसका लहजा बड़ा पोलाइट हो जाता है आपसे बात
0: नहीं, कुछ लोग बोलने में पोलाइट होते हैं बगल में छुरी रख के।
2: नहीं नहीं, जो ये हम वो बात कर रहे हैं अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है,
1: नेचर एक जैसी नहीं होती, मैं नहीं इस चीज को मानता, वो डिफरेंट भी होती है। समटाइम्स लोगों का बोलने का अंदाज ही ऐसा होता है कि वो पोलाइट बनना भी चाहे तो वो नहीं बन सकते।
0: तुझे दो में लड़ो जरा, बड़ा अच्छा लग रहा है। आमना शहबाज फ्रॉम फैशनेबल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रास किसके साथ, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, मैं एग्री नहीं करता, मैं कहता हूँ राज बांट देना चाहिए। आप अपना राज उस इंसान से शेयर करो जो आपसे अपने राज शेयर करता हो, आकिफ कश्मीरी में। अच्छा चले, आपने शेयर कर दिया, आपने मुख्तलिफ नुक्ता नजर अपने सामने रख दिया, देयर आर सो मेनी पॉइंट ऑफ व्यूज दैट व्हेन यू शेयर योर सीक्रेट, अपना राज शेयर करते हैं तो खौफ होता है वो किसी से शेयर ना कर दे। नौशीन रशीद कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, क्या ही हो जाएगा, राज होते क्या है मुझे बताए ना, पहले थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड तो करें और फिर इस पर अपने अंदर टटोलें। क्या झूठ तो नहीं है जो आपने बताया है और सच के आया होने का खौफ
1: है? एग्जैक्टली,
0: दिस इज अनदर सिचुएशन कि बताया कुछ है, असल में क्या है, वो भी एक राज है।
2: बिल्कुल,
0: अगर आपने पहले झूठ ना बोला हो तो फिर खौफ का आएगा।
1: बिल्कुल ठीक
0: है, दिस इज अनदर प्रोपोजिशन, झूठ बोला फिर उसे भी हम राज कहते हैं और उसे झूठ नहीं कहते, थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएट करते थे, हमने इसे भी वो रख लिया। जी शानी मिस यू पायन, सलाम अलैकुम, बाद चो तुसी मैंने मिल के लिए ताड़ देंदे, मेरा मैसेज नहीं पढ़िया दे, फौरन रिस्पॉन्ड किया मैंने और झूठ बोलना और राज में फर्क है।
1: बिल्कुल ठीक,
0: झूठ को झूठ कहना चाहिए, हमें ये नहीं कहना चाहिए एक राज की बात बताऊं मैंने उसे ये नहीं बताया ये राज है, नहीं
2: वो झूठ
0: मैं झूठ बोलिया है उसे सच नहीं बताया
1: या गिबो तो होगी ये झूठ होगा
0: कुछ भी एनीथिंग। पहले
2: सर
0: तो
2: अगर आप किसी को झूठ बोलते हैं तो आपको उसे ये बता देना चाहिए कि यार मैं जरा झूठ बोल रहा हूँ तो इसको तुमने राज रखना है,
1: वो अगला यकीन कैसे करेगा।
0: मैं तुम्हारे साथ झूठ बोला तो बहुत अच्छा प्रोग्राम करते राज रखना इस तरह की बात
2: ठीक है
1: किसी को बताना ना ये
2: मैं नहीं बताऊंगा मैंने रख लिया राज कॉन्फिडेंशियल हो।
0: हेलो
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
3: क्या हाल चाल?
0: अल्लाह का शुक्र आप बताइए। वालेकुम अस्सलाम सर।
3: मोहम्मद आमिर बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं आप? खैरियत से बिल्कुल ऐसे ही है जी।
3: थोड़ा लेट हो गया
0: सर, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए।
3: 5 मिनट पहले मैंने लगाया तो फिर ये हो नहीं सकता कि आपका प्रोग्राम हो और उंगलियां जो है वो जाए ना।
0: सर आपकी मेहरबानी सर।
3: सही है और सुनाए सब ठीक ठाक है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र।
3: अच्छा सर एक छोटी सी बात, सबसे पहले तो मैं ना एक ना अपने रहमान अनवर साहब जो है ना उनको मैसेज दीजिएगा कि सर हम भी पड़े हैं राहों में, कल उन्होंने आपके प्रोग्राम छोड़ने के बाद इतनी लंबी तकरीर कर दी यकीन करें कि यार आप खुद बोल रहे हैं हमें भी तो चांस है यार हम भी कुछ आगे बोले।
0: नहीं उनका फॉर्मेट है ऐसा, वो थोड़ी कॉल्स कम लेते हैं।
2: बिल्कुल
0: फॉर्मेट है उनका, सच ए लवली पर्सन, बहुत अच्छा, बड़ा मजेदार है।
3: अरे मैं पता है कहते हो कि FM 101 के जो है ना 3 सितारे हैं, सही है
0: जी।
3: RJ डॉग नंबर 1, उनके बाद रहमान अनवर और अपने प्यारे से टॉप ऑफ द टॉप
0: ज़िया भाई।
3: ज़िया भाई क्या बात, अल्लाह ताला उनको सेहत और तो आप 3 ही तो हैं जिसके मैं प्रोग्राम बड़े शौक
0: सर आपकी मोहब्बत है।
3: जी तो क्या आज का कुछ मौजू वगैरह रखा हुआ है आपने?
0: सर आजकल मौजू ये रखा पैसे किस तरह कमाए जाए मैं तो दिन रात यही मौजू अपने अंदर रख के फैल रहा हूँ पैसे कैसे कमाऊं मैं, ज्यादा से ज्यादा इतने पैसे कमाऊं कि मैं फिर आपको नजर ही ना आऊं, कभी इधर कभी उधर, कभी इस मुल्क कभी इस मुल्क,
2: पकड़े ही ना जाए,
0: घूमता ही फिरता रहूं। मुझे आप मैसेज करें मैं कहूँ आज मैं डेनमार्क हूँ, अब मैं स्वीडन हूँ, अब मैं नॉर्वे हूँ, बस मैं फिरता रहूं।
2: क्या बात है,
0: मैं वापस ना आऊं ताबूत आए मेरा।
2: कैसी बातें कर रहे
3: हैं आप, क्या बात, पैसे कैसे कमाए जाए, जो अल्लाह ने नसीब में लिखा है वही मिलना है
2: बेशक।
0: हाँ
3: मेहनत करना हमारा काम है, फल देना उसका काम है,
0: बेशक ऐसी है, बेशक।
3: हीला करेंगे तो वसीला बनेंगे ना, तो जब हम
0: सर मैं बड़े हीले करता हूँ यकीन करें, बहुत सारे हीले कर रहा होता हूँ,
1: हीले ज्यादा वसीले कम है।
3: देखिए आपकी जो सबसे बड़ी बात बताऊं कि देखें एक होते हैं मौलाना आलिम, वो मस्जिद में बैठ के तकरीर करते हैं, लोग उनको सुनते हैं
0: जी,
3: उनको फॉलो करते हैं
0: जी।
3: आप वो आलिम हैं, वो लोग हैं जो कि रेडियो पे बैठ के बात करते हैं और आप लोगों को फॉलो करते हैं, लोग हम लोग आप लोगों की अच्छी अच्छी बातें फॉलो करते हैं।
0: अल्लाह अल्लाह हमारे से अच्छी अच्छी बातें करवाए,
3: बातें ही कहलवाए। ये बिल्कुल मैं इस चीज के ऊपर बिल्कुल रहती हूँ आपके साथ, क्योंकि आप जो कहते हैं लोग उसको सुनते हैं।
0: बिल्कुल ऐसी है दी।
3: अब डिपेंड ये करता है कि आप लोगों को क्या बताते हैं।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं,
3: क्यों कि आज तक मैंने देखा है कि कोई भी चैनल खोल लो ना, चाहे वो टीवी का हो चाहे वो रेडियो का हो, उसमें बस एक ही रट लगी होती है, चाहे वो लेडी आरजे हो या तो डीजे आरजे हो या चैनल,
0: कितना फुकदान है प्यार मोहब्बत का,
1: हर बंदा इसी लाइन पे,
0: हर बंदा प्यार मोहब्बत पे बात कर रहा है।
3: लोगों को ना वो ट्रक की पत्ती के पीछे लगा छोड़ा है। दुनिया में इतने इस्लाही बातें हैं, इतनी इस्लाही बातें हैं, इतनी बातें हैं कि आप लोगों को वो तो बताए
0: सर, फिर हमारी इसलाह कर देना। मेरा आज का सवाल है कि इंसान अपना राज किसी को बता देने से कमजोर होता है।
3: राज बहुत بہت قسم کی ہوتی ہیں. ایک راز تو وہ ہوتی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کسی کا راز ہے تو وہ چھپاؤ, روز قیامت میں تمہارا راز چھپاؤں گا.
0: بالکل ٹھیک بات ہے, وہ تو کسی کا پردہ رکھو تو تمہارا پردہ رکھا جائے.
3: یہ راز بڑے قسم کے ہوتے ہیں, کیونکہ آج کا جو اچھا دوست ہوتا ہے نا, وہ کل کا آپ کا سب سے برا دشمن وہی ہوتا ہے.
0: میری ساری دوستیاں ختم آج سے. ذیشان تم ادھر ہی ہو, تم سے میری دوستی ختم. جاؤ بھاگ جاؤ.
3: یہ فیکٹ ہے, یہ بڑے کسی بڑے کا کال ہے
0: سر. یہی مدعا سامنے ہے میرے, یہی مدعا ہے سامنے.
3: تو اس لیے کہ اپنی جو وہ راز آپ سوچیں, وہ راز جو کہ کل کلاں کو آپ کو نقصان پہنچائے, وہ راز نہیں بتانا چاہیے.
0: بالکل ٹھیک سر.
3: وہ راز ہاں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ مسائل ہے, کوئی گھر کی پریشانی ہے, کوئی ویسے کوئی کاروبار کی پریشانی ہے, کوئی ویسے ہے, تو وہ شیئر کریں, اس کو بتائیں کہ یار یہ اس کا کوئی حل بتاؤ یار تو یہ. لیکن ایسا راز مت بتائیے کہ کل کلا کو وہ آپ کے وبالے جان بن جائے.
0: سر ٹھیک, بالکل ٹھیک. آپ کا بہت مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ سر. تھینک یو جی, السلام علیکم. اچھا جی, اب یہاں پہ

0: अच्छा आयशा सुल्तान कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। ये तो फिर इंसान पर मुनहसर है कि किसको राज बताना है या बता रहा है। अपना वीक पॉइंट किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, वो आपका बेहतरीन दोस्त ही क्यों ना हो। राज तो है ही वो चीज़ जिसका आपको अंदेशा हो कि ये बात, ये शख्सियत का पहलू दुनिया के सामने ना आ जाए। मेरे दोस्त तो मेरे क्राइम पार्टनर हैं, मेरी तो ज़ात के बारे में वो कुछ उन्हें पता, इसलिए मैं यहाँ पे बैठ के कहता हूँ मैं हाजी नहीं हूँ। मेरे बारे में गलत राय मत कायम किया करें खुदारा। इसलिए आपने मेरे मौजू नहीं देखे। मौजू मैं अक्सर कहता हूँ, मैं मौजू रखता हूँ जो इनर फील, इनर थाट आ रहे होता है ना, उसके ऊपर मेरी कोशिश होती है इस तरह की चीज़ों पर बात की जाए। अच्छा नाइला तनवीर साहिबा, सर आपका नेक्स्ट शो नेक्स्ट ट्यूसडे है? यस इंशाल्लाह ऑन ट्यूसडे 12 से 2 बजे करूँगा। अगर आपसे मिलना हो तो मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं जी। मैं बड़ा अवामी सा आरजे हूँ, मैं तो जी एक कॉफ़ी के कप पे बिक जाने वाला हूँ। भाई जान आप थके थके नज़र आ रहे हैं, नज़र आपको आ रहा हूँ, इसलिए आपकी नज़र थकी थकी तो नहीं है कहीं? मुझे तो नहीं ऐसा कुछ नज़र आ रहा। अच्छा जी मरीना बिलाल डॉक्स, आप पैसे जमा करके स्पेस में चले जाएं, आपका इधर उधर घूमने फिरने का शौक पूरा हो जाएगा। आप इनडायरेक्टली कहना चाह रही हैं आप दफा हो जाएं यहाँ से, ठीक है। हजरत अली से मंसूब है, तुम्हारा राज तुम्हारा कैदी है, अगर तुमने इसे जाहिर कर दिया तो तुम उसके कैदी बन जाओगे। बिल्कुल ठीक है। सलमा राशिद साहब आई हैं, सलाम किया, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैडम आप? खैरियत से। अच्छा गाना मैं बदल रहा हूँ, गाना मैं काफ़ी ज़्यादा वो थोड़ा लो टेम्पो पर चला गया। तो राज के बारे में बात चल रही है, राज देना चाहिए। लोग कहते हैं राज दे देने से कमजोरी होती है, राज होता क्या एक्चुअली ना? राज के बारे में मैंने बताया आपकी शख्सियत, झूठ राज नहीं होता। पहले तो ये क्लैरिटी थोड़ी सी हो जाए कि झूठ राज नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ होता है और उसके मुकाबले खड़ा होता है सच। तेरा लाए ना जाए वो राज नहीं होता। राज मैंने आपको बताया, मेमोरीज हैं बहुत सारी, राज आपके फियर्स हैं, राज आपके रिग्रेट्स हैं, यहाँ कोई इरादे हैं, कोई किस्से हैं, कोई कहानियाँ हैं। सो राज ये है, और राज आपके मोस्टली जज्बात से जुड़ी चीज़ होती है। आपने बताया आपकी बात बाहर निकल गई तो आपको क्या हुआ, आपके जज्बात को ठेस पहुंची, आपके जज्बात को पहुंची, मेरे जज्बात को पहुंची, और फिर आप क्या कहते हैं यार ये बात तो सिर्फ तुम्हें पता थी, मैंने तो किसी को बताई नहीं थी। जब आपको किसी और से पता चलती है तो आपका दिल टूटता है, यानी आपको तकलीफ पहुंचती है। तो तकलीफ पहुंचती है मींस समथिंग इट इज रिलेटेड टू योर इमोशंस, आपके जज्बात से जुड़ी चीज, उसका किसी के सामने आया हो जाना। आइए ऐसा नली आए हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बन गया पान मकबरा बन गया, तुम बसंत पे आ रहे हो ना? आज वो गाना भी बसंती चला रहा हूँ मैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आपके जज्बात को ठेस पहुंची आज नहीं तो कल, आप भूल गए?
1: भूल गए,
0: मतलब क्या ही हो जाएगा यार?
2: बिल्कुल।
0: क्या
1: सर वो
0: ही हो जाएगा?
1: वो हम अक्सर कहते हैं ना दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, एट द एंड हमें पता चलता है दुनिया हमारे बारे में कुछ सोचती नहीं है, अगर सोचती भी है तो कितनी देर।
0: अच्छा इसमें भी दो तरह की कैटेगरीज होती हैं इंसानों की, एक वो जो सोचते हैं के बाई से शर्मिंदगी ये बात बन जाएगी मेरे लिए,
1: बिल्कुल ऐसे ही है।
0: देयर आर टू कैटेगरीज।
1: जी जी,
0: जैसे मैंने शुरू में कहा के एक वो जो चला भेड़ चाल में,
2: बिल्कुल,
0: जो लोगों की रविश में ही चलता रहा, चलता जो लोगों रहा। ने कहा सर थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाइए एहसन भाई, मुंतजर हैं बसंत आपकी। और जब भेड़ चाल में चले ना तो जमा के लिए की गई बातें, यानी जो मजमा आम के लिए दीन ने भी बातें बताई, तसव्वुफ ने की, मौलाए कायनात हजरत अली ने की, आलिया ने की, बहुत बड़े बड़े समझदार लोगों ने की, वो बातें की जो आम लोगों की जमा के हवाले से, यानी जिस तरह लोग सोचते हैं। और एक कैटेगरी वो है जो उस तरह से परफॉर्म करते हैं जिस तरह सब नहीं करते, जो स्टैंड अलोन अलग से परफॉर्म करते हैं, उनके लिए चीजें मैटर नहीं करती, उनके लिए कानून भी डिफरेंट होता है।
2: ट्रू,
1: बिल्कुल ऐसी है,
0: क्योंकि उनके सोचने का अंदाज, उनका एंगल, उनकी बातें, उनकी चीज और होती है। और इस पर खैर मैं आगे मजीद बात चलाऊंगा। माजबीन कहती हैं, वो बात जो सामने आए तो शर्मिंदगी हो या उससे लोग किस में मुबतला हों, वहम में मुबतला हो जाए या उसके चिन जाने का खौफ हो, राज होता है। मैडम सलमा राशिद साहिबा कहती हैं, राज वो होता है जो आपके अपने पास ही रहता है, अगर शेयर हो गया तो राज नहीं रहता। ये टेक्निकल बात है, अब मैं भी, आपने पहले ही यहाँ कर दी देखे जो बाहर निकल गई राज से ना, ना
1: राज, तो
0: राज तो है ही वो जो आपके अंदर रह गया, तो बाहर तो निकलता ही नहीं है। एनीवे यू गोना प्ले दिस ट्रैक, रंगीन, डोंट गो एनीवेयर, इट्स 11:41 PM ऑन द डायल, दिस इज आरजे डॉक्स। बात चली है, राज वाकई बता देना कमजोर करता है कि नहीं, आई बिलीव नहीं करता। अभी आते हैं बात करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मुझे गलत साबित करते रहे, और अच्छा लगता है मुझे गलत साबित करें। 0421100101 और SMS भी कर सकते हैं अगर आपकी कॉल नहीं मिलती। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, आपने 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है, इसको भेज देना है 4471 पे। वापस आके सिर्फ मैसेजेस पढ़ेंगे और कॉल्स लेंगे, और एंड पे जाते हुए एक दो जुमले बोल के इजाजत ले लूंगा, ताकि आज ज्यादा कॉल्स ले, गाना चल जाओ।

0: राइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है 11:46 FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरजे डॉक्स, और प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अहमद बिलाल और आरजे मोहसिन। अब मैं मैसेजेस शामिल करता हूँ और कॉल्स लेते हैं। अच्छा जी, आतिफ कश्मीरी हैं आप, बहुत अच्छा शो करते हैं, आपको एंड लवली लवली बॉयज को बहुत सारा सलाम है। ये लवली लवली बॉयज,
1: वालेकुम सलाम,
0: वालेकुम सलाम। ए बॉयज, बॉय बॉय बॉय खुश हो रहा है बॉय।
2: हेलो,
0: और एक ये बैठा हुआ है
2: शाय बॉय थोड़ा।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: ये मोहसिन हैं, ये बिलाल हैं, और यहाँ पे ऐसे करके
2: रखते
0: नजर आ रहे कौन कौन आ रहा है। आप अपना माइक थोड़ा सा उधर कर लोगे ना, दोनों नजर इधर से आ जाओगे, है ना? हाँ, आ जाओगे। नबीला ने मैसेज लिखा, नबीला होए होए, क्या मैसेज,
1: कितना इंपॉर्टेंट मैसेज।
0: निमरा सईदा निमरा, इंसान थोड़ा बनावटी होता है, लोगों के सामने एक अलग साइड दिखाता है, वैसे खुश अलग होता है। जब वो अपने राज अपने अजीज को बताता है, उसे डर होता है कि अपनी साइड शो करवाएगा और इस बारे में क्या सोचेंगे, और पहले के मुकाबले में अब उससे किस नज़र से देखा जाएगा। यही तो रौला है, यही तो रौला सारा। 4471 के मैसेजेस पहले मैं पढ़ जाता हूँ ना जी। सलाम किया भाई, कैसे हैं, कमाल का शो करते हैं। सलमा फ्रॉम पेशावर, बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं सलमा, आप मामला ठीक हैं, खुश हैं। अब्दुलनूर हाशमी साहब रिवाज गार्डन से, लिबनान के फलसफी खलील जिब्रान कहता है, जब तुमने अपना राज हवा पर जाहिर कर दिया, अब हवा इसे पत्तों पर जाहिर कर दे तो तुम हवा को बुरा मत कहो। हाँ ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। मैं थोड़ी राय मुख्तलिफ रखता हूँ कि मैं अपनी ज़ात में एक अलग से, हर बंदा फलसफी होता है, मैं भी फलसफी बनी फिरना ना, मतलब इतना तो यार डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, फिर बंदा पीएचडी के बाद इतने
1: अपनी
0: तो फिर,
1: राय तो रखेगा,
0: अपनी राय तो रखनी बनती है ना जी। सारा खान है जी, सलाम किया, वालेकुम सलाम, हाउ आर यू ब्रदर्स, तुम दोनों के बारे में कहा।
2: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: सबको बहुत बहुत मुबारक हो, पेशावर से सुन रही, मैं भी ठीक हूँ सारा, वो दोनों भी ठीक है। सलाम कह रहे हैं जी, आ गया
2: सारे भाई, कह देते हैं मेरा दिल टूट जाता है।
0: अच्छा जी, आरजे साहब सुनने वालों को मेरा सलाम, वालेकुम सलाम, आपके शो की बहुत फैन हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत शौक से सुनती हूँ, आपको बोलने का अंदाज, बात करने का अंदाज, वेरी वेरी गुड, आई लव दिस शो। सोनिया है लाहौर से, थैंक यू वेरी मच सोनिया फॉर लविंग माई शो। गोना टेक द कॉल जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
3: अस्सलाम वालेकुम भाई।
0: वालेकुम अस्सलाम।
3: सीमा खान बात कर रही हूँ कराची से।
0: सीमा खान
3: जी सर।
0: कौन सा खान?
3: सीमा खान।
0: सीमा खान, क्या हाल है, आप ठीक हैं, खैरियत से? कल भी आपने कॉल की थी।
3: कल मैंने कॉल किया था, आखिरी में मैंने कॉल काटा तो आपके चैनल भी चला गया, शो भी नहीं सुना।
0: कल मैंने पश्तो गाना भी लगा के रखा,
3: वो भी मैंने नहीं सुना सर। आज तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पहले तो सालगिरह मुबारक हो ऐसे मनाने का सबको, कराची वाले को और आप लोग सबको सलाम,
0: वालेकुम
2: अस्सलाम,
1: बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू वेरी मच जी। इसके अलावा
3: और आज आज मैंने शाम को मैंने वो कराची का शो, आज वो काजी जो सब बैठे थे शो किए, मैंने वो नहीं सुना क्योंकि मेरी माँ थोड़ी सी बीमार है, उनको चक्कर बहुत आ रहे हैं, बहुत बीमार है,
1: अल्लाह ताला उनको सेहत दे,
3: उनकी दुआ कर। अभी आए डॉक्टर से, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक है, ये तो बहुत लो हो जाती है, उनको उल्टियाँ भी होती है, कान सी भी बीमारी तो
1: जी जी,
3: इसलिए दुआ कर मैं माँ के लिए की माँ ठीक हो जाए
1: जी, इंशाल्लाह वो ठीक हो।
0: अल्लाह आपकी वालिदा को सेहत सलामती वाली जिंदगी दे, बहुत सारी दुआएं आपकी वालिदा,
2: सबकी वालिदा को सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी,
0: अपना बहुत सारा ख्याल रखें
3: जी सर,
0: थैंक यू वेरी मच। मदीना बिलाल मैसेज किया हुआ है इन्होंने, अच्छा लाहौर वाली पोस्ट पे, वेरी बेस्ट आज है, मल्टी टैलेंटेड पर्सन, इल्म और हिकमत वाला इंसान। अच्छा कौन किसकी बात कर रही है?
1: मेरी,
0: मोहम्मद अशफाक मुगल। ओके मेरा भाई,
2: डेफिनेटली आपकी बात हो रही है सर।
0: नहीं मैं गलत, मैं इससे एग्री नहीं करता, और ऑनेस्टली ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ करवाने के लिए, नहीं नहीं नहीं नहीं, मैं जेन्युइनली एग्री नहीं करता। आपको लगता है इंसान की फितरत है कि वो किसी भी चीज को दो बार की दो बार कदर करता है, एक मिलने से पहले दूसरा खोने के बाद। हाय हाय अजमा इजाज साहब, खिजा की शाम थी पत्ते भी उदास थे,
2: मगर बड़ी बड़ी सच्ची बात की है
0: ना, हवा चली तो कई यादें बिखर गईं, हाय होए टूटे पजे लोग मेरे जैसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कौन है हमारे साथ?
4: मैं उमरान शाह बोल रहा हूँ
0: सर।
4: मेरा कहना ये है कि मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ
0: सर,
4: कोई बातें ऐसी होती हैं कि जिसको राज रखना पड़ता है।
0: बिल्कुल ठीक बात।
4: और कोई बातें ऐसी होती हैं कि घरेलू बातें होती हैं, वो बताना जरूरी होता है।
0: बिल्कुल ठीक बात है सर।
4: अगर वो आप रास्ते रखेंगे तो आप जो है ना, आपको कोई मशवरा देने वाला नहीं होगा और बात जो है ना वो ज्यादा बिगड़ जाएगी।
0: बिल्कुल ठीक बात है सर, मुझे अच्छा लगा आपने मुझे ये नसीहत की और बहुत अच्छी बात की। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा सर?
4: बस जी मैं आपको एक सलाह बनाना चाहता हूँ
0: जी,
4: अपनी राज की बात मैं आपको बताऊं, आपको मुझे कोई हाल बताएं उसका
0: सर।
4: बच्चों को पाला पोड़ा, पोसा, जवान किया, पढ़ाया
0: जी।
4: जब वो अपने पैरों पे खड़े हुए
0: जी,
4: तो उनकी वालदा ने मुझसे उनको मुखालिफ कर दिया।
0: अच्छा,
1: बदजन कर दिया।
0: ठीक है,
4: तो कैंसिल कर दिया। तो अभी बड़ा बच्चा कहता है कि अगर आप घर आओगे तो मैं खुदकुशी करूंगा, तो मुझे ये बड़ी परेशानी है, 14 साल हो गए घर से बाहर।
0: सर बात तो आपकी ठीक है, तकलीफ वाली है, मैं आपकी जगह पे अपने आप को रखूं तो मैं आपकी जगह पे खुद को रख के कुछ इजहार करने की इजाजत दें तो?
4: जी जी बिल्कुल
0: सर। 14 साल कट गए
4: जी जी,
0: मुझे मेरे बच्चों से मोहब्बत होगी बहुत ज्यादा, 14 साल भी इसीलिए मैंने काट दिए खामोशी से
4: जी जी।
0: दिल तो मेरा बहुत करता है मैं उनके साथ जाके वक्त गुजारूं,
4: बिल्कुल,
0: लेकिन मेरे लिए उनकी खुशी से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। कुजा ये कि मैं अपनी ज़ात को आगे रखूं और फिर जो चाहे गलत फहमी है या किसी वजह से भी मेरे खिलाफ है
4: जी जी।
0: वो सारे 1, 2, 3 जितने भी अफराद हैं उनकी खुशी को ख़राब कर दूं, तो मैं ये चाहूँगा कि वो जिस हाल में खुश हैं चाहे मुझसे दूर रहकर तो खुश रह लें। तो मेरा तो ख्याल है, लेकिन बात बड़ी तकलीफ वाली है
4: सर। बात ये है ना कि पहले तो बच्चे थे, मैं डरता था कि वाकई खुदकुशी कर जाएंगे। अभी बड़ा बच्चा है, तकरीबन 40 साल का है
0: तो इसका एक ही हाल है सर, दरमियान में कोई ऐसा शख्स हो जो थोड़ा थोड़ा सा बदगुमानी को इस कम करके सिर्फ ये इंतजाम करे कि आपकी उससे अलग मुलाकात हो जाए,
1: मुलाकात हो जाए।
0: जब अकेला एक घर का बच्चा, वाहिद बड़ा बच्चा अगर आपके साथ आपकी बात सुन लेगा, उसके बाद वो बाकियों की राय बदलने में कामयाब हो सकता है। अगर बड़ा नहीं सुनेगा तो फिर ये मामलात मुश्किल है, तो ये जरा कोशिश कीजिए। बाकी मैं आपके लिए दुआ गो,
4: दुआ करें मेरे लिए।
0: बहुत सारी दुआएं हैं सर, बहुत सारी दुआएं। थैंक यू। تھینک یو جی
4: مہربانی
0: اللہ حافظ. تکلیف والی بات ہے
5: بہت تکلیف.
0: ہمارا اللہ آسانی کرے. شیخ ذیشان جی اسلام کیا. وعلیکم السلام سر. کچھ راز ایسے ہیں جو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے جاتے مگر کچھ راز شیئر کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے. سائیکالوجی سیز وین یو سے سم تھنگ ویل یو ٹیل سم تھنگ جو آپ کے بڑے اندر کی بات ہے کسی کے ساتھ جب آپ شیئر کرتے ہیں تو آپ کی ذات پہ ایک وزن ہوتا ہے.
1: وزن ہوتا ہے
0: بالکل. اس وزن کو کم کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے فزیکل برڈن, ایک ہوتا ہے ایموشنل برڈن. اور ایموشنل برڈن آپ کے جسم کی پوری کی پوری حرکات و سکنات کو بدل دیتے ہیں. تو اس صورتحال میں اپنی باتیں کسی سے شیئر کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا جو آپ کو تکلیف دیتی ہیں.
1: بالکل ایسی ہے.
0: میکسیمم کیا ہی ہو جائے گا, کوئی جا کے کسی کو بتا دے گا اور کیا ہی ہو جائے گا. یہی تو میرا کہنا ہے, یہی تو بات میں بار بار کرتا ہوں کہ کیا ہی ہو جائے گا. ایموشنل برڈن لے کے آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یقین کریں متاثر ہوتا ہے. انسان کا دل نہیں کرتا ہلنے کا, جہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں. آپ کے ذہن میں وہی ایک بات پھنسی رہتی ہے, کبھی کوئی چہرہ پھنسا رہتا ہے, کبھی کوئی شخص, کبھی کوئی بات, کوئی قصہ, کوئی کہانی, کوئی غلطی, کوئی ریگریٹ, کوئی اپنا کیا ہوا نہ کردہ گناہ.
1: بالکل.
0: یا کوئی غلطیاں جو آپ سے سرزد ہو جاتی ہیں, بلنڈر, وہ آپ کے جسم کی حرکات کو بھی روک دیتی ہیں. آپ عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو آپ کا دل نہیں کرتا کام کاج کرنے کا, کیونکہ اگر آپ کا ذہن الجھا ہے تو آپ کا جسم بھی الجھا رہتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کا اظہار لازم ہے آپ پہ اگر آپ چاہتے ہیں زندگی آپ کی آسان رہے. مرینا بلال نے سلام کیا. اوکے وعلیکم السلام. ہدایت سلار زئی سلام کیا فرام کراچی سے. وعلیکم السلام. غلام مشتبہ شاہ صاحب ہیں, بارہ کو سے سنتے ہیں. بہت شکریہ. سخن لکھتا ہوں لفظوں سے مرید کرتا ہوں, نیا شاعر ہوں شاعری بھی جدید کرتا ہوں.
1: کیا بات ہے
0: جی. محمد حمزہ موسیٰ والی پپلا سے سنتے ہیں. بہت شکریہ. حمد اللہ ملخیل ہیں. ساجد علی سکا ہیں. بہت شکریہ جی. قول ناز ہیں. بہت شکریہ. اوکے میں ان کے نام لیتا ہوں جن کے نہیں لیے گئے. نورین توصیف ہیں. یہ لمحے عشق و مستی کے صدا پابند نہیں رہتے, صدا خوشیاں نہیں رہتی, ہمیشہ غم نہیں رہتے. ذرا دیکھو کہ دروازے پہ دستک کون دیتا ہے, محبت ہو تو کہہ دینا یہاں اب ہم نہیں رہتے. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ جی. اور نورین توصیف ہمیں فیصل آباد سے سنتی ہیں. بہت شکریہ جی. عظمہ اجاز صاحبہ آپ کی بڑی مہربانی. بہت سارے پیغامات ہیں. پوئٹری ہے آپ کی. قول ناز صاحبہ آپ کے بھی پیغامات ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. اور جاتے جاتے ابھی یہاں سے ڈسکنیکٹ انٹرنیشنل سے ہو جائیں گے ہم. رحمان انور کا بعد ویٹ کریں گے. آپ لاہور اسٹیشن اگر ٹیون کریں گے تو میں یہیں پہ رکا ہوں ابھی. تو بات یہی ہے, راز وہ آپ کی ذات کا حصہ ہے جس کے نکل جانے سے, جس کے عیاں ہونے سے آپ ڈرتے ہیں. اگر آپ کے اندر خوف نہیں ہے تو اپنی بات شیئر کر دیں, اور کسی ایسے شخص سے شیئر کر دینے میں کوئی حرج نہیں کہ جس پہ آپ کو اعتماد ہو اس چیز کا کہ آپ کو فی الوقت وہ ایک اچھی رائے دے گا. باقی باتوں کا کیا ہے, باتیں آپ کے کہے بغیر بھی 100 ہوتی ہیں آپ کے بارے میں. اور ہو بھی جائے کچھ آپ کی ذات کے بارے میں تو کیا ہی ہو جائے گا. دس از واٹ آئی بلیو سمپلی. سو خود کو ٹینشن دینے کے بجائے, ایموشنل برڈن دینے کے بجائے, جس پیٹ اٹ آؤٹ, نکال باہر پھینکیں اس کو. سمپل سی میری تو یہی بات ہے. اور ہاں جی اسلام آباد والے میسیجز ہیں. طاہر عزیز صاحب ہیں. بہت شکریہ جی. آپ کا پیغام مجھے موصول ہوا. عبد القدیر صاحب ہیں. اٹس می ایشا راجپوت. اچھا فرام لاہور. اٹس مائی فرسٹ پارٹیسپیشن ان ریڈیو نائس شو. سر ضیاء انجم کے لیے ڈھیروں دعائیں. بہت شکریہ.
1: تھینک یو.
0: دعا کرتے رہیں. مشتاق علی ہیں. ہیپی برتھ ڈے کہا عدن فاطمہ نے. ہیپی برتھ ڈے ایف ایم 101 کو کہا. بہت شکریہ. اسٹائلش پختانہ نے سلام کیا. وعلیکم السلام. آز اے ڈاگس لو یو ہو گیا. ایف ایم جان ہے میری. سلامت رہیں. بہت شکریہ جی سر. لو یو ٹو. ہیپی ایس 28th اینیورسری. واہ واہ تھینک یو ادن. آپ نے مجھے یہ بھی بتایا, میرے نالج میں نہیں تھا. اکثر انسان اپنے راز کا तस्करा उस इंसान के साथ करता है जो उसे बुरा चाहने वाला हो। राज राज ही रहे तो अच्छा है, अपने वक्त पे ही मंजिल मिल जाएगी। अच्छी बात की आपने। स्टाइलिश पख्ताना, नाइस शो, नाइस वॉइस आपकी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके पैगाम का बहुत शुक्रिया जी। एंड हु एल्स इज हियर? हेलो,
5: अस्सलामुअलैकुम सर।
0: वालेकुम अस्सलाम सर।
5: सर बोधि जाट सर।
0: बोधि जाट साहब कैसे हैं?
5: सर शुक्र है अल्लाह का सर, माशाल्लाह। सोलिया गल्ला सर, एफ वाल वाल दी पूरी टीम सर, सालगिरह मुबारक सर।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
2: थैंक यू सो मच।
5: हाँ जी सर, ते माशाल्लाह सर, राज साल दा कोई भी ऐसा नहीं खतरनाक हुंदा या गलत नहीं हुंदा सर। साल आप अच्छी शख्सियत हो वे सर, राज कोई भी गलत नहीं है, राज शेर का बॉस।
0: सही कह रहे हैं आप।
5: हाँ जी, बुखलस दोस्त हो सर, ते कोई ऐसी गल नहीं सर। ए वेखो अगे भाई हरी है सर, उन्हें किड्डी वड्डी गल दसी है सर, ते इस तो वड्डा कोई राज हो ही नहीं सकता बॉस।
0: सही बात है, बिल्कुल बजा फरमाया।
5: हाँ जी सर, ते सलावत रहो सर, तवाब सुनने वाले ने मेरा सलूट सर, ते तुहानू दो हथां नाल सर सलूट। ते सर अज तुसी सॉन्ग सुना के जाना, वो दिल की बातें जुबान से सुनो।
0: अच्छा जी, ठीक है, मैं गाना याद करके सुनाना सर।
5: सलामत रहो सर, सलामत रहे, जिंदाबाद
0: सर। मैं याद कर लूं फिर मैं जरूर सुनाता हूं, बहुत शुक्रिया।
5: वो दिल की बातें दिल की जुबान से सुनो सर।
0: अच्छा ठीक है सर, मैं कहता हूं शाह साहब ये गाना देखो जी है ते। सर मैं जरूर जी जरूर शाह जी ये गाना नोट कर लें, अगर आज नहीं मिलता तो कल इसको अगले शो में लाजमी।
5: वो दिल की बात है दिल की जुबान से सुनो सर। वो लड़की आवाज है सर, तुम ला दे उनके अंदाजे करब, ए उससे लड़की की आवाज है सर।
0: ठीक है सर, सर ठीक हो,
5: खैर हो सर, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद
0: जिंदाबाद जी। आतिफ, ये आप सबके लिए है, हमसे पूछो कि मोहब्बत में खसारा क्या है। जान लेकर भी कोई पूछे कि हारा क्या है।
1: हाय हाय,
0: एक उम्र कटी जिनसे वफादारी में, वो कहते हैं तुम तो पागल हो, तुम्हारा क्या है। वाह वाह, सारा खान कहती हैं, भाई आज मैं फर्स्ट टाइम आप लोगों का शो सुन रही हूँ, माशाल्लाह बहुत प्यारा शो है आप लोगों का, नाइस शो, पिशावर से सुन रही है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, नबीला कहती है आपकी आवाज अच्छा जी ठीक है, आप मेरी आवाज पसंद कह रही हैं। आगे मुझे समझ नहीं आया, आगे मुझे पता नहीं क्या लिखा आपने, बेइज्जती तो नहीं किया आपने। हेलो हेलो हेलो हेलो,
6: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम बिनते हव्वा, आई हैड इमोशनल बर्डन फॉर पास्ट 2 इयर्स, आई लॉस्ट माय लॉन्ग हेयर, वेट, ग्लो ऑन स्किन, आई मेड फ्रेंड्स इन यूनिवर्सिटी एंड शेयर कर दिया उनसे, बहुत अच्छा किया आपने। कौन है हमारे साथ सर? अस्सलाम वालेकुम।
6: साजिद जा रहा हूं, आरजे डॉक्टर से हाथ ही लगाने आया हूं।
0: कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? खैरियत से हैं, मिजाज अच्छे हैं,
6: ठीक ठाक। आरजे डॉक्टर से मैं आप राज की बात बताऊं ना, आधा घंटा हो गया कॉल मिला रहा था, मुझे नींद आ गई, डाल डाल करते करते,
0: ठीक
6: है ना, ये भी एक राज की बात है, ठीक है ना।
0: अच्छा,
6: और आरजे डॉक्टर से जो राज की बातें होती है ना, बता देनी चाहिए, कुछ बता देनी चाहिए, और कुछ बातें ऐसी होती हैं कुछ जो बताने के काबिल नहीं होती, उनको दिल में रखा जाए तो वो बेहतर।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो जिनका ताल्लुक आपकी जात से, खलवत से,
6: जहाँ पे तलकात खराब होते हैं ना, वो राज कभी नहीं किसी को बताने चाहिए। कुछ ऐसे राज होते हैं कि जैसे उन नौजवान नस्ल इनको कोई हरासा करता है, कोई धमकी लगाता है, वो दिल में वो राज रख लेंगे, उनके लिए बहुत वो मतलब नुकसान देंगे, उनके लिए जिंदगी को तबाह बर्बाद करते हैं, उनको बता देना चाहिए घर वालों को।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात की सर, थैंक यू वेरी मच,
6: थैंक यू वेरी मच
0: सर डार साहब।
6: और मेरा दिल था आज आपको हाजिर लगवाने का, ठीक है।
0: अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बात ये है कि राज जो होता है ना जी, हर वो चीज़ ऐसे बड़ी अच्छी बात करके। मैंने सवाल ये किया था कि क्या राज कमज़ोर करता है? आपका राज आया हुआ आपकी ज़ात ने शर्मिंदगी का सामना किया
1: जी।
0: लोग आपके बारे में बदगुमानी का शिकार हुए, आपके बारे में कुछ अजीब सा सोचा। आप उस सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद ना एक और मुख्तलिफ इंसान की शक्ल में जाहिर होते हैं, जो एक नया सबक सीख लेता है। टूटने से इंसान बनता है, कमजोर नहीं होता जी। सवाल जो था उसका जवाब ये है कि राज आपको कमजोर नहीं करते, उनका निकल जाना आपको बाहर हाल मजबूत, आपको नए सबक दे के जाता। मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि एक सवाल जो होता है ना उसका एक जवाब होता और राज क्या होता है, और उसके बाद अगला कीवर्ड था कमजोरी। क्या वाकई वीक करता है? नहीं करता। आपको बनाने वाला मालिक आपका खालिक वो है जिसने आपको पैदा किया, ना तो कोई आपका राज है, ना कुछ छीन सकता है आपसे कुछ भी। सो जो भी आपको मिलता मयसर आता है वो ही देता है। तो जहां पे आप बार बार टूटते हैं, टूटने के बाद आप बनते हैं, और खुद को बनाने का अमल जो होता है मजबूती का अमल होता है। सो राज का निकल जाना कमजोर नहीं करता, मजबूत बनाता आप। बिनते हव्वा, ओके मैसेज मिल गया। गुले लाला, हेलो सर, हाउ आर यू? अपने उसको मैं ठीक करता हूँ, अपने पुत्र का नंबर दो। एहसन, एहसन ने वो जो साहब आए थे उनके बारे में कहते हैं, सॉरी बड़ी मैंने मैसेजेस आप खोले हैं, वो कहते हैं पुत्र का नंबर दो ना, उन्होंने मैं ठीक करना। सही है भाई, यही शहजादा आदमी है। अच्छा, रफीक अहमद, अस्सलाम वालेकुम आज डॉक्स, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आप खैरियत से हैं? ठीक है, मिजाज अच्छे हैं। स्ट्रीम बंद हो गई मेरा ख्याल है, चेक करें। मेरा ख्याल है रहमान अनवर आज नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम जी।
7: वालेकुम अस्सलाम।
0: बंद है, दिखाइए, कतान बंद है, कतई तौर पे। हेलो,
7: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी।
7: हमना फ्रॉम लाहौर।
0: हमना, क्या हाल है?
7: ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं?
0: हमना बैठे सोच रहे थे। हमना आप ज्वाइन कर लो एफएम।
7: हाँ, मेरे पेरेंट्स को ये भी नहीं पता होगा कि मैं भी एफएम पे कॉल कर रही
0: हूँ। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ऑन एयर मैं आपको कह रहा हूँ, आप ज्वाइन कर लो। You got such a different angle, such a good point of view. बहुत अच्छे अंदाज में आपका तलफ़ुज़, आपका अंदाज, आपकी अदायगी और देखने चीज़ों के बारे में मुख्तलिफ अंदाज में बात करती हो।
7: I'll think about it after some years.
0: Oh my God, this attitude, I was not expecting. ठीक है, अच्छा।
7: हाँ तो मैं मतलब
0: हाँ नहीं ठीक है, बनता है इतना नखरा तो फिर बनता है।
7: It's not about nakhra, but simple thing that of course, like it's...
0: Oh, that after all, Gen Z, you know.
7: It's not about being Gen Z, it's about this simple thing that maybe my parents won't allow me right now. Even after, maybe after some years, even maybe, tab bhi wo kahein ke ye nahi karna. I don't know, I feel like...
0: Matlab, so, you're telling me that after bachelor... कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? चार साल।
7: The point is this कि मेरी मैं उस वक्त शायद सोचूं जब मेरे पास कोई और प्लान हो अर्निंग का, और मैं कहूं कि दिस इज गोइंग टू बी समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू डू साइडवेज, और मैं आई वांट बी डूइंग इट फॉर माय अर्निंग, तो खैर देखिए व्हाटएवर।
0: It is not about earning, it is about sharing a point of view and teaching something good.
7: When I will have an, I don't want to do it for this thing, so when I do it, like when I will have a side thing that I can earn, then I will say, okay, fine, I'll go for radio as well.
0: Okay, bilkul theek ho gaya. Main theek hai, maan gaya ji, taadi gal, tusi nahi aana theek hai.
7: Anyways, coming back to your topic.
0: Okay.
7: Where, aap log baat kar rahe hain raaz ki. एंड देयर लाइक बहुत से लोगों ने बात कर दी ऑलरेडी कि कुछ होते हैं छुपाने वाले और कुछ होते हैं जो आप बता देते हैं
0: जी.
7: ये फिर इसमें एम्बैरेसमेंट वाला भी जो केस है वो इसमें यही बात है कि मैं कुछ उससे पहले लाइक मे बी अ मंथ अगो माय फादर वाज डिस्कसिंग दिस थिंग कि ये बात मैं फैमिली में बताऊं ना बताऊं. एंड आई टोल्ड हिम दिस थिंग की बात लाइक आई पर्सनली हैव अ वेरी ह्यूज फैमिली. आई टोल्ड हिम की बात तो कहीं ना कहीं से निकल जाएगी बाबा, तो अगर आप नहीं बताएंगे आपको टेंशन ही रहेगी कि उस बंदे तक पहुंचती है तो फिर क्या होगा, फिर क्या जवाब देना है, क्या देना है. फिर बेटर टू गेट रिड ऑफ इट. सेम थिंग माई फ्रेंड टेल मी अ लॉट के यू टेल योर मदर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम इस एज की जनरेशन हम लोग नहीं बताते. तो तुम बताती हो एंड यू गेट योर सेल्फ मिसअंडरस्टूड एंड दैट्स नॉट गुड फॉर यू. बट आई फील लाइक एक चीज ये होती है कि आपको आपके तो पेरेंट्स को ये पता है आप जो बंगी हरकत कर रहे हैं आप आके बता रहे हैं तो इससे काफी चीज नहीं रहते. अगर जिससे आपको टेंशन नहीं रहती कि वन और फिर बहुत ऐसी चीजें हैं जो एक बार हो जाती है ना तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता. और इसका जब नहीं होती तो आपको लगता है बड़े मसले हाँ अगर हो गया तो पता नहीं क्या होगा,
0: क्या ही हो जाएगा.
7: एंड देन देयर इज वन मोर दिस थिंग कि मैं मेरे कुछ उससे पहले हैरी पॉटर सीरीज पढ़ी. मुझे नहीं पता कि लोगों ने स्टोरी को किस एंगल से लिया होगा बट देयर आर सो मेनी थिंग्स मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है जो कि फिक्शनल नॉवेल्स में नहीं होता. तो व्हाट आई एम गोइंग टू पॉइंट आउट ओवर हियर इज कि इस करेक्टर को दिखाया है कि वो दूसरे करेक्टर से ये कंप्लेन कर रहा है कि यू वॉन्ट मी टू ट्रस्ट यू एंड यू लाइक आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते बट यू वॉन्ट फेवर्स फ्रॉम मी. So that the other person tells the person A, say, I don't want to put every secret of mine in a single basket.
0: बिल्कुल ठीक है.
7: एक बात है कि आपने
0: आपको बहुत सारी बास्केट चाहिए, कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर.
7: हाँ मतलब आपको लाइक अगर आपके घर की
0: आलू इधर प्याज इधर लहसुन इधर टमाटर इधर.
7: अगर आपकी कोई घर की बात है तो सही सी बात है. नॉर्मली अगर कोई घर का इशू होता है घर के लोगों को तो पता ही है क्या चीज से गुजर रहे हैं तो आप बाहर जाके बताते हैं. अच्छा ये बात है आप बाहर बताते हैं. अगर बाहर कोई इशू होता है तो आप घर आके बताते हैं. तो यू नो एक तो ये कि हर चीज़ एक तो जो है वो डिफर करता है. और फिर हाँ कुछ चीज़ें जाहिर सी बात है आपका डिस्कस करना गैर इखलाकी है वो आप ना करें. एंड देन ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अपने तक ही महदूद रखें. आपने गलतियाँ ऐसी होती हैं एक तो जो है वो डिफर करता है. और फिर हाँ कुछ चीज़ें जाहिर सी बात है आपका डिस्कस करना गैर इखलाकी है वो आप ना करें. एंड देन ये कि कुछ चीज़ें

0: रात के अंधेरे में तुम कोई काम करो और अल्लाह उसको छुपाए, और फिर सुबह हो और फिर तुम किसी को बताओ कि ये फला शख्स मैंने रात को ये फला काम किया, इसके सख्त जो है वो वईद सुनाएगी। तो ये चीज़ें ये है कि आपको जो है, मैं कभी कभी गौर करती हूँ कि ये बात क्यों है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती की, आपने किसी को बताया, अगला बंदा भी मोटिवेट होता है कि अच्छा ये काम हमारी सोसाइटी में हो सकता है, दैट्स नॉट अ बिग डील, और लोग करते हैं, फॉलो करते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आपसे कोई गलती हुई है, आप टाइम देख रहे, आपको रियलाइज हो गया, आप मत करें डिस्कस, आप छोड़े, आप ठीक है, आपको पता है कि आपकी गलत काम हुआ है, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि अच्छा हमने ये किया या हमारे से ये हो गया। एंड देन कि थोड़ी देर पहले आप लोग बात कर रहे थे कि हम किसी को बताएं कि अच्छा मैं तुम्हारे से झूठ बोल रहा हूँ या कुछ इस तरह, उसमें ये बात है कि कुछ उससे पहले की बात है, आई वॉज वॉकिंग विद माई फ्रेंड इन माई कॉलेज एंड सडनली कोई ख्याल आया तो आई लाफ्ड एंड शी आस्क्ड मी कि क्यों हंसी तुम, तो मैंने कहा कि मैंने कहा छोड़ो मैं नहीं बता सकती, उसने कहा नहीं बताओ, यू वर वॉकिंग विद मी एंड यू लाफ्ड सडनली, तो मैंने कहा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि ये थॉट क्या था, इट वॉज एम्बैरेसिंग, मैं बता नहीं सकती, एंड द पॉइंट इज दिस कि अगर मैं फिर मुझे सोचने दो कि मैंने क्या तुम्हें कहना है, तो शी गेव मी अ लुक एंड शी जस्ट लेट इट गो। तो आई थिंक अगर सैडनेस लेवल है तो यू कैन जस्ट टेल द अदर पर्सन के वी डोंट हैव एन आंसर फॉर दिस, आई थिंक इफ द अदर पर्सन इज कंसिडरेट इनफ दे विल लेट यू गो। और इसके अलावा एक और बात है, आई एम नॉट श्योर, कल आयजे रहमान अनवर के साथ आई थिंक वन ऑफ दोज इंटर्नीज इज इवन हियर राइट नाउ, इज ही
1: जो कल दिन आज
0: Is he the one who is talking about love and attraction and all that stuff? Attachment, actually.
1: जी जी.
0: वो ये बात है कि I don't know, हर बंदे के अपने अपने life experiences होते हैं.
1: True.
0: At the point of saying that आपने कल बात की कि attachment एक ऐसी चीज़ है जो आपका मतलब एक आपने जो define किया कि ये है कि आपको कोई प्यारा लगा, थोड़े इसके बाद वो attachment खत्म होगी. Is that what you said?
1: Yes.
0: तो उसमें बात यह कि ये अट्रैक्शन है, ये अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट को अगर हम मेरे ख्याल से तर्जुमा करें तो हम कहेंगे आदत है। अगर आदत है तो लोग आदत के बारे में तो कहते हैं कि आदत सर के साथ जाती है, और आदत एक ऐसी चीज़ है वो आपको कोई पसंद है नहीं है, वक्त गुजरा आदत हो जाती है।
1: अट्रैक्शन
0: इज समथिंग जो कि
2: यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा, पहले बात पूरी करो। उस पे मैं करना चाह रहा था, जैसे कंप्लीट थ्योरी, अटैचमेंट थ्योरी है, बहुत बड़ी थ्योरी है अट्रैक्शन और अटैचमेंट, मतलब आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। अटैचमेंट होती ही तब है जब आप इमोशनली कनेक्शन डेवलप करें। इमोशनल कनेक्शन जब डेवलप हो जाता है, बंदा है नहीं है, आप एक्सप्रेसिव हैं या नहीं है, इमोशनल जो होते हैं ना इमोशंस आपके, वो बाद में इन शेप ऑफ मेमोरी ऑलवेज हिटिंग यू।
0: तो इमोशंस नेगेटिव भी तो हो सकते हैं,
2: वो नेगेटिव हो या ना हो, बट यू कैन नॉट से कि आप लिटरली बिल्कुल ऑल टुगेदर आप भूल गए। अट्रैक्शन आपको भूल जाती है, अट्रैक्शन कशिश है ना,
1: बिल्कुल
2: कशिश आपकी बदल जाएगी,
0: जो खत्म हो जाएगी। अट्रैक्शन वो चीज जिसको आप कहेंगे वो वक्त के साथ बदल जाएगी।
2: हां बदल जाएगी।
0: जो आदत है, और आदत
2: आदत नहीं है,
0: आदत मतलब अटैचमेंट यही है ना कि आप किसी के साथ टाइम स्पेंड किया एंड यू गॉट अटैच्ड, आदत भी वही है कि आपने किसी के साथ वक्त गुजारा और आपको उसकी आदत होगी।
1: इमोशनली डिपेंडेंसी वाली बात है ये कि अटैचमेंट, मुझे लगता है जो इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं आप, ये आपकी अटैचमेंट होती है।
0: कैन यू रिपीट व्हाट यू सेड?
1: मैंने बोला कि जो आप जब मतलब किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाए तो ये आपकी अटैचमेंट होती है उससे।
0: तो इमोशंस वो ये बात है कि या तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एट टाइम ये चीज होती है कि आपके घर में कुछ
2: थोड़ा सा

0: फिर थोड़ा सा और क्लैरिटी करते हैं ना, मतलब आई टॉक लॉट अबाउट फीलिंग्स. जब हम आदत की बात करते हैं ना, हैबिट, हैबिट इज समथिंग दैट यू आर रिपीटिंग ऑन डेली बेसिस. एक खास पैटर्न सेट हो जाए ना, उसे कहते हैं आदत. वो पैटर्न किसी सिचुएशन में हो सकता है, वो पैटर्न आपके डेली रूटीन के किसी खास पहर में हो सकता है, किसी खास शख्स के साथ हो सकता है. आदत, हैबिट इंटायरली डिफरेंट, अट्रैक्शन डिफरेंट, अटैचमेंट डिफरेंट. सो दीज थिंग्स आर डिफरेंट. मैं, हाँ, मैंने कहा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दूँ, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू. आदत, वो हम ये शायराना बात है कि मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई, और उसके बाद पता फिर क्या हुआ, हम लोगों ने इसे अपनी ज़बाने ज़दे आम इसको हिस्सा बना लिया. अच्छा, मुझे अटैचमेंट हो गई है, इट मींस मुझे उसकी आदत हो गई है. नहीं नहीं, इमोशनल, आप इमोशनल कनेक्टिविटी के लिए हमने एक लफ्ज़ आदत चुन लिया, जबकि आदत की एक अलग से तारीफ है, एक पूरी उसकी थ्योरी, उसकी वजाहत ही अलग से. आदत रिपीटिंग हैबिट, आदत रिपीटिंग एक्शन, बार बार बार बार. जैसे मुझे एक बड़ी गंदी सी आदत है, मैं बताऊंगा नहीं. मैं बताए, मतलब आई डू दिस, आई एम नॉट इमोशनली अटैच.
1: ओ फिर बता दीजिएगा.
0: मैंने दो दफा छोड़े भी हैं, मतलब आई डू स्मोक, मैं छोड़ दी फॉर ईयर. आदत,
1: ये आपको लगता है बुरी आदत है?
0: आदत है,
1: आदत है, बुरी आदत है या बस आदत है?
0: हाँ, ये बुरी आदत है.
1: अच्छा, ये अब वो क्लियर
0: हुआ. वो बात कह रही थी ना, अटैचमेंट इमोशनल बैड है या गुड है, वो एक अलग डेफिनेशन है. इमोशनल अटैचमेंट समटाइम इट हिट्स यू रियली बैड, इट इज रियली बैड.
1: सर मुझे लगता है अटैचमेंट बेसिकली, अटैचमेंट में ना बंदे को एक अलग सा एक फेयर होता है कि कोई आपके पास होता है, लेकिन आपको एक डर होता है भाई ये कहीं मुझसे दूर ना चला जाए. तो ये मुझे लगता है कि अटैचमेंट होती है, और इसमें वो सिर्फ आप डिपेंडेंट हो जाते हो सामने वाले पे कि यार वो मुझसे बात करेगा नहीं करेगा, मैं उसे कितना पसंद करता हूँ, ये सारा कुछ मुझे
2: प्रॉब्लम पता है क्या है? ना करें.
0: आपकी एज में जब मैं भी था, मेरे साथ भी यही था. अमना भी है, आप लोग हैं. अमना तो खैर बहुत अच्छा सोचती है और बहुत डिफरेंट एंगल में जाके सोचती है, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कभी कभी उम्र के इस हिस्से में. मुझे तो अपना गेमिंग करने से या क्रिकेट शिकट खेलने से फुर्सत नहीं थी, तो ये पता नहीं किस दुनिया से आई है, एलियन ही है, पता नहीं किस तरह की बातें सोचती रहती. मैं इस तरह नहीं था सोचता, बट इस एज में थोड़ा सा कुछ चीज़ों की वजाहत में फ़र्क होता है. बाय द टाइम यू लर्न इट, बाय द टाइम आई लर्न के नहीं, अच्छा ये आदत और चीज है, मेरी किसी की तरफ कशिश का अट्रैक्शन और चीज है, किसी के साथ जुड़ जाना और चीज है, किसी के साथ. जी,
3: कॉन्सेप्ट ऑफ ये जो आदत की बात है ना, कुछ इससे पहले की बात है, मैं तर्जमे तो कुरान टीचर सी भी एक्सप्लेनिंग अस के हराम रिश्तों में मोहब्बत नहीं होती एंड स्टफ. सो आई टोल्ड हर कि आजकल हराम रिश्तों में भी नहीं होती है, एंड शी गेव मी एग्जांपल के Do you feel like अगर आपकी मदर है and your father goes somewhere and visits, you know, मतलब कुछ दिन घर पे नहीं है तो isn't she going to miss him and stuff? So I told her कि ये तो फिर आदत हुई या जरूरत हुई, ये काम है या फिर जो है ना, because you know of course दो लोग साथ मिलके घर चला रहे होते हैं, then फिर या तो ये
0: अच्छा ये एक फिर complex ही theory है. इस पे अगर हम चलना शुरू करेंगे ना, चले मैं अगर इस पे थोड़ा सा छेड़ता हूँ. एक होता है हमारा कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस. There is a connection, a deep connection.
2: बिल्कुल ऐसी है.
0: और consciousness में जो आपकी memory, front memory, चले हम उसको हम define कर रहे होते हैं most of the time, the front part of your memory. Thing stays there, और जब उसकी space बनती है आप उसे miss करते हैं और उसके बाद फिर उसे replace कर लेते हैं. फिर एक होता है आपके बड़ी deep अंदर memory में क्रॉनिक किस्म के अटैचमेंट जो हुई होती है, सबकॉन्शियस के अंदर फीड हो चुका है ना.
1: बिल्कुल,
0: वो जब इतना शदीद फीड हो चुका होता है ना, उसकी एग्जिस्टेंस इमोशनली इतनी कनेक्शन आपका डेवलप हुआ होता है कि आपको उसकी आदत के साथ उसके होने का जरूरी भी आपके अंदर वो हो जाता है कि ये जरूरी है मेरी जिंदगी के लिए. लेकिन वो होता सिर्फ और सिर्फ जज्बाती रिश्ता है,
1: एहसास,
0: जज्बाती रिश्ता है, जज्बाती रिश्ता. वरना बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं कुछ जगह पे, मसलन मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, मुझे आदत है मैं जाऊंगा तो मेरा वो जो ऑफिस बॉय है वो फलां जगह बैठा होगा, अगर वहां पे नहीं बैठा होता ना तो मैं देखता हूँ कितने बैठा हुआ है, आज इतने क्यों बैठा है, वो नौकरी छोड़ जाएगा, मेरी निगाह एक दो दिन नोटिस करेगी, उसके बाद बदर नहीं करेगी, क्योंकि मेरी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उसके साथ।
1: बिल्कुल,
3: तो ये बात है कि आपकी जब अब जाहिर अगर हम लाइक हस्बैंड वाइफ की रिलेशन की बात करें, साथ में रहते रहते आदत भी हुई और फिर उसमें जाहिर सी बात है
0: आदत हो ही जाती, बंदे बेचारे खामोश तबाह होते हैं, उन्हें बड़ी आदत हो जाती है चाड़े खाने की, अपने बंदी से जलील
1: ना बोलने की,
0: ना बोलने की,
1: हाँ में हाँ मिलाने की,
0: हाँ में हाँ मिलाने की। आप सही कह रही हैं,
1: बिल्कुल।
3: Well, I don't know where such people exist, लेकिन
0: है। Oh my God, come on, we do exist. We're here, you're talking to us.
3: I mean, आप like you know what, like you exist like. आप उस वक्त के लिए जब विल यू योर सेल्फ आर मैरिड, ओके, मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है, होता है, ऑफ कोर्स होता है, इट्स लाइक कि हम
0: भाई ना हो तो खवातीन करवा लेती हैं, सिंपल रूल है।
3: वेल, इसमें बताए बात क्या है इस टॉपिक पे, यू हैव मेड अप योर माइंड और मैं कोई बात करूँ दैट वुडंट मेक अ डिफरेंस।
0: कौन सी वाली बात पे, किस पे, किस पे
3: बात की, यू व्हाटएवर यू गाइस आर टॉकिंग अबाउट, इतना बेचारा कोई नहीं होता
0: मर्दों में, यार बेचारा बनने का शौक तो होता है ना यार, हो ना हो शौक है कि नहीं, हमारे शौक की दाद देनी चाहिए आपको।
1: सही बात है,
0: बहरहाल बड़ा अच्छा आपने ऐड किया और राज के बारे में भी, और मैंने जो सवाल किया था उसे मैंने कंक्लूड भी किया, और इसमें आप सारों की इनपुट आती रही और आपने भी बहुत अच्छा कैटेगराइज कर दिया ना कि अगर आपकी जो ख़ानदान से जुड़ी बातें हैं
2: जी
0: वो उसी बकेट में रहनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: एग्जैक्टली,
0: बहुत अच्छा डिफाइन किया। दोस्तों का है वो उस बकेट में रहना चाहिए, जो बाहर का है वो उसी बकेट में रहना
2: चाहिए,
0: लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आप फैमिली में डिस्कस कर सकते हैं, फैमिली की हर जगह नहीं कर सकते,
2: नहीं कर सकते,
0: वो बकेट्स हैं। अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात
3: करनी चाहिए कि कम ही आपके पास कुछ ऐसी चीजें हों जो आप ना बता सकते हो, ऐसी हरकतें ना करें कि आपको किसी को बताने में प्रॉब्लम हो।
0: बस जो कोई इसका फ्रेंड इसे सुन रहा है ना यार, इसे कोई बात ना बताना,
3: नहीं सुन रहा, इन लाइक आई नो कोई ऐसी बात है भी नहीं, लाइक यू नो
0: I don't know. I have no idea.
3: Well, that doesn't make a difference, you know.
0: Yeah, right. Now I fear you, you know. Chalo. Now I fear you.
3: Ready?
0: Chalo, apna bahut sara khayal rakho. और थैंक यू वेरी मच, और बहुत अच्छा लगा बात करके हमना, ऑलवेज इट्स बिन अ प्लेयर, जब से आ रही हो तब से बहुत अच्छे एंगल से बात करती है और बहुत अच्छा डिफाइन किया बकेट होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच हमना, आप तो बहुत सारा ख्याल रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़,
1: अल्लाह हाफिज़।
0: मेरा ख्याल है आज रहमान अनवर नहीं आ रहे और यहीं पे हम इजाजत लेंगे, 12:28 हो चुके हैं, आई थिंक आई मस्ट गो नाउ। आप जाने से पहले कुछ फरमाना चाहेंगे आप साहिबान?
2: जी जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैडम हमना ने बड़ी अच्छी बात की कि बकेट्स होनी चाहिए, और ऐसी वही बात है कि जो आप समझते हैं कि जो बात मेरी ज़ात की हद तक महदूद रहनी चाहिए वो किसी से शेयर ना करें, और अगर कोई ऐसी बात, कोई ज़रूरी बात है जो कि आपने शेयर भी करनी है तो वो सामने वाले को पहले देखें कि वो कैसा है, उसके साथ शेयर करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मेरा ये पॉइंट होगा।
0: जी आप
1: सर, मुझे तो यही लगता है कि बस कर दो, देखी जाएगी फिर क्या होता है, क्या ही हो जाएगा,
0: अभी हाल ठीक है,
1: कोई क्या ही कर लेगा सर, क्या दो दिन कोई बदनाम करेगा, बदनाम होंगे तो क्या नाम
0: क्या ही कर लेगा,
1: तो बस ठीक है, कर देनी चाहिए मुझे लगता है, आप
0: देखी जाएगी फिर है।
1: एग्जैक्टली,
0: जाओ जो करना है तुमने कर दो,
1: खुल जाओ,
0: ठीक है। एक आखिरी कॉल देखते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
4: वालेकुम सलाम,
0: ये हमीद गुल साहब सर कैसे हैं?
4: सर आप सुनाए, ठीक हैं, खैरियत
0: है? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह का शुक्र है
4: आपके साथ दोनों साहिबान को भी।
2: वालेकुम अस्सलाम सर।
4: वो रात से बड़ी खूबसूरत बातें हो रही थी, वो जज्बात पे और उसकी बात काफी खूबसूरत अंदाज से होगी बात।
0: सर सर आप बड़े अरसे के बाद आ जाए।
4: नहीं मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, कॉल नहीं मिलती है, क्या किया जाए?
0: माफी दे दें।
4: वो मैं सोचता था मेरे पास कभी अलादीन का एक चिराग था।
0: अच्छा।
4: वो गुम गया।
1: गुम गया।
0: सही है सर।
4: वो कहीं खो गया है।
0: अच्छा,
4: क्या किया जाए? हाँ
0: नहीं सर, नहीं कुछ कर लेते हैं इसका इलाज।
4: वो रास्ते मेरा, मैंने जब शेर कहना शुरू किए
2: जी जी,
4: तो मेरा सबसे जो पहला शेर था वो आपकी नजर का रहा है।
0: सर बिस्मिल्लाह करें।
4: वो इत्तफाक से राज पे ही है। देखें कि इस राज को समझाना कोई आज तलक भी, इस राज को
2: समझाना कोई आज तलक भी,
4: जी जी, इस राज को समझाना कोई आज तलक भी, एक आंख की पुतली में छुपा सारा जहां।
0: सारा जहां, क्या
2: क्या बात है हमीद साहब।
4: आ, आ, आपकी आंख की पुतली में आपके राज हैं, आरजे डॉग साहब की आंख में उनके राज हैं।
0: बिल्कुल। मैं इसीलिए ऐनक पहन के रखता हूँ।
4: मैंने भी पहनी हुई है पढ़ने के लिए ना। मुझसे किसी ने कहा कि आपकी नजर कमजोर है, मैंने कहा नहीं, दूर की नहीं है, नजदीक की कमजोर है, दूर की तो बड़ी ठीक है। मैंने
0: सही फिर बाहर
4: बड़ा, मैं ये इन आपके जो नए जितने आ रहे हैं, जब ये आएंगे माइक पे और अपने अपनी सीट संभालेंगे, इस वक्त उस वक्त इनसे निश्चित लगेगी कोई ना कोई, इंशाल्लाह कुछ इनसे भी हमें सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह।
0: सर बड़ी मेहरबानी है सर, मुझे यकीन जानिए बहुत अच्छा लग रहा है आज आपकी कॉल आई है आपसे बात करके।
4: उमेर नजमी ने कहा था कि मुझे ये पहले लगता था कि जाती मसला है।
0: सही बात है।
4: फिर मैं समझा कि मोहब्बत कायनाती मसला,
0: कायनाती मसला है। बिल्कुल।
4: वो इमोशन जो है वो वहाँ पे जाके कहीं आपके जुड़ते हैं। ये कायनाती, ये बड़ा कायनाती मसला है,
0: कायनाती मसला।
4: ये वाह, हकीकत में ये है ही कायनाती मसला।
0: सही कह।
4: वो जो अट्रैक्शन है ना, वो उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कभी, वो हो जाती है।
0: सही कह रहे हैं सर।
4: जैसे आपसे देखे ना, रेडियो से एक अटैचमेंट है, है?
0: जी, जी, जी, जी,
4: अब आप उसको कुछ भी कह लें, लेकिन है उसमें, है कि हमारे जज्बात हैं उसमें।
0: मैं ना अभी तक जो सुनते हैं मुझे, उनमें से चंद एक लोगों से मिलने का मुझे इत्तफाक हुआ।
2: जी जी।
0: पहली दफा मुझे इत्तफाक हुआ, बाबर अयूब मेरे पास खुद तशरीफ लाए, मुलाकात हुई, और उसके बाद फिर जिनसे मैं मिलने के लिए गया वो हमीद गुल साहब हैं। मैं इस्लामाबाद गया था और फिर इन्होंने मुझे दावत दी और मैंने इनकी चाय पी हुई है। लोग कहते हैं मैंने नमक खाया, मैं कहता हूँ मैंने चाय पी हुई
2: है। सर सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, हमीद साहब का अंदाज गुफ्तगू बहुत अच्छा है।
4: वो आपने कॉफी पी थी सर?
0: अच्छा।
1: आप बोल गए लेकिन उन्हें याद है।
0: सर बड़ी मेहरबानी आपने।
4: देखे ना अभी ये है आदत।
0: बिल्कुल मजा फरमाया आप,
4: ठीक है ना, जो बार बार रिपीट होती है
0: सर बात।
4: अब इनको इनको कॉफी पीने की आदत है, हमें चाहे इंशाल्लाह हम जब कभी लाहौर आए, मैं वैसे आया था लाहौर।
0: अच्छा।
4: वो नहीं आप प्रोग्राम कर रहे थे
0: ना, जाना था सर।
4: प्रोग्राम नहीं, नहीं वसीम साहब का प्रोग्राम था।
0: अच्छा,
4: पर मैं वापस जा रहा था लाहौर से। रात में मैं असर में कहीं स्टे होता नहीं है अब।
0: अच्छा, अच्छा।
4: कुछ काम हो बस उससे फिर हमें वापस जाना पड़ जाता है। आपको पता है हमारा काम प्रिंटिंग से है ना, वो उस हवाले से हमें आना पड़ता है कभी कभी लाहौर।
0: बिल्कुल सही।
4: वो जैसे आए बस समझे कि वो वैसे ही जाना भी पड़ जाता है हमें।
0: बिल्कुल सही।
4: तो बहरहाल मैंने ये जो जितने भी अभी ये जो पौधे आप लगा रहे हैं,
0: बिल्कुल
4: उम्मीद है कि ये तनावर दरख्त बनेंगे
2: इंशाल्लाह,
4: और इनसे हमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा।
0: इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।
4: जिस दिन इन्होंने ये कह समझ लिया कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, तो उस दिन ये समझ लें कि जीरो हो जाएंगे,
1: जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल
0: सही है,
1: बड़ी बात है।
0: आप जैसे हैं सिखाने वाले यहाँ पे।
4: नहीं नहीं, हमने हम अभी तक खुद सीख रहे हैं सर जी।
0: नहीं, आप सिखाने वालों में से।
4: मैं आपको यकीन करें, मैं अभी भी कहता हूँ शायद उम्र के इसमें आके के वो एक शेर उम्र से मुझे याद आया था, आपको बड़ा पसंद है
0: जी,
4: वो आपको सुना देते हैं चले
0: जी जी।
4: वो बल्कि ये जितने नए आरजे हैं यंगर, इनके लिए के उम्र के फासले से डरता हूँ।
1: वाह,
4: याद है आपको?
0: दीदी दीदी दीदी बिल्कुल याद है।
4: उम्र के फासले से डरता हूँ, दिल लगी वाकया न बन जाए।
0: क्या बात, कमाल, खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा।
4: थैंक यू सर, थैंक यू,
0: थैंक यू,
2: अल्लाह हाफिज़।

नादिया अहमद हमारा प्रोग्राम सुन रही, कह रही है हेलो हेलो नादिया, क्या हाल है भाई, लिसनिंग यू, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कथीरे जैनब हमारे साथ है, मोहम्मद इकराम हमारे साथ मौजूद है। सर सैटरडे को बड़ा मैच हो, हाँ यार हाँ, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस रिमेंबर। वेल जनाब, आप लोगों को पता चल चुका होगा, नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फाइनल गोल्ड मेडल का मैच जो है वो पड़ चुका है, और एशियन गेम्स इस वक्त जारी हैं जापान के अंदर, जहां पर पाकिस्तान की टीम भी फाइनल में पहुंच चुकी है और हिंदुस्तान की टीम भी, क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं, फाइनल में पहुंच चुकी है। और परसों ये मैच खेला जाएगा, गालिबन 3 तारीख को, यस 3 तारीख की सुबह 10 बजे ये मैच होना है, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ये मैच होगा, और अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो गोल्ड मेडल लेकर आएगा एशियन गेम्स में, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो आप यूँ समझिए कि जैसे चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल होता है या T20 वर्ल्ड कप का फाइनल होता है, आप कुछ यूँ समझ लें इसको। सो आप ज़रूर दुआएं कीजिए, और परसों हम जो है पाकिस्तान वर्सेज इंडिया क्रिकेट मैच फिनाले देखने वाले हैं।

आगे जी आगे आगे जी आगे आगे आगे आगे हाय हाय हाय क्या यार ये पार्ट है सॉन्ग के सुनो यार जरा सुनो यार

यार, बाय द वे वो खातून भी इसी से मिली जुली बात कर रही थी। मैं ऑन एयर भी आपके साथ जिक्र कर देता हूँ, बिकॉज यू ऑल नो कि जो अल्लाह के मामलात होते हैं, मतलब जो मैं ये बात ज़्यादा इन चीज़ों पे बात इसलिए नहीं करता है कि रियाकारी ना हो या ब्रैगिंग ना हो, जिस काबिल मैं होता हूँ या जो मेरी बिसात होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर किसी के काम आया जा सके तो आया जाए। मैं प्रिसाइसली आजकल जिन केसेस पे काम करता हूँ वो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड हैं, तो अगर आप में से कोई सुन रहा है तो अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो प्लीज़ फिर आप में से रब्ता कर सकते हैं। वो किसी भी हवाले से हो सकता है। अगर हेल्थ रिलेटेड है तो देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टा, तो फिर हम उसको आगे देख सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई इशू है तो मैं फ़िलहाल कोई इस तरह की केसेस इसलिए डील नहीं कर रहा बिकॉज़ अभी जो मेरे पास जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं वो मेडिकल फील्ड के लोग हैं, और वो माशाल्लाह काफ़ी दे आर हेल्पिंग द पीपल आउट, और जहाँ पर फिर फाइनेंशियल टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है वहाँ पे मैं हाज़िर हो जाता हूँ। लेकिन फ़िलहाल ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं सिर्फ ऐसे केसेस जो कि सेहत से रिलेटेड हैं, अगर कोई ऐसे हैं तो फिर यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टा। उसके अलावा अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि मैं खुद, आपको पता है कि आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा, पिछले तकरीबन ये 30-32 दिन से मैं कंटिन्यूसली जो है वो गले का काम है मेरा, और मैं थक जाता हूँ। मतलब सपने में इतना थक जाता हूँ कि मैं सिर्फ घर जाता हूँ और आँख बंद करता हूँ तो जब सुबह उठता हूँ तो अगले इवेंट का टाइम हुआ होता है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा, कोई आप लोगों पर एहसान नहीं है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, खुद पैसे मिलते हैं मुझे, लेकिन ये चीज़ जो होती है ना ये ज़रा टाइम मांगती है। आपका डाटा लेना, डाटा किसी को देना, किसी से बात करना, फिर उसका फीडबैक लेना, फिर जिसका काम हो जाता है वो दुआ देता है या नहीं देता है, लेकिन जिसका नहीं होता तो फिर वो कहता है भाई ये काम यू नो सो कोई इसमें फ़ायदा कोई नहीं है। वैसे तो अल्लाह की ज़ात जानती है, फ़ायदा और नुकसान तो अल्लाह ने देना है और आप करते भी अल्लाह की ज़ात के लिए, लेकिन आई होप कि आप समझ रहे होंगे, बेरब्त बातें हैं लेकिन समझ रहे होंगे। स्टैंजा ही निकल गया हमारा सारा।

0: भाई वाह, क्या कहना है। पहले भी मैं इंस्टा अभी मैसेजेस आप लोगों के पढ़ रहा था। समीना रेहान हमारे साथ मौजूद है। शी इज सेइंग, आज आपको लाइव देखा, आप बहुत ग्रेसफुल लग रहे थे। मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो खामोश बैठा रहा। मैं शायद इसीलिए ग्रेसफुल लग रहा था। ऐसा है क्या? चले, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फेसबुक से कमेंट शामिल करते हैं जी। खुशबख्त इजाज़ अहमद खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हिरा फातिमा हमारे साथ हैं। सायरा जंजुआ हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं। इनके साथ साथ बिनते हवा हमारे साथ हैं। मलिक मोहसिन हमारे साथ हैं। यार मलिक मोहसिन, तू लड़कियों की मोहब्बत में कितना डूब चुका है कि मैंने तुझे मना किया था कि रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करनी, तो फिर रिकॉर्डिंग शेयर करता है। ये मेरी जान, इस चीज से आगे निकल। अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना, तो इस चीज से आगे निकल। ये चीज होती है ना, ये समझ, ये मैं माइक के सामने बना रहा हूँ, अगर तू देख सके, ये चीज जो है ना, ये बंदे को कभी नहीं आगे निकलने देती। तुम वो काम कर रहे हो जो यूनिवर्सिटी में ना लड़का अक्सर करता है, लड़कियों की असाइनमेंटें बनाता है, एंड पे वो लड़कियां भाई बोल के चली जाती है उसको। छोड़ यार, जिंदगी में एंजॉय द लाइफ कर। तेरे नल कर ले आए ते चुम लवा ओ नारान। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: मेरा करा जनाब, मुर्शिद कैसे हैं?
0: करम अल्लाह का जी, आप सुनाए, आप ठीक हैं?
1: मुर्शिद आपने पहचान लिया है ना मुझे, यहाँ नहीं बदता लिखाऊंगा
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और
1: तो आपको और आपकी पूरी टीम को, वन वन की पूरी टीम को सालगिरह मुबारक हो।
0: खैर मुबारक।
1: तो मैं बड़ा हंस रहा था अभी तो के गुड़ी गुड़ी सजना मैंने
0: उड़ाई जा।
1: आपने मुर्शिद था
0: जी।
1: मैं जब मुर्शिद कहता हूँ आपको, मैं लाहौर में भी आपके आधे डॉक्स में आता हूँ, मेरे साथ है वो भी, तो मैं आपका जिक्र करता रहता हूँ लाहौर में आधे डॉक्स आपकी शो।
0: वाह वाह वाह।
1: तो मेरा नाम है रेडियो, मैं तो नहीं कहता छाया हुआ हूँ, इश्तियाक मलिक
0: गुजर खान। वाह वाह वाह, इश्तियाक मलिक,
1: आप समझ गए होंगे।
0: नहीं मैं, यकीन करें, मैं कोई इतने ज्यादा गौर से सुनता ही नहीं आपकी बातें, मैं क्यों समझ गया हूँ? आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं
1: मैं आपका शो सुनने के खातिर बैठा रहता हूँ? आपने मैं असल में आपके कोई सवाल नहीं करना चाहता, क्योंकि आधे जवाब है तो मैं ना चीज सा बंदा हूँ, सरकार की ड्यूटी करने वाला बंदा हूँ।
0: आप मुझे समझ गए।
1: मैं आपके सामने बोल नहीं सकता ना, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात आप पकड़ ले कि आप हाजिर जवाब है।
0: नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है।
1: एक दफा सादे मोहतरम, मैं साथ भी आपको कह दिया है, मेरे बेटे हैं आप। एक दफा मैंने कहा था कि मैं हर वक्त हुसैन के गम में रोता रहता हूँ। आपने बड़ा मेरे से सवाल किया था, लेकिन आपने कहा कुछ कदर है, आपने जवाब ठीक किया। मैं कहा कि हर टाइम मैं उनके गम में रोता रहता हूँ। तो सादे वो मुझे लफ्ज आज भी याद है, तो मैं कोई ऐसा सवाल नहीं करता कि बड़ा मुश्किल है कि मैं आपके दरमियान कोई बात करूं।
0: नहीं नहीं, आप अल्लाह रहम करे, कोई मुश्किल नहीं। मैं वैसे ही
1: आपके साथ मैं थोड़ा सा गाता भी हूँ, तो आप गाने का जिक्र कर रहे थे, मैं थोड़ा सा आप गुनगुनाना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो।
0: हाँ मैं देता हूँ इजाजत, लेकिन आप मेरा एक काम करेंगे थोड़ा सा?
1: जी जी।
0: उंगली लें अपनी
1: जी,
0: उंगली उंगली उंगली, फिंगर फिंगर।
1: जी जी, मैंने दी है।
0: उठाएं बिल्कुल सीधी, अपने चेहरे के पास लाएं।
1: जी जी।
0: होंठ के ऊपर रखें। हाँ, और जब तक मैं बात करूं ये उंगली नहीं हटानी है आपने, ठीक है? हेलो,
1: मैं नहीं उठा रहा।
0: हाँ गुड। अच्छा, वो मैं ये कह रहा था कि आप बिल्कुल ठीक बात फरमा रहे हैं, बाकी नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप बोलें, आप जरूर बोलें, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। यार उंगली नहीं उठानी ना यार, उंगली नहीं उठानी। पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि मैं गिला सिर्फ, सर मुझे ये था कि जब मैं आया भी था कि यार हमारे बड़े एक शरीफ से प्रेजेंटर हैं, मुझे पता चला यार कि वो, मुझे अभी भी पता चला, उस दिन भी पता चला कि लोगों ने आके उनको फीडबैक दिया, तो वो अकेले तो नहीं थे प्रोग्राम में, और मैं था प्रोग्राम में, तो मेरा प्रोग्राम है, अभी 50 मिनट और हैं, मैं आया हूँ। मैंने आधे साल ही कहा है कि जिनको बहुत शौक है फीडबैक देने का वो कॉल करें, अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मुझे फीडबैक दें। क्यों नहीं दे रहे फीडबैक? अब हटा लें उंगली।
1: جناب مرشد.
0: ہاں جی مرشد.
1: تو میں اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا گنگنا دوں.
0: ہاں گنگنا دا
1: گنگنا دوں.
0: ہاں گنگنا دا
1: گنگنا. میں آتس بھی ہوں
0: سر. آپ سنا دے نظر. کیوں آپ میرا بی پی آئی کر رہے؟ سنا دے نظر پلیز. سنا دو.
1: اچھا اچھا. ہاں جوڑی جملہ آپ کی نظر ہے
0: جی جی.
1: وہ کی لگ کے کس دے میں

0: ਨਾਨ ਨਾ ਜੋੜੀ ਪੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆ ਪਿਤਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭਾਗਵਤ ਨਾਨੂ ਮੋੜੀ ਭਾਗਵਤ ਮੋੜੀ
1: ਆਪਕਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਲੱਗ ਸੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਗਾ
0: ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਨਾ ਤੋੜੀ
1: आपका क्यामत वाले दिन ना अलग हिसाब होगा। यार ये मेरा इतना पसंदीदा गाना है भाई, मेरा एवर फेवरेट सॉन्ग है। रेशमा जी मैं कुर्बान जाऊं रेशमा जी आपकी आवाज पर, और क्या खूबसूरत गाते हैं। वो कहता है कि यार खुदा कभी किसी का मान ना तोड़े, यार मान ना तोड़े। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो यार, बट थोड़ा टाइम रह गया, मैं अब प्रोग्राम टाइम पे ही खत्म करके जाता हूँ। वो दौर गए भाई, हम 3:30 बजे तक प्रोग्राम करते थे, मेरे बाद मुश्तबा भाई ने प्रोग्राम करना होता। मैं अगले आधे घंटे में आपसे इजाजत लेके चला जाऊंगा, तो मेरे साथ रहो यार। उसके बाद बस अब थोड़ी देर बाद जिक्र अस्कार शुरू करूंगा, उसके बाद बस फिर आंख का वजू, आपकी आंख का जामिन मैं, उसके बाद खुदा हाफिज। मान ना यार टूटे कभी किसी का। वो कहता है कि हालत हाल के बदले हालत हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया शौक जिंदगी गई, उनकी उम्मीद नाज का हम पे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। मान ना टूटे यार कभी किसी का, ये बड़ी बड़ी जो है ना एक मुश्किल बात होती। रेशमा जी एक पॉइंट पे आगे कहती है कि

मेरे जींदे आ मुड़ी यार, मेरे जींदे आ मुड़ी यार, मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है, मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है, जितना भी रोशन हो जंगल जंगल है, मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है, जितना भी रोशन जंगल हो जंगल जंगल है, पेड़ फूल परिंदे मैं और तुम, पेड़ फूल परिंदे मैं और तुम, कितने अरसे बाद मुकम्मल जंगल है, मेरा हाथ पकड़ ले पागल जंगल है, मेरे जींदिया मुड़ी। सलामत रहो यार, सलामत रहो, मौला सलामत रखे, जवानी अली अकबर के सदके जवानियां मान हो, जनाबे कासिम के सदके अपने भाइयों को सहरे पे नाना नसीब हो तुम्हारे।

कभी दर्द ना जाता है अली।

0: السلام علیکم کالر، کون ہے ہمارے ساتھ، کہاں سے؟ ہیلو،
1: ہیلو،
0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب،
1: میں کینیڈا سے ناہید بات کر رہی ہوں.
0: کیسی ہیں ناہید صاحب؟
1: جی میں بالکل خیریت سے ہوں. اور آپ جو سوال پوچھ رہے تھے اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں.
0: جی
1: فرسٹ ٹائم میری آپ سے بات ہو رہی ہے.
0: جی جی
1: پروگرام میں سنتی ہوں لیکن بات پہلی دفعہ ہو رہی ہے.
0: جی
1: آپ پوچھ رہے تھے کہ کیوں ان کو نہیں مارا گیا سجاد کو، اور جب اصغر کو 6 ماہ کے بچے کو اگر
0: سوال میں نے کر دیا، آپ جواب پہ آئیے. سوال میں نے کر دیا، لوگوں نے بھی سن لیا، آپ نے بھی سن لیا، جواب پہ آئیے.
1: جی اچھا پہلی بات تو یہ کہ وہ اس وقت جب یہ ماں کا جاری تھا تو اس وقت وہ بسترے علالت پہ تھے، وہ اتنے شدید بیمار تھے کہ وہ نہ تو تلوار اٹھانے کے قابل تھے نہ میدان جنگ میں ان کی شمولیت تھی، اور اس وجہ سے بھی شاید ان کا اتنا دھیان نہیں ہوگا اس طرف. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس سلسلے کو بھی تو جاری رہنا تھا.
0: اگر کوئی کسی کو شہید کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی کسی کو شہید کرنا چاہتا ہے تو کوئی بیمار ہے یا نہیں اس سے کیا فرق پڑتا؟ اگر کسی نے کسی کو قتل، کسی نے،
1: میں آتی ہوں اس بات پہ آتی ہوں، آپ میری بات سنیے. اور دوسری بات تھی کہ آگے سلسلہ چلنا تھا اور انہوں نے امام وقت بننا تھا اور اس کے لیے حکم خداوندی ایسا تھا، اور پھر جب انہیں میدان ادھر پیش کیا گیا ابن زیاد کے سامنے، سارے جو قیدی تھے، اسیر تھے جو، تو جب انہوں نے حکم دیا ابن زیاد نے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو حضرت زینب نے بہت ہی جرأت کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اسے قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو، اور انہوں نے ان کو اپنے حصار میں لے لیا.
0: میں آپ کو دربار کا جملہ سناؤں؟
1: اور پھر ایک بات اور میری ہے، میں فنش کرتی ہوں آپ. اور پھر ان کا یہ بھی تو تھا کہ انہوں نے ان کو اس گلیوں میں، بازاروں میں قیدیوں کو پھرانا تھا، اپنی فتح کا جشن منانا تھا، اور اس کے لیے مرد کا چہرہ تو یہی ایک تھا. اور لیکن یہ ساری باتیں ایک واقعہ ہے، حکم خداوندی تھا اور ایسا ہی ہونا تھا، سو ایسا ہوا. بس میرا اتنا کہنا ہے. تھینک یو.
0: بہت شکریہ ناہید، بہت بہت شکریہ. آپ کی ساری باتوں میں صرف ایک بات جو متصل ہے اور منسلک ہے سچائی سے، وہ یہی ہے کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے لہجہ علی میں، جرت عباس میں یہ کہا کہ اگر اسے کسی نے ہاتھ لگایا تو میں بد دعا دوں گی، قیامت برپا ہو جائے گی. ہائے ہائے، کیا کہنا. جب آپ نماز ادا کیا کریں تو سجدہ شکر میں جا کر خدا تعالی سے یہ دعا کیا کیجئے کہ جہاں پر خواتین کی بات ہو تو ہمارے پاس جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جیسی ہستی موجود ہیں. تو اگر کوئی قتل کرنا چاہ رہا تھا اور کوئی قتل کرنے نہیں دے رہا تھا تو وہ جناب سیدہ زینب تھیں. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ شکر ادا کیا کیجئے بطور رول ماڈل، وہ ایک الگ بات ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ آج کل کے دور میں خواتین کہتی ہیں ایک کچوری دو سموسہ، ان مردوں کا کیا بھروسہ. بائی دی وے مجھے تو یہ بہت فنی لگا، میں ہنس رہا تھا اس پہ. لیکن چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے بھروسہ کیا جا سکتا. एक कचोरी दो समोसा बिल्कुल भरोसा किया जा सकता है। आप आंख उठा के ज़रा अपने वालिद को देखिए, अगर हयात हैं, ये एक मर्द ही है और ये वही मर्द है जिस पे आपने भरोसा किया जब आप छोटे से थे, जिसने अपना दिन देखा, ना रात देखी, ना भूख देखी, ना अपने तन पे कपड़ा देखा। उसने आपको पढ़ाया, उसने आपको लिखाया, उसने आपको इतनी इजाज़त दी, उसने आपके ऊपर इतना भरोसा किया कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। फिर आप थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर एक भाई था जिसने आपके भरोसे को जीता और आपकी ज़िंदगी में हर वो मंजिल जहाँ पर आपको किसी मुहाफ़िज़ की ज़रूरत थी, वहाँ पर वो आपके साथ खड़ा हुआ। उसके बाद शौहर, उसके बाद बेटा। हमारे यहाँ मैंने चूँकि बहुत सारे ममालिक का दौरा किया, बहुत सारे ममालिक के लोगों से गुफ्तगू की, हमारे यहाँ चूँकि बहुत सारी चीज़ें हमें बड़ी अधूरी मिली हैं ना। रोटी आई तो सालन नहीं आया, सालन आया तो रायता नहीं आया, रायता आया तो रोटी ठंडी हो गई। वो हमारे साथ हुआ ये कि हमने फेमिनिज्म या फीमेल एम्पावरमेंट का मतलब भी ये समझ लिया है। अगर आप दुनिया भर में किसी खातून से पूछेंगे कि भाई फीमेल एम्पावरमेंट का क्या मतलब है, तो वो कहेगी कि वो औरत जो कि पढ़ी लिखी हो, वो औरत जिसको पढ़ने की आज़ादी हो, वो औरत जिसको अपने हवाले से शऊर हो कि उसको क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, उसके लिए जॉब्स के इक्वल मौके हों। अगर वो जॉब करती है तो जो सैलरी मर्द को मिलती है वही औरत को भी मिले, अगर वो उसको उसके विरासत में हिस्सा मिले, उसको तालीम का हक दिया जाए, उसको सेहत की सहूलियात दी जाए, हर वो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ जो कि एक मर्द को प्रोवाइड की जा रही है वो एक फ़ीमेल को भी की जाए। तो अगर आप बाहर लोगों से मिलेंगे तो कोई कहेगी जी मेरे लिए एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, लॉयर बनूँ, जज बनूँ, टीचर बनूँ। पाकिस्तान में आप पूछेंगे कहेंगे जी वुमन एम्पावरमेंट का मतलब है मैन हेटर। मैन हेटर से मुराद है कि आप हर मर्द से नफरत करें। मैं ये नहीं कहता कि इस माशरे में मौजूद हर मर्द आइडियल है, लेकिन कौन आइडियल है? औरत आइडियल है? नहीं है, एज सिंपल एज दैट। इसी तरह मर्द भी नहीं है। सो हमेशा याद रखिएगा कि ये जो अच्छाई और बुराई जो है ये मावरा होती है जिन्स के साथ। इट्स नॉट ओनली अबाउट द मेल फीमेल और अ मेल। मैं कहूँ कि सारी फीमेल गलत हैं तो नो, मैं कहूँ कि सारे मेल गलत हैं तो नो, बट हमारे यहाँ चूँकि हमेशा इजी चीज़ को ऑप्ट किया जाता है। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी के साथ बैठा हुआ था तो मैं उसको ये कह रहा था कि यार ज़िंदगी में सबसे फजूल लोग वो होते हैं, सबसे आप कह लो कि मेरे नज़दीक लूज़र्स लोग वो होते हैं जो अपनी गलती की जस्टिफिकेशन रखते हैं अपने पास। क्योंकि याद रखना इसके दो दो नुकसानात होते हैं। जितने यंगस्टर सुन रहे हैं, अक्सर आप लोग मेरे से टेट टॉक लेना चाहते हैं तो इसको टेट टॉक समझ के सुन लो। दो नुकसानात होते हैं जब आप अपनी जस्टिफिकेशन रखते हैं गलती की। पहला नुकसान तो ये होता है कि आप कभी भी उस गलती को सुधारते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ को जस्टिफाई करते हैं तो आपका जहन बैक एंड के ऊपर आपको एक सिग्नल दे देता है कि यार ये ठीक है, तुम्हारी गलती की वजह से नहीं हुआ, ये गलती नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी से बदतमीज़ी करूं और मुझे इसका एहसास हो रहा हो कि मैंने बदतमीज़ी की है, लेकिन मैं अपने जहन में कहूँ कि यार मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं उस टाइम बड़े गुस्से में था, तो मैं अपने माइंड को एक सिग्नल दे रहा हूँ कि भाई यू डोंट हैव टू चेंज इट, नो इशूज एट ऑल, तुमने कोई गलत नहीं किया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप ग्रो करना बंद कर देते हैं। हमारे मौसम में 80% ये हो रहा है कि आप कोई गलती करते हैं फिर आप उसको जस्टिफाई करने की जगह ढूंढते हैं। जब आप किसी चीज़ को जस्टिफाई करें, देखिए आप यू मेड अ मिस्टेक, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आपसे गलती हुई, माफ़ी मांगे उस पर, अगले को अश्योर करवाएं कि भाई नेक्स्ट टाइम नहीं होगी और नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर करने की कोशिश होगी, दैट्स इट। इसके बाद जब आप उसको जस्टिफाई करते हैं, वो किसी भी हवाले से हो, उसकी वर्थ ज़ीरो होती है, उससे आपकी वर्थ ज़ीरो हो जाती है। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे मकाम मेरे पास ज़िंदगी में ऐसे आए, मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे, अब ज़ाहिर है क्या बंदा बताया और क्या नहीं, बहुत सारे काम ऐसे थे जो मैं करता तो मेरे लिए ज़ाती तौर पे बहुत फ़ायदेमंद होते, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि मैं करूँगा तो शायद फिर मेरे वालदैन इससे खुश ना हों या मेरे वालदैन को इससे कोई बहुत बेनिफिट ना हो। मैंने नहीं किया लाइफ में। और इसी तरह मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे काम शायद ऐसे कर दिए जो गिरा गुजरे हों मेरे आसपास के लोगों को, तो जैसे ही मुझे एहसास हुआ तो आई सेड देम सॉरी, यार ठीक है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी हाल ही की बात, कुछ 3-4-5 महीने की बात है, अभी जिस इदारे में मैं बैठा हूँ रेडियो पाकिस्तान में, इनके गेट के ऊपर एक साहब थे, शायद वो चले गए हैं, रिटायर हो गए, मैं पहुंचा तो मेरा हाथ लग गया हॉर्न के ऊपर, जो गाड़ी का हॉर्न होता है उस पर हाथ लग गया। वो काफ़ी लाउड है मेरी गाड़ी का हॉर्न, तो वो एकदम आया, उन्होंने मेरे से थोड़ी सी बदतमीजी की, तो मैंने भी पलट के बदतमीजी कर दी। आप यकीन जानिए कि मैं गाड़ी लॉक करके, और जाहिर है जब मैंने बदतमीजी की तो फिर वो खामोश हो गए आगे से। मैं गाड़ी लॉक करके जब तक स्टूडियो पहुंचा, मुझे एहसास हुआ कि नहीं जिशान, तुम्हें नहीं करना चाहिए था। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कर दी थी तो आप लेट इट गो कर सकते थे, नहीं करना चाहिए था, बिकॉज आप इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से जितनी गुफ्तगू करते हो या जितनी बात आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सब्र के हवाले से करते हो, तो नहीं करनी चाहिए थी यार। अच्छा, मेरा माइंड मुझे ये सिग्नल दे रहा था कि नहीं यार, उसने भी तो बदतमीजी की थी, आप समझ रहे हो मेरी बात, यार उसने भी तो बदतमीजी की थी। अब जब तक मेरा माइंड मुझे ये सिग्नल दे रहा था कि भाई उसने भी की थी, तो मेरा दिल चाह भी रहा था कि मैं वापस आके उनको कहूँ यार सॉरी यार, लेकिन मेरा माइंड कह रहा था नहीं भाई उसने भी तो की, तो वो मैं बार बार रिपेंट नहीं हो पा रहा था, मैं बैठ रहा था। तो इवेंचुअली मैंने अपने दिमाग को ये सिग्नल दिया कि भाई इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। ये छोड़ो उसने क्या किया, तुमने हाउ यू रिएक्ट टू इट। फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर कोई गाली देगा तो तुम पलट के गाली दे दोगे, ठीक है। सो आई वेंट टू दैट पर्सन, मैंने उनको कहा कि यार आपको बुरा लगा, आप मेरे उम्र में बड़े हैं तो मैं आपसे माजरत कर सकता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ही लिटरली क्राइड एंड ही सेड कि मुझे घर की तरफ से कोई इशू है, मेरे बेटे का फ़ोन आया था, उसको पता नहीं पैसे चाहिए या क्या नाफरमान है, कुछ इस तरह की उन्होंने बात की थी बार। सो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इफ़ यू मेड समथिंग, इफ़ यू मेड अ मेस, ट्राई टू क्लीन इट विद योर एक्शंस रादर जस्टिफाइंग इट विद योर व्हाट्सएप स्टेटसेस और योर इंस्टाग्राम स्टोरीज और व्हाट। ये हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब एक सिलसिला है कि हम क्या करते हैं, जब हमसे कोई गलती हो जाती है और हमें पता भी होता है कि गलती होगी, तो हम जस्टिफिकेशन के तौर पे व्हाट्सएप स्टेटसेस ढूंढते हैं, भाई व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं इसको जस्टिफाई करने के लिए, या इंस्टाग्राम स्टोरीज लगाते हैं। वी ऑल आर ह्यूमंस, हम गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा, इंसान नहीं करेगा तो कौन करेगा। हाँ, दानिस्ता तौर पर गलती हो रही है, बारहा गलती हो रही है, बार बार गलती हो रही है, तो फिर वो गलती नहीं है, वो चॉइस है, और चॉइस के साथ अगर कोई कुछ करे तो फिर ये उसकी चॉइस है, और चॉइस को कभी तब्दील नहीं किया जा सकता।

0: हुआ।
1: अच्छा जी, एक काउंटर नैरेटिव आया है, वो कह रहे हैं कि जी मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फीड हिज फैमिली। फ्रॉम अ वुमन परस्पेक्टिव इट्स नॉट ओनली रिस्पॉन्स, इट्स नॉट द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई हैव वर्कड विद द यूके, अफ्रीकन, यूएस, इंडियन, बंगाली, मिडल ईस्टर्न पीपल एंड द माइंड सेट ऑफ द मेल्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट इज पैथेटिक। फॉर गर्ल इमोशनल सिक्योरिटीज माइंड सेट आर मोर इम्पॉर्टेंट। पैसा लड़की भी कमा सकती है। अच्छा, अब चूंकि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं शीदा, मतलब पेंडू नहीं कहते, शीदा कहते हैं, तो शीदे के सामने आप कोई भी बात रख देना, तो क्योंकि शीदे का दिमाग है छोटा, तो वो हर चीज़ को शीदा अपनी तरह से सोचता है, बड़े पर्सपेक्टिव में नहीं सोचता। तो जब आप रेडियो पर होते हैं तो आपने कम टाइम में बड़ी बात करनी होती है, तो इसलिए आप ये गुमा कर लेते हैं किसी की थॉट्स पर कि यार जो मैं बात कर रहा हूँ कि चलो आधी कर रहा हूँ तो अगली आधी वो खुद समझ आएगा, ताकि टाइम बचे और हम मैक्सिमम बात कर सकें। लेकिन शीदे ने बात अपनी जहन के मुताबिक सोचनी है। मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप गौर से सुने तो मैंने कहा कि द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइमरली जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सबसे बड़ी, मैंने ये नहीं कहा वाहिद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं फिर ये कह रहा हूँ, और मैं इसको बड़े यकीन और एतमाद के साथ कह सकता हूँ, और मैं इसको बड़ा अपने जो ये थॉट है इसको सेकंड कर सकता हूँ बहुत सारे दलाइल के साथ, इवन बहुत सारे आप कह लें कि प्रैक्टिकल आर्गूमेंट के साथ, लेकिन अब उसका वक्त नहीं है और शायद इतनी ज़रूरत भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मर्द की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो अपने खानदान को फीड करना है। आपने कहा कि पैसा औरत भी कमा सकती है, लेकिन इसका फिर नुकसान क्या होता है? अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने खुदा का एक बनाया हुआ निज़ाम था, उसकी तरतीब को लेफ़्ट राइट करना शुरू किया, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। मैं अब एक बात करने लगा हूँ, थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, लेकिन मुझे बताइएगा, और ये आप पर हक है कि अगर आप, अब जो बात मैं करने लगा हूँ, अगर आपको बात लगे कि नहीं यार ये बात ठीक नहीं है, तो आप कहिए कि ठीक नहीं, और अगर लगे कि ठीक है तो फिर ये मेरा हक है कि आप कहें कि हाँ यार बाकी बात में वजन है। आजकल बहुत ज़्यादा लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि यार बच्चों के साथ हरासमेंट हो रही है, बच्चों के साथ इस तरह के मामलात हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए, बहुत सेंसिटिव इशू है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि जो दरिंदा ये काम कर रहा है वो तो किसी रहम का हकदार है ही नहीं, लेकिन इस सूरत हाल को होने देने में उस बाप का भी उतना ही कसूर है जो घर में बैठा है लेकिन बेटी को कह रहा है कि जाओ तुम सौदा लेकर आओ। उस भाई का भी उतना कसूर है कि बेल बज रही है, भाई घर में बैठा मोबाइल देख रहा है लेकिन बहन गेट के ऊपर जा रही है। ठीक है, अब ये निज़ाम था कैसे? देखें, मर्द का काम था, जो मैंने पहले भी कहा, कि प्राइमरीली तौर पर रिस्क कमाना, और जाहिर है जब वो अब अपने घर से बाहर है, सुबह 9 बजे जा रहा है, रात 9 बजे आ रहा है, सारे दिन बाहर है, तो घर की जिम्मेदारी किसी ने लेनी है। माँ ने देखना है कि घर में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, बेटी क्या कर रही है बेटी क्या नहीं कर रही, बेटा क्या कर रहा है बेटा क्या नहीं कर रहा। अब आपने कहा कि पैसा तो औरत भी कमा सकती है, भाई औरत नहीं, पैसा तो मर्द, औरत, ट्रांसजेंडर, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, कोई भी कमा लेगा। बाहर जाके आप फर्ज करें जूते भी पॉलिश करने शुरू हो जाए तो पैसा कमाना इट्स नॉट एन इशू। आप जब फैमिली बनाते हैं तो आप इस नीयत के साथ बनाते हैं कि आप उनको बेस्ट पॉसिबल लाइफ देंगे। एक मर्द होता ही वो है जो अपनी जिंदगी को इस तरह लेकर आगे बढ़े कि उसके होने से उसकी जो इमीडिएट फैमिली है उसका लाइफस्टाइल बेहतर हो रहा है। अगर फर्ज करे एक मर्द है जो सारा दिन घर में बैठा रहता है, ठीक है, तो वो मर्द होने का कौन सा पैरामीटर मुझे बताएं पूरा करे? फॉर एग्जांपल, वो इमोशनल सिक्योरिटी भी दे रहा है, वो घर बैठा हुआ है, काम पे नहीं जाता, लेकिन इमोशनल सिक्योरिटी दे रहा है कि भाई मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, प्यार मुझे तुमसे बहुत है, काम मैंने बहरहाल नहीं करना। तो आप मुझे बताएं, क्या शादी आएगी तो जो शादी के अखराजात या उनके बच्चों के खाने के अखराजात, बच्चों के स्कूल के अखराजात, पहनावे के अखराजात, रहने के अखराजात, एक अच्छी लाइफ के लिए, तो क्या वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो क्या इमोशनल डैमेज नहीं होगा? होगा। सो एक बेहतरीन मर्द वो होता है जो अपनी लाइफ को इस हिसाब से चलाए कि उसका प्राइमरीली मकसद हो कि भाई मैंने अपने बच्चों को बेहतरीन लाइफ देनी है और मैंने ज्यादा काम करना है ताकि मेरी औरत घर से बाहर ना निकले। क्योंकि इसलिए नहीं कि उसको ये शक है कि औरत बाहर निकलेगी तो कुछ हो जाएगा, ताकि जो बच्चों की जिम्मेदारी है वो औरत निभा पाए। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? मर्द अगर घर पे नहीं है तो किसी एक को तो होना है ना जिसने देखभाल करनी है। अगर फर्ज करें मर्द भी जा रहा है औरत भी जा रही है तो मुझे बताएं फिर बच्चे किसके नजरे करम पर हैं? नैनीज के? तो फिर आपके आए दिन केसेस आते हैं कि नैनीज क्या करती हैं बच्चों के साथ। गेटिंग माई पॉइंट? सो बारहा जैसे मैंने कहा कि शीदा चूंकि अपने जहन के मुताबिक चीजों को सोचता है तो डोंट बी शीदा इन द लाइफ यार। ऑलवेज सी द बिगर परस्पेक्टिव ऑफ द पिक्चर एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट कि अल्लाह ने ये निज़ाम कितने तरीके के साथ बनाया है। और वो बनाया ही इसीलिए है कि जब आप शादी करते हैं ये द अदर डे आई सेट विद माई मदर एंड आई सेड कि अम्मा आप ये चाहती हैं कि मैं शादी कर लूँ आपके लिए, मैं कर भी लूँगा आपसे मुराद मतलब आपके लिए से मुराद ये है कि आपकी खुशी के लिए मैं कर भी लूँ, लेकिन ये याद रखिए कि आप जहाँ भी करवाना चाहें सोच समझ के फिर ये फैसला लीजिएगा। उसकी वजह ये है कि मैं वो शख्स हूँ कि फिर वो बंदा सही हुआ या गलत हुआ मैं निभा जाऊँगा, चाहे मेरी ज़िंदगी जैसी भी हो गई फिर मैं निभा जाऊँगा, मैं अपने राइट्स पूरे करूँगा। ऑब्वियसली अगर वहाँ से राइट्स पूरे नहीं हो रहे तो मैं अंदर से ख़त्म तो हो जाऊँगा, या कोई भी ये शख्स मैं ना भी हूँ कोई भी शख्स हो वो अंदर ही अंदर से ख़त्म तो हो जाएगा। क्योंकि जो चाइल्ड फर्स्ट अप्रोच है हमेशा याद रखना जो एक मर्द है, मैं औरत की बात नहीं कर रहा मैं मर्द की बात कर रहा हूँ, मर्द होता ही वो है जिसकी चाइल्ड फर्स्ट अप्रोच हो। चाइल्ड फर्स्ट अप्रोच से मुराद ये होती है कि उसकी पहली थॉट ये हो कि मैंने अपनी औलाद को बेहतरीन ज़िंदगी कैसे देनी है। बेहतरीन ज़िंदगी से मुराद ये नहीं कि आपने बिकन हाउस में बच्चों को पढ़ाना है, अल्लाह आपको दे तो ज़रूर पढ़ाइए, लेकिन जो अपनी इस्तेआत है आपकी बेहतरीन स्कूल में पढ़ाइए, बेहतरीन आप जो है कपड़ा उनको पहनाइए जो आप इस्तेआत रखते हैं। अदरवाइज मैंने अपनी आंखों से, मुझे नहीं पता शीदे को कितना एक्सपोजर है लाइफ का, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी एग्जाम्पल्स खुद देखी हैं कि मर्द काम नहीं करते हैं, फाइनेंशियल सूरत हाल ख़राब है, घर में खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, ख़वातीन बाहर निकलती हैं और फिर इमोशनली डिस्टॉर्ट किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है इनको। सो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आई होप कि जो मैंने बात की वो समझ आई। और अब आपको पूरा पूरा हक है कि आप चाहें तो यू कैन बी एग्री विद मी और चाहें तो यू कैन बी डिसएग्री विद मी, नो इश्यूज एट ऑल।

खुश फातिमा कह रही हैं आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। यमुना अरशद कह रही हैं टोटली एग्रीड, जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब दैट्स ऑल अबाउट टुडे शो। आई डू होप कि जितना अच्छा मुझे प्रोग्राम करके लगा है उतना अच्छा आप लोगों को प्रोग्राम सुन के भी लगा होगा। और जाने से पहले वही बात जो हमेशा आपसे कह के जाता हूँ कि कहीं भी पहुँचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी हुआ करता है। छोड़ फरीद ना यार दामन, दुहाँ जहाना दाओ साडा जामन, वो दामन अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ज़मानत उसी शख्स की दी जाती है जिससे कोई गलती होती है। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट है आप, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो फिर चलें जैसे चल रहा है। अगर परफेक्ट नहीं है तो छोड़ फरीद ना यार दामन, दुहाँ जहाना दाओ साडा जामन। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, वो दामन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, याद रखिएगा। आपके फीडबैक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार आता है। फीडबैक देने के लिए ज़िशान नासिर लिखिए इंस्टा पे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूज़र आईडी है ZEESHANNASIR26, ज़िशान नासिर 26। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, वहाँ पर थ्रू मैसेज अपना फीडबैक पहुँचा सकते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जितना पैर होवे उतना ही खैर होवे, कुल आलम दी खैर उन्होंने सदके साड़ी भी खैर। हमेशा से दुआ देता हूँ कि जितना पैर होवे उतना ही खैर होवे, कुल आलम दी खैर उन्होंने सदके साड़ी भी खैर। हक मौजूद सदा सदा सदा मौजूद, अल्लाह हक अल्लाह हक अल्लाह हक। जिंदगी ने सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले एक नारा हक बुलंद करेंगे, बोलो बोलो बोलो बोलो सखी लाल कलंदर।

रहे हैं, आबाद रहे हैं। तुम लोगों का पुकी जा रहा है। जीशान नासिर साइंस आउट, फीडबैक करेगा इंतजार। फीडबैक देने के लिए जीशान नासिर लिखोगे इंस्टा पे, मैं मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी एज आई टोल्ड यू बिफोर ZEESHANNASIR26। जिंदगी ने सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा हमेशा हमेशा जिंदाबाद। जाओ बाय।

जो अव्वलीन में अव्वल और आखिरीन में आखिर है।

जो चट्टान में बसने वाली चींटी को भी रिस्क अता करता है और इस कदर तवाना बना देता है कि यही नन्ही जान हाथी जैसे अजीम जान के लिए वबाले जान बन जाया करती है।

मुस्कुराते हैं, जगमगाते हैं सब हसीन चेहरों के नाम, मुज्तबा हैदर का सब अहले मोहब्बत को सलाम। जी हाँ सामईन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुंजाए शौक, बज़्म सुखन, और आपका मेज़बान मुज्तबा हैदर। जगमगाते हैं सब हसीन चेहरों के नाम, मुज्तबा हैदर का सब अहले मोहब्बत को सलाम। जी हाँ सामईन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुंजाए शौक।

के आगाज़ में हमेशा की तरह आपके लिए बहुत सारी दुआएं। सदा खुश खुर्रम रहिए, शाद आबाद रहिए, सलामत रहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते जगमगाते झिलमिलाते रहिए।

साइन, ये प्रोग्राम आपका अपना है। इस प्रोग्राम में आप शामिल हुआ करते हैं टेलीफोन कॉल के ज़रिए। राबिते का नंबर है 051-111-0001। फेसबुक पर हमारा पेज है FM 101। आप कमेंट्स कर सकते हैं, पैगामात भेज सकते हैं।

जिंदगी क्या है? जिंदगी उस घड़ी का नाम है जो गुजर जाती है। गुजर तो वक्त भी जाता है, तो क्या वक्त जिंदगी है? जी हाँ सामीन, वही वक्त जिंदगी है जो अच्छे से गुजर जाए, और जिंदगी वही अच्छी है जो दूसरों के काम आए। लेकिन अजीब हुस्न इत्तेफाक है कि वो लोग जो दूसरों के काम आते हैं आखिर में तन्हा रह जाते हैं, और उनके नसीब में कुछ और हो ना हो रत जगे जरूर होते हैं, और आपके रत जगों में आपका और हमारा साथ हुआ करता है। कहते हैं अगर बात की जाए तो बात बात नहीं रहती,

मरहम बन जाती है। अल्फाज का कोई कबीला नहीं होता, उनका कोई मज़हब नहीं होता। अल्फाज या तो अच्छे होते हैं या बहुत अच्छे होते हैं। ये वो लोग कहते हैं जो खुद अच्छे होते हैं। उनके नज़दीक कुछ भी बुरा नहीं होता, और खुदा जानता है कि वो लोग बहुत अच्छे होते हैं जिनको कायनात की हर चीज़ अच्छी लगती है।

तो क्या जिनको कायनात की हर चीज अच्छी लगती है उनको वो कोई एक शख्स जो अच्छा लगना चाहिए, सोचिए वो कितना अच्छा लगता होगा।

अगर वही शख्स छोड़कर चला जाए, आप कहेंगे कि मुश्तबा साहब आपने ये बात तो करी है, लेकिन हंसते हुए। तो जनाब इस बात पे रोए भी तो कैसे? रोने का दुनिया मजाक जो बना लेती है। तो जनाब हम आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आपके पैगाम भी शामिल करेंगे, और आज हम ख़ास तौर पर कहेंगे कि फेसबुक पर जो हमारा पेज है FM 101, वहाँ पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। आप जानते हैं कि आपके लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया करती हैं मैम सदफ रानी। और आज हमें मुआविनत हासिल है जनाबे जीशान की।

आप यकीन जानिए, हम कई बार कोशिश कर चुके कि प्रोग्राम की पहली पेशकश आप की समातों की नज़र की जाए, लेकिन जो जनाबे कंप्यूटर हैं जनाब, वो हैं कि हमें बिल्कुल सुन नहीं रहे, हमारी बात नहीं मान रहे। तो अब जब तक वो हमारी बात नहीं मानेंगे, चाहिए तो ये कि आप हमें सुन लीजिए।

जी जनाब, प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वाले और रिश्ते निभाने वाले। शायद कुछ भी नहीं।

वो कहते हैं कि मोहब्बत का एक लम्हा भी जिंदगी गुजारने के लिए बहुत ज्यादा हुआ करता है। क्यों, ऐसा नहीं है क्या?

0: शायरी को अच्छी आवाज और मीठी धुन
1: मिले जनाब,
0: मोहब्बत तरन्नुम ने उर्दू और पंजाबी दोनों जबानों में
1: नाम है
0: अनगिनत खूबसूरत गीत गाए हैं। कोई भी गीत गाते हुए वो अपनी रूह को उस गीत की कैफियत में रचा
1: जब मोहब्बत अपनी इंतहा तक पहुंचती है तो उसे इश्क

लुत्फ वो इश्क में पाए कि जी जानता है। और सिर्फ लुत्फ नहीं पाए, रंज भी ऐसे उठाए कि जी जानता है।

साइन मोहब्बत की हदें तो नहीं है ना, और जज्बों की हदें भी नहीं होती हैं। वो किसी भी समत चल निकले उसका फिर इख्तिताम नहीं होता, वो बात चलती जाती है, बात बढ़ती जाती है एक तसलसल के साथ। तो जनाब, जिंदगी इसी अम्र से इबारत है।

जिंदगी खाक न थी, खाक उड़ाते गुजरी। जिंदगी खाक न थी, खाक उड़ाते गुजरी। तुझसे क्या कहते, तेरे पास जो आते गुजरी।

दिन जो गुजरा तो किसी याद की रौ में गुजरा, शाम आई तो कोई ख्वाब दिखाते गुजरी।

अच्छे वक्तों की तमन्ना में रही उम्र रवां। वक्त ऐसा था कि बस नाज उठाते गुजरी,

जिंदगी नाम उधर है किसी सरशारी का, जिंदगी नाम उधर है किसी सरशारी का, और इधर दूर से एक आस लगाते गुजरी। रात क्या आई कि तन्हाई की सरगोशी में, हो का आलम था मगर सुनते सुनाते गुजरी। बारहा चौंक सी जाती है मुसाफत दिल की, बारहा चौंक सी जाती है मुसाफत दिल की, किसकी आवाज़ थी ये किसको बुलाते गुजरी।

कभी कभी इंसान को ख्याल आता है, और बहुत देर की बात ख्याल आता है कि जाना कहीं था और कहीं और चल निकले।

0: वो सलीम कौसर ने कहा था ना कि कभी लौट आए तो पूछना, कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। सवीन, आपको इंतज़ार की जहमत से गुजारना कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं लगता, तो चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले कॉलर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम
0: जनाब।
1: अजीतदा भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं?
0: बिल्कुल ठीक जनाब, ऊपर वाले का एहसान है। आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह का। अजीतदा भाई, मैं आतिश अब्बासी बात कर रहा हूँ, बारह को इस्लामाबाद से।
0: जनाब
1: मैं भाई, पहली दफा आपसे बात हो रही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप,
0: बहुत शुक्रिया।
1: और आपकी आवाज ऐसी नरम नफीस आवाज, मैंने पहली दफा सुनी है।
0: जी बहुत शुक्रिया, बहुत
1: बहुत अच्छी
0: शुक्रिया।
1: आवाज सुनी, ऐसा नहीं कि मैंने अभी अच्छी आवाज नहीं सुनी, लेकिन ऐसी नफीस और नरम आवाज मैंने पहली दफा।
0: जनाब मैं ममनून हूँ आपका। जी क्या कहना
1: बहुत
0: चाहेंगे सरकार?
1: प्यारा अंदाज आपका,
0: जी
1: माशाल्लाह।
0: बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे सरकार?
1: सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके प्रोग्राम में हबीबुल भाई ने ऐलान किया था कि एक गजल है जो सुनाएगा, उसका इनाम है।
0: हाय हाय हाय हाय।
1: हाँ जी, तो वो हबीबुल भाई अगर सुन रहे हो तो मैं वो गजल सुनाना
0: अरे
1: चाहूंगा।
0: जनाब 5,000 रुपए।
1: जी, तो अगर अभी हबीबुल साहब नहीं सुन रहे तो फिर आप, मैं उनको बताइएगा बाद में, आतिफ अब्बासी ने सुनाई थी,
0: जनाब
1: तो अगर वो कहेंगे तो फिर मैं दोबारा भी सुना सकता हूँ। और
0: गोया, अब आप रिहर्सल
1: तो
0: करना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं?
1: जी, वो आप सुनिएगा कि मैं अनिल भाई
0: इरशाद
1: की तरफ तरफ नहीं
0: इरशाद।
1: पढ़ सकता, क्योंकि वो लिखते ही खूबसूरत हैं,
0: नहीं
1: पढ़ते ही
0: आप,
1: माशाल्लाह
0: आपका जो
1: खूबसूरत
0: अंदाज़े
1: हैं,
0: बयां
1: मत
0: है
1: की
0: वो बहुत
1: कोशिश।
0: अच्छा है। आप यकीन जानिए हमें भी आप बहुत पसंद आए। आप चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए फिर।
1: तो ये है कि आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे,
0: वाह
1: जितने इस पेड़ के फल थे बसे दीवार गिरे।
0: हाय हाय वाह।
1: ऐसी दहशत थी फिजाओं में खुले पानी की, आंख झपकी भी नहीं हाथ से पतवार गिरे।
0: अरे वाह
1: मुझे गिरना है तो मैं अपने ही कदमों में गिरूं, जिस तरह साये दीवार पे दीवार गिरे। गिरगी
0: हाय हाय
1: छोड़ गए दिल में उजाले के खुदू, ये सितारे तो मेरे घर टूट के बेकार गिरे। क्या हुआ, हाथ में तलवार लिए फिरती थी, क्यों मुझे ढाल बनाने को ये छतनार गिरे। देखकर
0: वाह
1: अपने दरो बाम लरक जाता हूँ, मेरे हमसाए ने जब भी कोई दीवार गिरे।
0: वाह
1: वक्त की डोर खुदा जाने कहाँ से टूटे, किस घड़ी सर पे ये लटकी हुई तलवार गिरे। हमसे
0: वाह
1: टकरा गई खुद बढ़ के अंधेरे की चट्टान, हम जो सबर के बहुत चलते थे लाचार गिरे। क्या
0: वाह
1: कहूँ दीदाए तर, ये तो मेरा चेहरा है, तन
0: वाह
1: तन कट जाते हैं बारिश की जहां दार गिरे।
0: हाय हाय क्या कहना।
1: हाथ आया नहीं कुछ रात की दलदल के सिवा, हाय किस मोड़ पे ख्वाबों के परस्तार गिरे।
0: वाह
1: वो तजल्ली की शुआएं थी कि जलते हुए पर, हाथ आईने टूट गए, आईने बरदार गिरे।
2: वाह।
1: और मत्ता है कि देखते क्यों हो शकीद इतनी बुलंदी की तरफ, न सर उठाया करो कि ये दस्तार गिरे।
2: वाह।
1: न सर उठाया करो कि ये दस्तार गिरे, आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे। इतने इतने इस पेड़ के फल थे सफेद दीवार गिरे। तो मतलब भाई भाई आपको कैसी लगी गाना, थोड़ा पढ़ना मेरा ठीक था या गलतियां थी या क्या था?
2: देखिए ये जो बज्म है ना, ये मोहब्बत की बज्म है। और वो आपने सुना है ना कि ये मैं खाना है, बज्म में जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है। आप सब हमारे लिए बहुत मातबर हैं और हम मोहब्बतें आम करने वाले हैं और ज़िंदगी इसी का नाम है। आपने बहुत अच्छा पढ़ा, दिल को एक सुकून सा पहुँचा, बहुत शुक्रिया।
1: चले अनिल भाई, अगर नहीं सुन रहे तो आएंगे तो बताना, आप इसको बाकी में सुनाइए। अगर वो चाहेंगे, अगर नहीं सुन रहे तो आप इसको सुना
2: दो। चलिए जनाब, आपसे बहुत जल्द तकाजा करेंगे आपका अकाउंट नंबर, सही है?
1: चले फिर होगा, अगर हम आप देंगे तो
2: हम इनकार नहीं करेंगे। ठीक जनाब, जनाब बहुत शुक्रिया,
1: शुक्रिया, खुश रहे, सलामत रहे, तमाम सुनने वालों को सलाम।
2: वालेकुम अस्सलाम, खुदा हाफिज़।

0: जनाब तो ये बात है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक हूँ जनाब।
1: सर मैं अल्लाह शाहजाग से मोहम्मद नवीद बात कर रहा हूँ
0: जनाब।
1: सर ये कर रहे हैं, आपको जब से सुन रहा हूँ दो तीन चार पाँच माह हो गए हैं, बहुत इस वक्त रात को पिछले पैर को बहुत दिल को सुकून होता है यकीन करें।
0: बहुत शुक्रिया।
1: तो सर आपसे एक गुजारिश है, अगर आप मेहरबानी करें तो, ये थोड़ी देर पहले आपने गजल पढ़ी है वो दोबारा सुना सकते हैं मेहरबानी करके?
0: क्यों पहले ठीक नहीं पड़े क्या?
1: नहीं ठीक थी वैसे, मेरे दिल को बहुत अच्छी लगी है, मैंने कहा यार दोबारा सुन लो।
0: अच्छा चलिए मैं कोशिश करूंगा सुनाने की।
1: पर
0: बिल्कुल
1: मेहरबानी हो तो यार।
0: जनाब, वैसे अगर बात दोहराई जाए ना तो
1: जी
0: बात में वो वजन नहीं रहता, लेकिन आप कहते हैं तो मैं दोबारा पढ़ लूँगा। आपकी
1: छोटी सी
0: बार जो है ना
1: मेहरबानी
0: वो
1: थी जो
0: सही
1: मैं
0: अच्छे से पढ़ूंगा
1: कहना
0: ताकि आपको
1: चाहता।
0: समझ भी आ जाए।
1: हाँ ठीक
0: ठीक है सर?
1: है, बड़ी
0: सर
1: मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको खुश रखेगा।
0: खुश रहिए, खुश रहिए। जी हमीद गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
0: जनाब
2: जी हम कौन हो सकते हैं?
0: जी, आप आवाज तो जानी पहचानी है, नंबर भी जाना पहचाना है।
2: कौन कहता है मैंने तुझे बुला रखा है मुज्तबा? कौन कहता है मैंने तुझे बुला रखा है मुज्तबा? हमने तो तेरी यादों को सीने से लगा रखा है मुज्तबा।
0: जनाब मुझे असल में हंसी का दौरा पड़ जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने अल्फाज को।
2: रेडियो टीवी असिस्टेंट राइटर और 101 का कॉलर जनाब इश्तियाक मलिक में बोल रहा हूँ।
0: जनाब वैसे मैं आपसे अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ कि आप ये जो कॉलर कहा आपने, ये खमीज के कॉलर हैं या शर्ट के कॉलर हैं आप?
2: जी मैं रेडियो में 101 में कॉलर भी हूँ, सिंगर भी हूँ, लेकिन मैं 88.6 का पंजाब पुलिस का मैं मावन प्रोग्राम भी हूँ और मैं सिंगर भी हूँ।
0: जनाब कोई ऐसी बात की जाए।
2: माला क्या हाल है, बड़ी कमी महसूस हो रही थी, आप तो शेर एक याद और आ गया है। सूरज के साथ डूब गया मेरा दिल भी आज वो तमाम। सूरज के साथ डूब गया मेरा दिल भी आज कुछ तबाह। इतना उदास शाम का बदर पहले कभी ना था मुश्तबा।
0: आप यकीन जानिए कि ये मुश्तबा कौन है जो इतने बेवजन शेर कहता है? कौन है मुश्तबा?
2: बेवजन नहीं मुश्तबा, जो आप खुद भी शायर हैं जी, हम कोई बेवजन नहीं आप कहते, और आप तो कमाल के, मैं तो जनाबे वाला, आप सिंगर भी हैं, हमारे आप जो छोटे उस्ताद भी हैं, और इसके अलावा आप मासूम दिल आर्जे भी है।
0: वो
2: आपको लकब ज्ञान में दिया हुआ है मासूम दिल आर्जे।
0: अच्छा
2: आप वन।
0: अच्छा चलिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
2: मैंने तमाम मेरी जो बेटियां हैं आज, जितने मेरे बेटे हैं या जितने, तमाम को लकब मैंने दिए हुए हैं
0: जनाब,
2: वन वन के जितने भी लकब मैंने दिए हुए हैं
0: जनाब। चलिए बहुत शुक्रिया
2: वाला,
0: बहुत शुक्रिया आपका कि आपने, बहुत शुक्रिया कि आपने बस इतना ही कह दिया कि लकब देने के पीछे आपका हाथ है, खुदा का शुक्र है। तो चलिए मैं अब आपसे तवक्को करता हूँ कि आप,
2: मैं आपकी
0: आपसे,
2: मैं असल में मैं रेडियो का बहुत बड़ा, मुझे मावन, मुझे प्रोग्राम के अलावा और दूसरा बेस्ट एक्टर अवार्ड भी अभी मैंने ऐलान किया है कि मुझे चीफ जस्टिस अब्दुल जुला साहब के हाथों मुझे दस्ते मुबारक से मुझे बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था।
0: माशाल्लाह
2: ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है। ये मेरी बेटियों को पता है, सदुपरानी हमारी जो बेटी है और हमारी उस्तानी है उन्हें पता है, तमाम को पता है कि मुझे अवार्ड मिला गया और बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया। लेकिन आपके सामने या वनों के सामने मैं कालर बन के आता हूँ, कालर मेरे लेकिन मैं कालर बन के आता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं कालर हूँ आपका। हालांकि मैं रेडियो से जुड़ा हुआ सब कुछ हूँ, प्रोग्राम में करता रहा हूँ रेडियो में, रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से प्रोग्राम और मैं तमाम, लेकिन मैं ये नहीं, मैं सिर्फ कहता हूँ मैं जनाब रेडियो का वन वन का कालर हूँ।
0: जनाब हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए एक आध अवार्ड बेस्ट कॉलर के नाम से और टाइटल से आपको दिया जाए।
2: बहुत शुक्रिया, मेरी बेटी को पता है, मैं असल में आपकी बात टाइम ज्यादा नहीं ले रहा, लेकिन मेरी बेटी को पता है, मैंने एक दबाव ने बोला कि मेरे जितने भी वन वन के जितने आजेद हैं मैं तमाम मेरे उस्ताद है, कुछ छोटा है कुछ बड़ा है, जितना आपको भी छोटा उस्ताद बोला है मैंने, मेरा मासूम आजे जनाब मुश्तबा, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मेरा उस्ताद कोई नहीं, ये मेरी बेटी के अल्फाज हैं कि उन्होंने कहा कि मैं आपकी उस्तानी भी हूँ तो आपकी बेटी भी हूँ और उनको मैंने लकब क्या दिया हुआ है, आप सुनते रहते होंगे रेडियो में वन वन में, मैं लकब क्या दिया हुआ है, कमांडर वन वन बेटी सदुपरानी, ये लकब मैंने दिया हुआ है
0: सही,
2: और इस नाम पर मैं पूरे रेडियो में कहता हूँ मेरी बेटी कमांडर वन वन सदर रानी को और उनकी मेरी टीम को मेरे बहुत बहुत सलाम।
0: सर बस आप थोड़ा इतना मोहब्बतों के साथ आप पेश आते हैं और इतने
2: मैं आपको बिस्मिल्लाह करता हूँ तो बिस्मिल्लाह जी आया तो
0: जी, बस हम चाहेंगे कि आप खुदा हाफिज भी कह दीजिए,
2: बिस्मिल्लाह करा
0: जी बिस्मिल्लाह, अब हम चाहेंगे आप खुदा हाफिज भी कह दीजिए क्योंकि हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेशक सारी रात बात करते रहिए।
2: नहीं मैं बात नहीं लंबी करता, मैं असल में मैंने आज गुनगुनाना था क्योंकि मैं उधर अपना मेरे जो जो दूसरे हैं जो मेरे जनाब क्या नाम अपना दिशान नासर साहब वो मेरे मुर्शिद है, उन्हें मैं उन्होंने लकब दिया हुआ मुर्शिद का, उनके शो में मैंने गाना गाया था नैन ना जोड़ी तेनु वास्ता खुदादा तेनु वास्ता खुदादा।
0: अच्छा अगर आपको गाना
2: आपका गाना गाना चाहते हो थोड़ा दो लाइन में गुनाना चाहते हो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बीमार भी हूँ।
0: आपने इतनी इतनी सुरे बिखेरी हैं कि अब आप मजीद क्या गाना चाहेंगे सरकार?
2: जी जी तो बीमारी भी हालत है लेकिन मैं दो लाइन में गाना गा सकता हूँ।
0: अब आप मना भी करेंगे तो आप गा के ही रहेंगे, तो आप शुरू कीजिए।
2: नहीं मना करते तो कोई ऐसी बात नहीं
0: है, नहीं आप ये प्रोग्राम आप ही का है ना, इसलिए आप
2: आज आप तो इजाजत है, इजाजत है फिर, और ये गाना मैं अपनी बेटी जो सदफरानी और इनकी पूरी टीम की नजर करना चाहता हूँ और मेरे जनाब एक खुरम बेग साहब है मेरे उस्ताद है उनकी नजर करना चाहता हूँ, इसके अलावा ये गाना मैं जनाब जी शान नासर साहब जो मेरे मुर्शिद है उनकी नजर करना चाहता हूँ। इजाजत है?
0: इजाजत
2: जी, बहुत शुक्रिया। गाना है जी कि मैं बीमार भी हूँ तो इसलिए मैं ये गाना गुनगुनाना चाहता हूँ आपकी इजाजत से।
0: चलिए जी
2: जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़ है।

0: यार नाल नासे, आपको कह रहा हूँ यार नाल नासे, उसे नाल तेरे खुले कर बीमार अनुशवा मिल जानिए नाल नाल नासे
1: ये
0: बोलो बस लाइन आपकी नजर है
1: जी जी।
0: ये गाना मेरी बेटियां बहुत पसंद करती है मन मन की ये गाना ये जुमला आपकी नजर है कि तेरा दीदार चना सड़ी मजबूरी तेरा दीदार चना सड़ी मजबूरी रुस तेरु टुकनो बड़ी जरूरी बेटा पुछवा
1: जी जी।
0: तेरा दीदार चना बड़ी जरूरी रुस तेरु टुकना बड़ी जरूरी नाल नाल ना सही प्यार नाल ना सही देख लिया कर आए बीमार नुजवा मिल जानी बीमार नुजवा मिल जानी जवा मिल जानी।
1: कुछ और भी गाना चाहेंगे सर?
0: उतारे मोहतरम आपको पसंद आ गया है तो मैं बिल्कुल मैं टाइम नहीं जाया करना चाहता, लोग इंतजार में होंगे, मैं अगली कल जो आपका शो होगा उसमें दोबारा गाना गाऊंगा।
1: यानी आप कल भी गाएंगे?
0: मैं जरूर गाऊंगा, मेरी बेटियां जो है ना वन वन की आज डेट तो मेरी बेटियां ना ये मेरे गानों को और बहुत सारे लोग मेरे गाने को एक बंदा है बकरिया वाला, ये बकरिया वाला है इसका कल का नाम भी अभी आ गया है, इसका नाम है जी चाचा दास बकरिया वाला, वो कहता है मैं बकरिया भी चिराता हूँ तो उनका गाना जब सुनता हूँ वन वन में तो मुझे बड़ी खुशी होती है, उनका गाना सुनता हूँ तो बहुत प्यारी आवाज है उनकी।
1: यानी आप ये समझ लीजिए कि जब आप शेर सुनाते हैं तो उनकी बकरियां बिदक जाती हैं, हैं?
0: जाने के वो उसने इसी तरह बोलता है और ये कहता है कि आप जो भेजिए वन वन की मैं तमाम को एक एक बकरी दूंगा, इतना अच्छा इंसान वो कहता है, सबको कहता है कि मैं उनके एक एक बकरी दूंगा कि आप गाना सुनाते हैं तो मुझे गाना बड़ा पसंद है, बकरी बकरिया भी चराता हूँ और गाना भी सुनता हूँ और आपकी आवाज मेरा शहदाई है वो बंदा चाचा हिंदाज बकरिया वाला चकवाल में रहता है।
1: तो आपके नसीब में
0: आपका शुक्रिया
1: अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं अगर आप इजाजत दीजिए एक बात कर सकता हूँ मैं क्या?
0: जी करेगा।
1: तो हमारे नसीब में बकरियां हैं तो क्या उन्होंने आपको किसी बकरे से नवाजा है क्या?
0: नहीं उन्होंने बकरे से नहीं नवाजा लेकिन अच्छा? वो कहते हैं बकरोटी भी दूंगा बकरी भी दूंगा
1: अच्छा?
0: तो वो कहता है मलिक साहब जो है जो हमारे
1: हम चाहते हैं कि बकरा
0: बकरी
1: हम चाहेंगे कि बकरा आपको नसीब हो जी।
0: जी जी तो अगर बकरा मिल गया तो इंशाल्लाह आपको भी पेश करेंगे इंशाल्लाह।
1: ऐसा गाना अगर आपने एक बार बकरे को सुना दिया ना तो अगली बार बकरा भी आपकी तरफ मुड़ कर नहीं देखेगा। हम चाहेंगे कि अगली बार आप जब प्रोग्राम में शामिल हो तो मेरी दरख्वास्त है चूंकि ये फैमिली शो है प्रोग्राम आपका है बस छोटी सी दरख्वास्त है आपकी खिदमत अकदस में कि मुझे मालूम है कि आपकी जो असल आवाज़ है वो बहुत खूबसूरत है, आप शायद किसी मसलहत के पेश नज़र अपनी आवाज़ को बदल देते हैं, हम आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करेंगे, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं लेकिन हम चाहते हैं
0: 88.6 में जो मामन प्रोग्रामों में वहाँ गाता हूँ सारे गाने में ही गाता हूँ
1: लेकिन हम चाहते हैं कि आप जब अगली बार गाएं ना या प्रोग्राम में शामिल हों तो आप अपनी असली आवाज़ में क्योंकि देखिए जो मोहब्बत है ना ये मोहब्बत का कर्ज होता है कि आप अपने सुनने वालों को ऐसी गुफ्तगु से नवाजें ऐसी बात उनके सामने करें कि जिससे उनके दिल में सुकून पैदा हो जिससे वो खुश हो जाएं जो उनके फ़ायदे की बात हो है ना तो आपको हम सुनना चाहते हैं, आपकी इतनी, आपका जो टैलेंट है ना वो हमने देख लिया माशाल्लाह, लेकिन अगली बार हम सुनना चाहते हैं कि आप इतना, जितना अच्छा आप एक्ट कर सकते हैं उससे कहीं अच्छा आप बोल भी सकते हैं माशाल्लाह। तो सरकार आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।
1: हमिद गुल साहब, मिजाज कैसे हैं आप?
2: बस हम
1: जी
2: ठीक
1: ठीक
2: हैं, खैरियत है।
1: ठीक।
2: मैंने आतिफ भाई साहब की गजल सुन ली है जो मैंने पढ़ी। हेलो।
1: जनाब जनाब,
2: हाँ, वो लोग आएंगे कल, बताएंगे हम आपको, इसका जवाब देंगे इंशाल्लाह।
1: जनाब
2: कल आपका प्रोग्राम होगा ना
1: जी,
2: इंशाल्लाह, बशर्ते जिंदगी। कल इस पर चर्चा भी करेंगे। मैं चाहता हूँ दो चार बंदे हो रहे हैं पढ़े, तो लॉजिकली बात है।
1: सही,
2: अच्छा हाँ,
1: क्या
2: अब
1: सुनाएंगे
2: ठीक है,
1: आज
2: सीरियस है। मैं
1: जी?
2: सोच रहा था आप मुश्तबा से मुश्तबा हो गए।
1: अरे
2: आपने
1: अच्छा, वो कैसे?
2: कहा ये कौन मुश्तबा बेवजन शायर है ना।
1: अच्छा, मुश्तबा मशकूक। हाँ, बस ये कि अच्छा, कुछ कॉलर्स ऐसे होते हैं ना जो अपनी आइडेंटिटी, अपनी असलियत छुपाते हैं, तो वो अपनी आवाज़ में नहीं बोल रहे होते ना। हम तो, आपको मालूम है कि मैं तो अपने आप को आप सबसे कम तरीन समझता हूँ
2: नहीं, आज
1: किसी भी
2: मैं
1: एतबार से।
2: अगर जवाब बताऊं, आज आपने जब स्टार्ट लिया ना तो स्टार्ट आपका बड़ा खूबसूरत था, फिर आपने उसके बाद बाग बेली की जो गजल लगाई ना, लुत्फ इश्क में पाए हैं कि दी जानता है, तो मुझे यूं लगा कि गुंजा शौक अपनी उस वापस आया। मैं असल महमूद खान साहब एक बड़े आरजे, जिनकी बड़ी पसंदीदा गजल थी, मेरी भी बड़ी पसंदीदा है बाग बेली की है, तो मैं तो उसका बड़ा दुख लेता हूँ, मुस्कुराते हुए वो मजमाए अगयार के साथ, आज यूं बज़्म में आए हैं कि जी
1: के जी
2: जानता है।
1: जानता है।
2: जुबान थी सर, जुबान वाली बड़ा खूबसूरत।
1: अब उसका पहला मिसरा तो मैं इस माइक से नहीं ले पाऊंगा, आप जानते हैं, और दूसरा मिसरा है कि वो आए यहाँ खुदा करे पर ना खुदा करे यूं, है ना?
2: जी,
1: तो बात तो है, बात तो है जनाब। आज क्या सुनाएंगे आप?
2: मैं आपको साजिद रहीम साहब की गजल सुनाते हैं आपको।
1: अच्छा, आपसे एक दरख्वास्त भी है
2: जी, हुक्म जी,
1: अपने सुनने वालों की खिदमत में, बराह रास्त भी हम बात कर सकते हैं लेकिन आपकी वसातत से, कि ये जो प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम का मिजाज और है, ये बज़्म में सुखन है। तो अगर हम किसी कॉलर को किसी कॉलर को हम अगर प्रोग्राम में शामिल नहीं करते ना, तो उसकी भी दिल आज़ारी होती है, ऐसा भी हम नहीं करना चाहते, लेकिन हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप सबसे दरख्वास्त कीजिए कि जो भी प्रोग्राम में शामिल होते हैं वो बहुत ही संजीदा बात किया करें, ताकि इस प्रोग्राम की जो संजीदगी है वो बहरहाल बरकरार रह सके।
2: रहनी चाहिए वो। असल में अब यहाँ पे ये बात करते करते मैं भी शायद बूढ़ा हो गया, सुनते सुनते आरजे कहते कहते भी थक गया। ख्याल करना चाहिए लोगों को, जिस मिजाज पे प्रोग्राम है आप उस मिजाज के साथ चलें तो अच्छी बात है।
1: हमारे जो मावे ने ना जिशान भाई, 5-6 मरतबा उनका हाथ रोका, उनका नहीं, कॉल ड्रॉप नहीं करेंगे, इसलिए कि उसकी वजह है।
2: वो खुरम बेग साहब ने भी समझाया था इनको, थोड़ा सा ना मतलब हाथ थोला रखा करो, लेकिन अब क्या किया जाए आप बताएं। मैंने अगर कोई थोड़ी सी साग बात कर दी, आपको पता है वो ये आजकल की जो ये जो एक लेगेसी है, मतलब ये बड़ी अजीब सी है, हमें समझ, हमारी समझ से बाहर है। मैं तो ये कह के थक गया हूँ कि जब शायरी का प्रोग्राम है तो अगर आपके पास कुछ है तो आप शायरी सुनाएं और अच्छी चीज लेके आए।
1: हमारा काम है प्रोग्राम को शुरू कर देना, उसके बाद हमारी जो डोर है ना वो कॉलर्स के हाथ में होती है, जहां मुड़ते हैं हम
2: चलो
1: मुड़ते चले जाते हैं।
2: उसको
1: नहीं
2: खूबसूरत बनाते हैं, जब बोरियत होने लग पड़ती है तो बड़ी बात है, लोग बात तो नहीं करेंगे। चलो वो बुजुर्ग हैं, कॉलर है, मैं डिवोर्स करूंगा उनसे
1: और हम उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं सर।
2: सबसे थोड़ा इतना थोड़ा
1: और आप जानिए हनी भाई, जो भी यहाँ पे कॉल करते हैं ना वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मोहतरम है। वैसे आप बाकी बातें तो हम करेंगे, लेकिन नवीद गुल साहब वो जो आपने 5,000 रुपए
2: का वादा किया था शुरू में, आतिफ भाई साहब की मैंने गजल सुन ली,
1: तो आप कहें तो मैं उनका अकाउंट नंबर आप तक पहुंचा दूं क्या?
2: मैं उस पर कल सब्सक्राइब करूंगा, जो चार बंदे हो रहे हैं मैं आपको बताऊंगा कि क्या लॉजिक क्या है, गजल क्या
1: है।
2: लेकिन अब शायरी का प्रोग्राम है तो फिर हम उस पर बात भी करेंगे ना
1: जनाब,
2: उस पर मैं बड़ी खूबसूरत बात करूंगा और इतनी मुख्तसर और आसान बात करूंगा कि जिन लोगों को शायरी का शौक है माशाल्लाह वो उनकी शायरी में खार पैदा होगा।
1: अदल करें ते थर थर कमन उजिया शान वाले हूँ, और आगे वो क्या कहते हैं, फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गा हूँ काले हूँ। तो खुदा की एक सिफत ये भी है ना कि वो फजल करता है, तो आप भी फजल कीजिए जनाब, और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि
2: मैं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, लेकिन ये एक शर्त नहीं है, ये कोई शर्त नहीं है जो मैंने लगाई है, तो मैंने नाम जो रखा हुआ तो मैंने रखा ही है, जो मैं आपको बताऊंगा आपको उसको भी सुनना पड़ेगा ना। 5,000 रुपए तो बड़ी मामूली सी रकम है, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, तो मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं ये चाहता हूँ कि कॉलेज तक ऐसी कुछ चीजें पहुंचे, बड़े बड़े आरजे आके बैठे यहाँ पे और हमने उनसे सीखा, दो चार लोगों को और देखते हैं क्या होता है।
1: हम यही चुके ना कि आप फजल कीजिए,
2: देखो वो करेंगे इंशाल्लाह।
1: इसका मतलब है कि आप उन पैसों के बारे में बात नहीं करेंगे?
2: इन पैसों के बारे में जो मैंने बात की है तो वो किसने किया? मैंने किया ना, मैं उससे मुकर थोड़ी रहा हूँ पुराना खास
1: जनाब। चलिए आपका पैगाम उन तक पहुंच गया, वैसे हम तो चाहते हैं कि बस सरफे नजर करना चाहिए, लेकिन बहरहाल आपने जो भी सोचा बेहतर सोचा। आज
2: के आप यकीन करें कोई कद नहीं है, कोई वरा नहीं है, मैं जो बात कर रहा हूँ गजल के हवाले से, तो आप कल इस बात को तस्लीम करेंगे तो वाकई इस बंदे ने जो बात की है लॉजिकली भी सही है और हर हिसाब से सही है। शायरी में चीजें हैं ऐसी जिसका हम बड़ा ख्याल नहीं रखते,
1: वो हम भी सुनते हैं, लेकिन आपसे हम दरख्वास्त भी तो कर रहे हैं उनके बारे में। बहरहाल
2: ये फैसला आपके साथ करेंगे, आप क्यों फिक्र करते हैं?
1: वो तो हम आपको बैन सतूर कहना चाहते हैं ना, बल्कि कह भी गए कि आप थोड़ा सा जी। तो बहरहाल हम चाहेंगे कि इस मौजू पे ना हम आइंदा कोशिश करेंगे कि फिर वही बात है कि सारे शायर तो नहीं है ना सरकार, कुछ वो हैं जो शायर नहीं हैं, कुछ वो हैं जो अदीब नहीं हैं, तो ये महफिल सब के लिए है, तो क्यों
2: मेरा तो मसला ये नहीं है, समझ ही नहीं पा रहे हैं, कल खोल देंगे इस बात को, आप फिक्र न करें और बड़ी खूबसूरती से खोलेंगे। मुझे महफिल के आदाब का भी ख्याल करेंगे,
1: बस आप ये कोशिश कीजिएगा, आप चूंकि शायर भी हैं ना,
2: बड़े तरीके से
1: बात जो है ना अमित भाई,
2: आप करने का ढंग है, आप फिक्र न करें
1: अमित भाई। वो मुझे मालूम है कि वसीम बरेलवी ने कहा था ना कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये हुनर हो तो हर एक बात सुनी जाती है। हमें मालूम है कि आपको लेकिन बस हम आपसे छोटी सी दरख्वास्त भी तो करना चाहते हैं ना, मुझे मालूम है कि आप उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, और मुझे आपके जितने भी कॉलर्स हैं ना उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई मेरी हौसला अफजाई करता है तो वो आप करते हैं, ये मुझे मालूम है।
2: सर आपकी तो सब हौसला अफजाई करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपको देखें बात गई तो मैं
1: लेकिन
2: के साथ कोई कर दे
1: लेकिन
2: आपको बात बता रहा हूँ कि
1: लेकिन लेकिन इस बात को ना,
2: लेकिन बड़ा खतरनाक लग रहा है।
1: हाँ, लेकिन हम उस चीज को ये कहना चाहते हैं कि अमित भाई आप माशाल्लाह शायर है ना, हम चाहते हैं कि
2: किसने कह दिया कि मैं शायर हूँ, मैंने तो बिंदी है।
1: नहीं, आप शायर हैं, आप बहुत अच्छा कलाम कहते हैं, और हम आपसे बस आज इस प्रोग्राम में ना सबके सामने दरखास्त करेंगे कि इस मौजू पे ना आइंदा बात नहीं होगी। पता क्यों? क्योंकि मैं आपकी बात बहुत पहले समझ गया था। उससे पता है क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि किसी का जो कद्दोकामत है ना, उसका तायुन हम नहीं कर सकते। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, चूंकि आप मोहब्बत वाले,
2: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
2: जज़ाकअल्लाह। मैं इस बात पे नहीं बात करूंगा, खत्म होगी बात, छोड़ें। ठीक है, आप अपनी, आपके साथ मैसेज लगाते हैं थोड़ी देर।
1: बस ठीक है, बहुत शुक्रिया हमीद भाई। अब मैं अपने तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त भी करूंगा कि उस गजल के हवाले से, पढ़ने के हवाले से, इनाम के हवाले से, तनकीद के हवाले से सब कुछ भुला बैठिए, और हम पुरानी बातों को भुला के अपने सुनने वालों के लिए एक और गजल लेकर आते हैं। और मैं दरख्वास्त करूंगा हमीद भाई आप कुछ
2: सुनाइए। एक बात सर, एक बात होती है, बात दस दफा थोड़ी होती है।
1: सुनाइए।
2: साजिद रहीम साहब की गजल है कि
1: अपनी गजल सुनाइए, अपनी गजल सुनाइए अमित भाई, आज अपनी गजल सुनाइए।
2: आपको नज़्म सुनाएंगे?
1: नहीं, अपनी सुनाइए ना, बस अपनी सुनाइए।
2: ये सुने जो मैंने आपने बड़ी बात को लंबा खींच लिया, मैं इतनी लंबी बात करता भी नहीं हूँ उस पे। वो गजल जो मैंने किया ना, जो मेरा इंतखाब था आज, इसी के इसको मेरी नज़्म बड़ी मुख्तसर थी, वो आपको सुना देंगे। मैं अपने आप को दो शेर सुना दूंगा, चले उस पे हैं। क्या ख्याल है, इतनी तो इजाजत है ना। मैं
1: अमित भाई ए प्रोग्राम है ही तड़ा है, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਾਡਲੇ ਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਖਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
2: ਠੀਕ ਹੈ,
1: ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਡਲੇ ਜੇ ਕਾਲਰ, ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਲਾਡਲਾ ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਸ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ ਜੀ,
2: ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
1: ਇਰਸ਼ਾਦ ਸੁਣੋ, ਇਰਸ਼ਾਦ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਬੜਾ ਫਿਰ
2: ਚਿਕਰੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ,
1: ਮੈਂ ਚਿਕਰਿਆ ਜਨਾਬ, ਬਸ ਵੀ ਕਰੋ ਹਮਾਰੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੇ ਜ਼ਬਾਨ। ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਇਰਸ਼ਾਦ।
2: ਅੱਛਾ, ਸਾਜਿਦ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਹਾ ਤਾ ਕਿ ਝੂਠ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਸਕਤਾ ਹੈ,
1: ਹਾਏ ਹਾਏ,
2: ਝੂਠ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾ ਸਕਤਾ ਹੈ, डूबने वाला फकत हाथ हिला सकता है।
1: हाय हाय, क्या कहने,
2: डूबने वाला फकत हाथ हिला सकता है, और फिर जोड़ गया वो जो कहा करता था। और फिर छोड़ गया वो जो कहा करता था, क्या था, और फिर छोड़ गया वो जो कहा करता था, कौन कम वक्त तुझे छोड़ के जा सकता है।
1: वाह,
2: देखे शेर का,
1: वाह,
2: तोड़ गया वो जो कहा करता था, कौन कम वक्त तुझे छोड़ के जा सकता है, और रास्ता भूलना आदत है पुरानी उसकी। रास्ता भूलना आदत है पुरानी उसकी, यानी एक रोज वो घर भूल के आ सकता है। और शर्त इतनी है कि तू इसमें फकत मेरा हो, शर्त इतनी है कि तू इसमें फकत मेरा हो, फिर तू एक खाक कई बार दिखा सकता है। और आंख मिलती है किसी खाक का ताना बाना, आंख बुनती है किसी ख्वाब का ताना बाना, ख्वाब भी वो जो मेरी नींद उड़ा सकता है, और उसने क्या सोच के सौंपा है कहानी में मुझे। शेर तक पहुंचेगा कि उसने क्या सोच के सौंपा है कहानी में मुझे, ऐसा किरदार जो पर्दे भी गिरा सकता है।
1: वाह।
2: और मेरे जो राग से करनी है, मेरे राग से करती है मेरी भूख सवाल, क्या यही रिस्क के वादे तो निभा सकता है।
1: एक शायर
2: रिस्क के वादे को निभा सकता है।
1: एक शायर है अमीर गुल साहब, उनका नाम है हसनैन अकबर
2: जी।
1: उनका ताल्लुक है सियालकोट से
2: जी।
1: वो कहते हैं कि आसमां वाले तेरा भेजा हुआ रिस्क हलाल, आसमां वाले तेरा भेजा हुआ रिस्क
2: हलाल
1: हाथ तक आने में ताखीर बहुत करता है।
2: वाह वाह वाह वाह वाह, लेकिन आज आपने क्या एक नया शेर सुना और क्या खूबसूरत बात की है, क्या खूबसूरत बात की है
1: जनाब
2: मुकर्रर साहब।
1: आसमां वाले वो इसी एतबार से उसने कहा था ना कि मुनव्वर राना ने, कभी कभी तो मेरे घर में कुछ नहीं होता, मगर जो होता है रिस्क हलाल होता है,
2: रिस्क हलाल होता है।
1: तो हसन अकबर साहब कहते हैं कि आसमां वाले तेरा भेजा हुआ रिस्क हलाल हाथ तक आने में ताखीर बहुत करता है।
2: ताखीर हो प्रवीण छात्र का शेर था, चन्नोशी गिलानी का था, इसी मजमून पे, तलाशी रिस्क में घर से निकलना पड़ता है। उसका मुझे पहले मिश्रा मेरे जान से उतर गया। बहरहाल खूबसूरत शेर पड़ा है, और उसका इस कवि का आखिरी शेर था कि तुम ना मानोगे मगर मेरे चले जाने पर एक न एक रोज तुम्हें सब्र भी आ सकता है।
1: वाह,
2: एक न एक रोज तुम्हें सब्र भी आ। मैं आपको एक बड़ी मुख्तसर सी दो शेर सुना के जाना चाहूंगा, बहुत सारे कॉलर एक कत्ता आपकी नजर कर रहा हूँ कि वो लम्हे खास होते हैं, वो जब भी पास होते हैं। दो शेर सुना के जाना चाहूंगा बहुत सारे कॉलर एक कत्ता आपकी नजर कर रहा हूँ कि वो लम्हे खास हो

0: अमित साहब, फिर हमारी हिम्मत जानिए, हम इतने कॉलर से बात करते हैं। तो पैनल, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। आज हमने देखी आपसे बहुत लंबी चौड़ी बात की है, शायद रात के इस हिस्से में आपसे इतनी लंबी बात किसी ने ना की हो। तो अच्छा, वो साहिल लुधियानवी ने कहा था ना कि साहिल लुधियानवी ने कहा था कि वैसे तो तुम ही ने मुझे बर्बाद किया है, इल्ज़ाम किसी और के सर जाए तो अच्छा। तो सरकार, आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया।
1: आपका बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
0: जनाब, ये प्रोग्राम आपका है और इस प्रोग्राम में आप ही की बातें हुआ करती हैं और आप ही के साथ बातें हुआ करती हैं। जनाब, बढ़ते हैं हम कुछ मैसेजेस की जानिब जो आपने फेसबुक के ज़रिए हम तक पहुंचाए हैं। अब हम देखते हैं कि आपने क्या क्या बात कर रखी है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं जी, पैगाम भेजा है हमें फिज़ा हमीद ने और वो कहती हैं कि उस्ताद वो हस्ती है जो खुद जलकर रोशनी देता है, अंधेरों में भटकते हुए दिल को रास्ता दिखाता है, लफ्ज़ों में नहीं अपने किरदार से सबक सिखाता है, गिरते हुओं को हौसला देता है और रुकने वालों को हिम्मत देता है। क्या बात है, आपने बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं जनाब। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जी रियाज भट्टी, लाहौर से हैं और सलामती की दुआ भेजी आपने। उज़्मा एजाज़ हैं, आपने दुआएं भेजी हैं और उसके बाद अनम है जी, तौबा है, बहुत ही बेसुरा है। नहीं बेटी, ऐसे नहीं बोलते, उन्होंने बहुत अच्छा गाया। उज़्मा एजाज़ हैं जी, उन्होंने सलाम पेश किया और सबके लिए सलाम है, वालेकुम अस्सलाम। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बेनियाज होना ही हमारे लिए बेहतर होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, भूल जाना भी बड़ी बात हुआ करती है। उज़्मा एजाज़ कहती हैं कि सामने यार हो और होश तेरे गुम नहीं, या वो यार नहीं या फिर आशिक तुम नहीं। वो किसी ने कहा था ना कि बेख्याली में किसे चूम लिया है तूने, होश कर, ये मेरी तस्वीर नहीं है, मैं हूँ। और आपके साथ साथ जी एक और आपने पैगाम भेजा है कि उज़्मा एजाज़ नहीं कि मोहब्बत करने से पहले एहतराम करना सीखिए। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह हम अपने सुनने वालों तक ये पैगाम पहुँचाए देते हैं।

0: अस्सलाम वालेकुम
1: जी,
0: जी, कौन हमारे साथ हैं जी और कहाँ से बात कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: अलहमदुल्ला
0: वो तो सदियों का सफर करके यहाँ पहुंचा था, तूने मुंह फेर के जिस शख्स को देखा भी नहीं।
1: आपको पहली दफा सुन रही हूँ और मैं ये समझती हूँ कि कुछ किस्मत है ये 101 का स्टेशन, जिसमें इसको आप किसी आवाज मिली।
0: बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया।
1: आपकी आवाज जो है लफ्जों के मुताज नहीं, अभी तक जाग रही हूँ सिर्फ आपकी आवाज सुन रही हूँ।
0: ममनून हूँ जी आपका, बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। कुछ सुनाना चाहेंगी? नहीं, मैं क्या मतलब, हम कुछ भी नहीं हैं, हम तो बस आपकी वजह से। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया। जी बेहद ममनून जी आपका, बेहद ममनून, बहुत शुक्रिया।
1: आपका प्रोग्राम कल भी होगा?
0: जी जुमा और हफ्ता दो दिन,
1: जुमा और हफ्ता, दो से
0: बल्कि दो रातें।
1: टाइमिंग क्या है सर?
0: जी 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक। बस यूँ है कि जितने कॉलर्स आते हैं, अब हम कोशिश तो करते हैं कि आप यकीन जानिए बहुत सारी अपनी बातें हैं वो रह जाती हैं, बहुत सारे कलाम आपके लिए हम लेकर आते हैं वो भी रह जाते हैं, हम तो बस आप ही की बातें सुनते रह जाते हैं, है ना?
1: सर क्या सर ऐसे सर मैं कहती हूँ कि आप कोई कलाम सिर्फ हम आपकी आवाज़ सुनते रहे।
0: जी बहुत शुक्रिया ममनून जी आपका, आप प्रोग्राम में शामिल हुई और बहुत शुक्रिया। जीती रहिए, बहुत शुक्रिया। जी जज़ाकअल्लाह। अब बाकायदा मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब जनाब, खुदा हाफिज़।

0: साइन, एक होता है इल्म और एक होता है हिल्म, यानी कि बर्दाश्त। हाय हाय, इल्म हो ना हो, हिल्म होना चाहिए। इसलिए तो रिश्ते टूट जाते हैं ना, बस रिश्तों को बचा लिया कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कौन बात कर रही है?
1: आवाज
0: आफियत, आपके लिए आफियत इसी में है कि आप ऊंचा बोली। आवाज कहाँ आ रही है, आप बोलेंगे तो आवाज आएगी ना।
1: और ही है आप तो
0: थोड़ा आ रही है जनाब, आ रही है आवाज, आ रही है सीधी दिल तक जो आ रही है। हुक्म करें जी मेरी बहन, की कहना चाहोगे तुसी? क्या
1: आपने शेर सुना
0: जी, सुनाइए।
1: पंजाबी का शेर है, हाथ विच कोई तलवार ही नहीं, योदा खाली चंदा वार भी नहीं, ऐसा
0: वाह वाह वाह। किसी शायर ने कहा था ना कि दामन पे कोई चींट, न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो या करामात करो हो,

अख्तर शीरानी ने ही कहा था ना कि इश्क आज़ादी बहार ज़िस्त का उन्वान है, इश्क मेरी जान आज़ादी मेरा ईमान है, इश्क पर कुर्बान कर दूँ अपनी सारी ज़िंदगी लेकिन आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। सबसे बड़ी आज़ादी जो है वो मैं से आज़ादी है इंसान को, जो उसका नफ्स है, नफ्स अम्मारा जो उसको बुराई की तरफ दावत देता है, उनमें सबसे बड़ी जो बुराई है जो समझी जाती है माशरे के एतबार से, रिश्तों के एतबार से, ताल्लुक़ के एतबार से, दोस्ती के एतबार से, और वो अपनी अना होती है। सामिन, इस अना में ना रिश्ते बिगड़ जाते हैं और तो और ज़िंदगी बिगड़ जाती है। इंसान का नाम और निशान तक मिट जाता है। बाद में इंसान सोचता भी है, और जाहिर है इंसान को सोचना भी चाहिए, खुदा ने उसको दिमाग दिया है, लेकिन जब सोचता है और जब सोचने के काबिल होता है तो शायद बहुत देरी हो चुकी होती है। और सोचने वालों को चाहिए कि वो बर वक्त सोचें।

वो इकबाल ने कहा था ना कि सितारों से आगे, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। तो जनाब ये इम्तहान की जगह है, कदम कदम इम्तहान है, कभी इंसान के इल्म का तो कभी इंसान के ज़र्फ़ का। माफ़ करना सीखिए। और हम कहते हैं ना कि चलो जाने दो, ये जो जाने दो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और जो लोग समझ जाते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, वो बड़े लोग हैं। हम क्या करें कि बड़े ही लोग हैं जो बड़े लोग नहीं हैं। लेकिन बहरहाल हमें निभा तो करना है ना जनाब, जिंदगी गुजारनी जो ठहरी। अगर हम निभा नहीं करेंगे तो फिर जॉन की तरह कहना पड़ेगा, जो गुजारी ना जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। तो शायद मैंने इस प्रोग्राम में एक बार पहले भी कहा था कि जिंदगी को ऐसे गुजारा करो कि जो लोग आपको नहीं भी पसंद ना, उनके साथ भी गुजारा करो। अक्सर हम कहते हैं ना, क्योंकि आप तो मेरे ख्याल में सभी को पंजाबी समझ में आती है और सुनते भी हैं, और जनाब वो छड्डो जी, बस गुजारा करो जी, वो कुछ नहीं होता, बस गुजारा करो। तो जनाब यही करना है हमने। पुराने जमाने में ना वो जो कहानियां हुआ करती थी, उसमें वो कहा जाता था कि पीछे मुड़कर देखेगा तो पत्थर का हो जाएगा। माजी यकीनन बहुत ही खूबसूरत याद होती है, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको भूल जाना चाहिए। तो जनाब बढ़ते हैं प्रोग्राम के आखिरी कॉलर की जानिब।

0: अब जब वक्त है आखिर में कॉल शामिल करने का, तो एक कॉलर आ सकते हैं, हम उनसे बात करेंगे और उसके बाद आपसे चाहेंगे इजाज़त। अस्सलामुअलैकुम।
1: अनिला
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: नवाज से बात कर रही हूँ। जी
0: अनिला कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और दुआ करूँ जो जो जहाँ सुन रहा है अल्लाह सबको सलामत रखे।
0: आप भी सलामत रहें।
1: शुक्रिया। कुछ नहीं कहना
0: कुछ कह सकती हैं आप? बस
1: और
0: आप चाहें तो कह सकती हैं, वरना हंसी की जो निशानदेही हो चुकी है और पता नहीं कोई क्या सोच बैठे है ना।
1: आपका प्रोग्राम आप अच्छा लेके आते हैं, आपने अच्छा प्रोग्राम किया, और जो थोड़ी बहुत ऊंची नीची हो गई इट्स ओके, मजाक नहीं, कोई
0: अच्छा
1: बात नहीं।
0: देखिए अनिला, अनिला बात यह है ना कि ये प्रोग्राम है आप सबका, आप यकीन जानिए किसी पर तनकीद नहीं है, ऊंच नीच तो होती है ना। बहरहाल आप जाहिर है कोई कॉलर आके कुछ कह दे तो हम नाराज तो नहीं हो सकते ना, क्या ख्याल है?
1: नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत ही नहीं नाराज होने
0: वो
1: की,
0: आपने सुना है ना कि
1: मुझे
0: खैर
1: तो सुननी
0: दरवेश
1: पड़ती
0: दरजाने
1: है।
0: दरवेश है ना।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे ही तो कोई बात नहीं, इस तरह चलता है, रौनक भी चलती रहती है और सुकून भी मिलता रहता है।
0: ज्ञान भी मिलता रहता है।
1: हाँ ज्ञान भी मिलता रहता है, बस ज्ञान लगाने की भी तो जरूरत होती है ना ध्यान के साथ।
0: आले क्या सुनाएंगे आप? आप भी अनिला आप भी खरी खरी सुनाएंगी या आप कुछ सुनाएंगी
1: नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, सॉरी।
0: या फिर आप
1: आप
0: कहेंगी
1: बल्कि अगर
0: कि
1: कोई
0: अनिला, या फिर आप कहेंगी अल्लाह का शुक्र आप सुनाइए।
1: मैं यूं कहूंगी कि जो
0: वैसे एक बात
1: खड़ी
0: है,
1: खड़ी सुनाते हैं कोई बात उनकी भी सुन लेते हैं।
0: वैसे एक बात है, लफ्ज है शुक्र लेकिन हम शुक्र कहते हैं, इसकी क्या वजह है?
1: जो शक्कर ज्यादा खाते होंगे ना फिर वो
0: वैसे आप तो खाती नहीं हैं, वैसे इतना मीठा बोलती हैं।
1: बहुत कम नहीं कम खाती हूँ। हाँ
0: अच्छा चलिए अनिला, हमारी प्यारी बहन,
1: डॉक्टर ने मैंने
0: आपने
1: बोला 10 किलो वजन कम करना, तो इस वजह से मैं बहुत केयर कर
0: 10 किलो।
1: रही
0: अनिला
1: हूँ।
0: आप ये शायद भूल रही हैं कि आपका जो वजन है हमारी बहन वो 10 किलो ज्यादा है जो आप कम करना चाहती हैं।
1: जी हाँ 5 किलो करनी है, मैंने 5 भी कर लूंगी इंशाल्लाह।
0: अच्छा वैसे क्या करती हैं वजन कम करने के लिए? चलिए सुनने वालों को कुछ बता दीजिए आज कुछ। हम
1: वॉक करती हूँ मैं ज्यादा से ज्यादा, और तकरीबन
0: वॉक करती हैं
1: 3 साढ़े 3 किलोमीटर मैं रोजाना चलती हूँ, और
0: घर
1: मीठा
0: में,
1: मीठा कम,
0: घर
1: बहुत
0: में चलती हैं अनिता? आप जरा कोई एड्रेस बता दीजिए, पता बता दीजिए, ताकि कल आप देखेंगे कि फिर वहां पे रश लग जाएगा।
1: चलती हूँ मैं दिखाई नहीं दूंगी।
0: और फिर आप कहेंगे कि अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है?
1: इसलिए बताना नहीं है ना, मुझे डरना नहीं है। नहीं
0: तो ये बात तय हुई कि आप डरती हैं।
1: मुझे
0: अच्छा
1: डरना नहीं है,
0: मतलब आप,
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: मतलब आप डरती नहीं हैं।
1: अल्लाह से डरना चाहिए बस, बाकी जहाँ डरना चाहिए वहां डरे, जहाँ डरना चाहिए वहां डरते नहीं हम।
0: अच्छा लोग अल्लाह से ही तो नहीं डरते है ना, कितनी
1: यही तो
0: बुरी
1: कह
0: बात
1: रही
0: है।
1: हूँ
0: वैसे
1: कि जहाँ डरना चाहिए वहां डरते ही नहीं।
0: आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो आलिम है और जो आकिल है, अकल रखता है, वो कभी गुनाह सरजद नहीं करता है ना। तो इसका मतलब है कि हम अकल नहीं रखते ना, कदम कदम पे गुनाह किए जा रहे हैं हम।
1: हम तो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं।
0: इसका मतलब है कि जो गुनाह करता है, जो गुनाह करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो खुदा से नहीं डरता ना।
1: लेकिन कोशिश करनी चाहिए हमें, जहाँ जहाँ तक हो सकता है हम जिस जिस चीज से बच सकते हैं आपको बचाए अपने आप को। आप माना कि बहुत सारी सारी बातें हम नहीं पूरी कर पाते, लेकिन जितनी जितनी कर पाते वो जरूर करें, और कोशिश करें कि बाकी चीजों पे भी कायम होना सीख जाए, उनको भी कंट्रोल करें।
0: आखिर में कुछ शायरी पेश करना चाहेंगी आप?
1: जी हाँ, मैं थोड़ी सी शायरी ही पेश करना चाह रही थी, लेकिन आपने जरा गुफ्तगू को मजेदार सा रंग दे दिया।
0: जी इरशाद, अब आप इसको मजीद मजेदार बनाइए और अच्छी से शायरी सुनाइए हमें। और जलाली साहब की नज़्म सुनाने की इजाजत नहीं है आपको, वरना उनका नाम वैसे भी उनका नाम
1: जैसी पड़ी बहुत अच्छी पड़ी।
0: जी वैसे भी उनका नाम जलाली है, तो वो मैं अक्सर एक शायर है
1: जी,
0: एक शायर है उनका, गालिबन मैंने पिछले प्रोग्राम में भी उनका उनकी चार मिसरे शामिल किए थे, और वो कहते हैं कि हमारे स्कूल से ले जाओ अपने बेटे को, जो काम दो ये उसे गलत सलत करता है, इसे तो ठीक से उर्दू तलक नहीं आती, लफज लफज का तो तुल्फज ये गलत करता है। तो बहरहाल बात यह है कि सबसे बड़ी जबान मोहब्बत की जबान है, और खुदा की कसम वो हर एक को समझ आ जाती है, चाहे आप लफ्ज बोलिए या लफ्ज बोलिए, चाहे आप तलफ्ज बोलिए या तुल्फज बोलिए, है ना।
1: तो इशाद छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन मतलब समझ महफूम समझ आ जाता है ना, यही बड़ी बात होती है।
0: इशाद
1: अब मुझे पहली लाइन भुला दी ना। नहीं नहीं मैं याद हो जाएगी, भुला पाना बहुत मुश्किल है। सब कुछ याद रहता है, भुला पाना बहुत मुश्किल है, सब कुछ याद रहता है।
0: आपको मैं यहाँ पे ना रुकना चाहूंगा अनिला
1: जी। जी
0: अभी आप भुला पाना मुश्किल है, सही है, पर अभी आपने कहा मैं भूल गई, और दो सेकंड का आपने
1: तो मुश्किल है ना भुला पाना, याद आ गया, दो सेकंड
0: का आपने तवक्कुफ किया। इसका मतलब है कि भुला पाना आसान है।
1: इरशाद नहीं आसान था ना, तभी तो याद आ गया।
0: इरशाद
1: भुला पाना बहुत मुश्किल है, सब कुछ याद रहता है, मोहब्बत करने वाला इसीलिए बर्बाद रहता है।
0: हाय हाय,
1: मोहब्बत करने वाला इसीलिए बर्बाद रहता है।
0: वाह,
1: घर सोने के पिंजरे में भी है तो कैदी है। परिंदा तो वही होता है जो आजाद रहता है।
0: वाह,
1: चमन में घूमने फिरने के कुछ आदाब होते हैं, उधर हरगिज नहीं जाना, उधर सयाद रहता है।
0: हाय हाय, वाह,
1: लिपट जाती है बचपन, लिपट जाती है रस्तों की खाक बचपन से, जिधर से भी गुजर जाऊं मैं रास्ता याद रहता है।
0: वाह,
1: हमें भी अपने अच्छे दिन याद हैं, हर इंसान को अपना जमाना याद रहता है।
0: वाह,
1: है ना, सही कहा ना मैंने मतलब।
0: क्या बात है, वैसे आपको भी अनिला अपना जमाना याद है?
1: हाँ मेरा जमाना अभी भी है। मैं बहुत ज्यादा पुरानी नहीं हूँ।
0: वैसे बात तो ऐसे कर रही थी ना कि जैसे आपको जमाना बहुत पुरानी यादें हैं आपके साथ,
1: तो बचपन तो पुराना जमाना ही हो गया ना, वो तो फिर याद रहता है ना, और वो खूबसूरत याद होती है,
0: यकीनन
1: तो कभी नहीं भूल सकते।
0: यकीनन 40-42 बरस पुराना नहीं?
1: हाँ कह सकते हैं। हाँ क्या मतलब है मुझे, आप इसी बहाने से आप उम्र की इकाइयां गिन रहे हैं? नहीं नहीं मुझे नहीं पता कितनी, मुझे पता ही नहीं आपने क्या कहा।
0: चलिए अनिला, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में।
1: सबके लिए बहुत सी दुआएं, आपके लिए भी और सब सुनने वालों के लिए भी, और जो आए सुखन को मलूजे खास रखते हुए
0: आए। हाय, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में शामिल।
1: शुक्रिया, मुझसे कुछ गलती हुई तो सॉरी। जी जी बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए अपनी बात।
0: आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे क्या?
1: दे चुकी हूँ, समझ रहे, मैंने भी दे दिया। सबके लिए बहुत सी दुआएं और आपके लिए भी। तेरे खुश हैं इसी तरह खूबसूरत बदन सजाए और जो भी आए वो अच्छा अच्छा कलाम लिख के आए। थैंक यू,
0: बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुई। और सामिन, प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। जिंदगी ने वफा की तो कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, और तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।